श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: क्रिया मात्र न होकर मन, मस्तिष्क और हृदय की अनुभूति है। विचार करने के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है सोचना, या यूं कहा जाए कि सोचना और मनन करना मनुष्य का गुण है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके पास मस्तिष्क है, ऐसा मस्तिष्क जो अन्य प्राणियों की तुलना में ज्यादा उर्वर है, इसीलिए मनुष्य ही सोच सकता है। सोचने की क्रिया जब होती है, हम विचारों में बहने लगते हैं और हमारे विचार हमें एक निश्चित दिशा की ओर ले जाते हैं। परंतु विचार ऐसा नहीं है कि मन के ही अधीन है, इसका आधारभूत है, ऐसी बात नहीं। अव्यक्त रूप से कुछ प्रभाव ऐसे भी पड़ते हैं हमारे मन पर जो विचारों को एक नई दिशा देते हैं। ये अव्यक्त विचारों को एक नई दिशा देने में समर्थ होते हैं। हम अपनी बुद्धि के परे, बुद्धि शून्य होने पर भी अपने अंदर के संस्कार से प्रभावित होते रहते हैं। ये प्रभाव विचारों में बदलाव लाते हैं। इन प्रभावों को किसी एक कोटि में सीमित करना बहुत कठिन है। ये प्रभाव बुद्धि को कुछ सोचने के लिए ही प्रेरित नहीं करते, वरन क्रमशः जो प्रभाव इन पे पड़ता है उससे प्रभावित होकर ये विचार गुम्फन में नई दिशा लाने की ओर इशारा भी करते हैं। इन्हीं अव्यक्त और व्यक्त परिस्थिति, मनस्थिति और दृश्यावलोकन की भावना से विचार बनते हैं, और इन्हीं विचारों की श्रृंखला को हम कहते हैं कि हम सोच रहे हैं या हम मनन कर रहे हैं। जब हम सोचते होते हैं या मनन करते होते हैं तो बुद्धि एक बड़ी भूमिका निभाती है। जहाँ बुद्धि शून्यता विचार को रोकती है, उसका अनुप्रेरक नहीं होती, वहाँ हृदय की भावना अनुपस्थित है ऐसा भी नहीं है। जो अंतर एक प्रज्ञावान मनुष्य में और बुद्धिमान मनुष्य में है, उससे भी ज़्यादा अंतर हृदयवान या सहृदय और विचारवान में है। हृदय कोमल भावनाओं का स्वच्छंद रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्फुटित होने वाला पुंज है। तो बुद्धि जो विवेकपूर्ण हो, उन विचारों पर अंकुश लगाती है, ऐसा अंकुश जो सामाजिक मर्यादाओं के अनुकूल हो। सद्विचारों के लिए हृदय और मन दोनों की अनुपस्थिति हो तो सद्विचार आएंगे ही नहीं, दोनों को वहाँ रहना होगा। सहृदय हो जाने से ही ऐसा नहीं है कि हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, हमें उनके बारे में ठीक से विवेकपूर्ण ढंग से मनन करना होगा। तो जो हमारे सद्विचार हमारे अच्छे कार्यों में प्रखरता लाते हैं और उन्हें प्रभावी बनाते हैं, इसीलिए हमें सद्विचार करना होगा समाज और राष्ट्र के हित में काम करने के लिए। ऐसा जरूरी है, तभी हम इस देश को समुन्नत बना सकते हैं। इसीलिए आइए हम विचारों की महत्ता का ध्यान करते हुए विभिन्न विचारों को अपने भीतर आने दें और उन्हें फलीभूत होने दें।
1: ये था हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन आलेख, वाचन स्वर कुसुमाकर दुबे का था। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जा। हमरा लोकन पशुधन के राखे छी, जकरा पर ध्यान राख पड़त तखने ई बेर पर काज मनोनुकूल द सकत। एखन बीमार ओ स्वस्थ पशुधनक कोन कोन लक्षण होइत अछि ताहि प्रसंग में चर्चा कऽ रहल छी। स्नेही किसान श्रोतागण, पहिने स्वस्थ पशुक कोन कोन लक्षण होइत अछि ताहि प्रसंग में चर्चा कऽ रहल छी। जेना स्वस्थ पशु आहार लेलाक बाद

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: हमारे कार्यों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमें हमेशा सजग रहकर अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। विचार कलपुर्जों की

0: जुगाली अर्थात पाउज करैत अछि। स्वस्थ पशुक आँखि साफ ओ चमकैत रहैत अछि। स्वस्थ पशुक नाक के बाहरी भाग चमकैत रहैत अछि। ओ साफ सुथराक संग संग गील होइत अछि। एहन पशुक चमड़ी जे स्वस्थ होइत अछि तकर मुलायमक संग संग चमकदार सेहो होइत अछि। स्वस्थ पशु अपन कान पूछ आ माथ के हिलाबैत डुलाबैत रहैत अछि। स्वस्थ पशु दिन मे 203 बेर पानि पीबैत अछि। स्वस्थ पशु बैसबा काल मे देहक अगला भाग के आगू दिस नीचा मुहे कऽ कऽ बैसैत अछि। स्वस्थ पशु अपन बच्चा ओ मालिक के अर्थात पोषनिहार के प्रेम भाव सँ देखैत अछि। स्वस्थ पशुक देहक तापमान सांसक क्रिया ओ नाड़ी के क्रिया सामान्य होइत अछि। ई सब कहल गेल लक्षण स्वस्थ पशुक होइत अछि। ठीक एकर विपरीत सब लक्षण अस्वस्थ जकरा बीमार पशु कहैत छी तकर होइत अछि। स्नेह किसान श्रोतागण, बीमार पशु आहार अनियमित रूप सँ लैत अछि। आहार लेब ओ कम कऽ दैत अछि, फेर धीरे धीरे पूर्ण रूप सँ छोड़ि दैत अछि। बीमार पशु जुगाली करब बंद कऽ दैत अछि। बीमार पशु सुस्त आ एहन बुझायत जेना ओ उदास रहैत अछि। बीमार पशुक कान लटकल रहत। बीमार पशु के नाक के ऊपरी भाग शुष्क भऽ जाइत अछि अर्थात सुखायल रहैत अछि। बीमार पशु में चंचलता खत्म भऽ जाइत अछि। एकर आँखि सिकुड़ जाइत अछि। आँखि सँ पानि बहय लगैत अछि। एकर पिपनी सेहो नहि खुलैत रहैत अछि। एहिसँ बीमार पशु के चिन्ह सकैत छी। बीमार पशु के चमड़ा शुष्क होइत अछि आ करगर होमय लगैत अछि। बीमार पशु के देहक तापमान सांसक क्रिया आ नाड़ी के क्रिया में बदरंगक संग संग बेसी अथवा कम बुझबा में अबैत अछि। ओकरा सांस लेबा में असौकर्ज होइत अछि। तो बीमार पशु के मुंह अथवा नाक सँ पानि खसय लगैत अछि, टपकय लगैत अछि। दुधारू पशु बीमारक अवस्था में दूध दुहबा में दिक्कत करैत अछि। ई सब बीमार पशु के लक्षण होइत अछि। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
3: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन्स सो इम्पोर्टेंट।

0: से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेंगयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
1: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे जटिल चर्म रोगों और उसके होम्योपैथ निदान के विषय में। डॉक्टर जय शिव मिश्रा जी, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार
2: जी। नमस्कार।
1: जटिल चर्म रोग की जब हम चर्चा करते हैं तो ये रोग है क्या, ये बताइए
2: जी। असल में पहले तो रोग के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। असल में होता क्या है कि हम लोग जिस रोगों के बारे में जानते हैं सामान्यतया, उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सिम्टम को, दो चार सिम्टम को एक साथ रख के कुछ नाम दे देते हैं, उसको नोमेनक्लेचर ऑफ डिजीज बोलते हैं हम लोग। वास्तव में ऐसा है नहीं। होता क्या है कि जब आपके बॉडी के सिस्टम को जब किसी मॉर्बिड इन्फ्लुएंस की वजह से जब डीअरेंजमेंट होने लगता है तो मॉर्बिड सेंसेशन आने लगता है आपके बॉडी में,
1: मतलब चीजें अव्यवस्थित हो जाती
2: है। जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि वो डीअरेंज होने लगता है तो आपको गलत गलत सिम्टम आने लगता है। बेसिक स्टार्ट वहीं से हो जाता है। फिर से उसका जो आप अभी डिजीज की चर्चा कर रहे हैं वो सब तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है।
1: अच्छा,
2: वो दिखने लगता है बाद में, लेकिन प्रॉब्लम पहले से शुरू हो जाता है।
1: यानी एक्जिमा, सोराइसिस या फिर मस्सा या सफेद दाग, ये सारी चर्चा जो हम
2: इंड

0: प्रोडक्ट पे आता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: लेकिन धीरे धीरे आप उसको इग्नोर करें या इलाज भी करते हैं तो प्रॉपर वे में अगर ना हुआ तो ये सब इंड प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है।
1: होम्योपैथ लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। अगर हम एक्जिमा की बात करें तो फिर क्या देखते हैं आप एक्जिमा में?
0: अब एक्जिमा का भी बहुत सारा टाइप है। हम लोगों को ये देखना होता है कि वो एग्जैक्ट किस टाइप पे है और कहाँ जाके ये ठीक होने वाला है, क्यूरेबल आएगा या फिर बहुत देरी से ठीक होगा। आप अगर किसी को प्रॉपर वे में दवा दे रहे हैं और वो भी फॉलो कर रहा है और दवा सही है तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल।
1: यानी अगर चिकित्सा एक बार होम्योपैथ में शुरू कर दी गई है तो उसे बीच पे छोड़ना अच्छा नहीं है।
0: नहीं है, नहीं
1: है ना जी। ये एक्जिमा या सोराइसिस ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज की श्रेणी में रखी जाती है ये बीमारियां। इसमें कहा जाता है कि कई बार जो है लक्षण समाप्त हो जाते हैं, सब चीज अच्छा होने लगता है, फिर से दोबारा से।
0: अब दो प्रॉब्लम है। अगर आपने गलत मेडिसिन का सिलेक्शन किया
1: जी,
0: और तो क्या होता है कि वो एक्जिमा ठीक ना हुआ या सोराइसिस ठीक ना हुआ, वो दब गया है।
1: कैसे मानेंगे कि ये एक्जिमा है और ये सोराइसिस?
0: बिल्कुल, एक्जिमा दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपको एक्जिमा देखना है तो कई प्रकार का होता है, जिसमें तीन चार प्रोमिनेंट जो जनरली लोग समझते हैं
1: जी।
0: जैसे उसमें कहीं इरप्शन हो जाना, फिर से उसमें क्रस्ट पैदा हो जाना, फिर क्रस्टी वहां से एलिवेटेड परत पर दर परत पैदा हो जाता है और वो एलिवेट उहार टाइप का बनने लगता है और वो खुजलाता भी है, नोच देने पे वो लहरता भी है थोड़ा सा, तो ये एक्जिमा की श्रेणी में है। अब सोरियासिस है कि पूरा बॉडी एक समान जलन के साथ एक इरप्शन आना शुरू होता है। शुरू शुरू में वो ठीक भी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन धीरे धीरे धीरे वो भी फैलने लगता है, क्रस्ट उसमें भी आता है, लाल होता है, वो दर्द भी करता है और दर्द ना भी कर सकता है, इचिंग भी कर सकता है, इचिंग ना भी कर सकता है। इसीलिए हम आपको होता
1: है खुजलाहट ऐसी होती है डॉक्टर साहब कि पूरी परत चमड़े की उधर
0: बिल्कुल ब्लड आ जाता है उसमें से खुजलाने में,
1: नारियल की भूसी के समान जो है हमने
0: बिल्कुल। शुरुआती दौर में क्या होता है कि नारियल की भूसी के समान वो आता है, अगर प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो वो भी क्रस्टी हो जाता है बाद में।
1: तो इस तरह के मरीज जो एक्जिमा, सोरायसिस या फिर मस्सा या सफ़ेद दाग, इस तरह के जो मरीज होते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखिए, सफ़ेद दाग और मस्सा दोनों दो चीज़ हैं। सफ़ेद दाग जो है वो स्किन का डिस्कलरेशन की वजह से होता है, वो मेलानिन का फॉर्मेशन आपके स्किन में होता है।
1: सही बात।
0: और जब मेलानिन का फॉर्मेशन किसी वजह से कम हो जाए, ये साइकोटिक लेवल का प्रॉब्लम है, तो वो तब उसमें ये प्रॉब्लम होता है। दोनों साइकोटिक लेवल का प्रॉब्लम है।
1: अच्छा।
0: अब अगर किसी को मस्सा होता है तो उसका भी टाइप अलग अलग है, किसी को स्मूथ होता है, किसी को कैलीफ्लावर लाइक होता है। आप दवा देते हैं तो किसी किसी का साफ भी हो जाता है जल्दी से, लेकिन सबका मस्सा ठीक हो सकता है अगर एक्वायर्ड है, मतलब बाद में आया हो तब। अगर किसी को कंजनाइटल है तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते जल्दी से।
1: तो जो लोग इस तरह के चर्म रोग से पीड़ित हैं उनके खान पान रहन सहन के बारे में क्या कहेंगे?
0: जी, इसमें से दो चीजें ध्यान उनको रखनी चाहिए। जैसे अगर किसी को सामान्य चर्म रोग है तो जैसे अंडा है और जैसे वेजिटेबल में वो बैगन है, इससे थोड़ा सा खुजलाहट बढ़ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग वो मना करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए सामान्यतः।
1: मांस मछली?
0: मछली में अगर किसी को सोरायसिस है तो मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर बात इतनी कि अगर किसी को भी जटिल चर्म रोग है और होम्योपैथ की चिकित्सा वो ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो निदान वहाँ संभव है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन पूरे धैर्य के साथ दवाएं ले, परहेज से रहे। डॉक्टर जयशिव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना की शुरुआत कर रहे हैं इस देश वंदना के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न हुआ। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। मुख्य स्वर वाणी जयराम के हैं।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर

मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल के अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

रामचरितमानस गाना भी आपने सुना। आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात का समय होता है प्रातः 8:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन 9:10 पर। दस बजे आनंद ले सकेंगे आप कुछ फिल्मी गीतों का और 10:30 पर बज्जी का कार्यक्रम होगा अंगना। प्रातः 11:00 आप सुनेंगे आज उपशास्त्रीय संगीत। 11:30 पर NCERT उमंग। 12:00 आनंद ले सकेंगे कुछ नए फिल्मी गीतों का और 12:30 पर हेलो जिंदगी का प्रसारण किया जाएगा।

दोपहर 1:15 पर आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और रोजगार सूचना का प्रसारण समय होता है 2:10। 2:15 पर आप सुनते हैं दोपहर समाचार। 2:30 पर पुनः आनंद ले सकेंगे कुछ फिल्मी गीतों का और बज्जी का लोकगीत आप सुनेंगे 2:03। ये थे हमारे इस सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी के साथ की जाती है, जिसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण मिथिला। विद्यापति गीत आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर और 6:25 पर मैथिली संवाद। गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नव ऊर्जा शाम 6:30 पर। किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी 7 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:30 पर और जिले की हलचल 7:47 पर। संसद समीक्षा का प्रसारण समय होगा रात्रि 8 बजे और 8:15 पर मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर सुनेंगे विविधा सर्वभाषा और 9:45 पर इंस्पायरिंग वॉइस इंग्लिश टॉक के अंतर्गत और रात्रि 10 बजे से सुन सकेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार क्रमशः संस्कृत और हिंदी में। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: स्कैरूट् एरोस्पेस् इत्यस्य पवनचन्दना नागाभरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम वन इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता, अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचक विषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, सकारात्मकदृष्टिश्च भारतस्य निज अन्तरिक्षपरितन्त्रस्य सजीवभावनां प्रतिबिम्बयति। प्रधानमन्त्री स्कैरूट् एरोस्पेस् इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तरप्रदेशप्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्यास्थितस्य राममन्दिरन्यासाय प्राप्तदानराशेः कथितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षकमहानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां चतुर्सदस्यात्मकं विशेषान्वेषणदलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्यप्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषणदले पञ्चमसदस्यरूपेण न्यायिक लेखापरीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं द्विसाप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथमस्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथितदुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिरदानचौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं, 3 रजतपदकानि, 1 कांस्यपदकञ्च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कैरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्कैरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम की गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार 6ठे दिन भी नीट

0: मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार
1: मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार, समस्त श्रोता लोकन का आशीषक नमस्कार।
0: और साथ ही साथ आज के इस अंक में मैं हूं कुशल। आशीष जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार कुशल।
0: और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार। तो आशीष जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। आज का सुविचार है चाणक्य नीति से। जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदारों को छोड़कर पराए लोगों को महत्व देता है वह खुद ही एक दिन नष्ट हो जाता है, जिस तरह किसी राजा का राज अधर्म से नष्ट हो जाता है। यह है चाणक्य नीति।
1: निश्चित गप छै अहाँ के ई हरदम बुझबाक चाही कि के अहाँ के अपन अछि, के अहाँ के खाली अहाँ के संगे दऽ रहल अछि अहाँ के मुँह पर। जब तक ई अहाँ के समझ नहि रहत, ई ज्ञान नहि रहत, ता धरि अहाँ के भऽ सकैए ओहि काल मे बहुत खुशी लागत कि आदमी हमरा एतेक बड़ाई कऽ रहल छथि, कियाकि झूठ प्रशंसा जे अछि से धोखा दैत

0: ई हरदम मोन राखू। ताहि दुआरे अगल बगल के लोक सब जे छथि, अगल बगल के जे सर्किल छथि, ताहि पर हरदम ध्यान रखबाक चाही कि अहाँ के दोस्त छथि और के अहाँ के दोस्त बने के नाटक कऽ रहल छथि। ताहि दुआरे अपन जे करीबी छथि तिनका सबसे हरदम बना के राखू, कियाकि एहन कोनो परिस्थिति आयत तऽ ओहि काल मे वएह सब ठाढ़ भेटत। एकटा छोट सनक अहाँ उदाहरण देखबै, एखन सोशल मीडिया के जमाना छै, सोशल मीडिया पर लोक के अहाँके लाखों लाख फॉलोअर होइ छन, लेकिन अगर कखनो कोनो अगर अहाँके एहन जरूरी काज भऽ जाइत अछि तऽ अहाँके वएह दू चारि आदमी से मुश्किल से भेटैत छथि, कियाकि अहाँ सोशल मीडिया के फॉलोअर के चक्कर मे ओहो दू चारि आदमी से दूरी बना के राखि लै छी। ताहि दुआरे ओहन स्थिति परिस्थिति मे ई बतबैत अछि कि वएह जे दू चारि आदमी जे अहाँके सगा संबंधी छथि, जे अहाँके इष्ट मित्र छथि, सएह अहाँके समय पर काज उतत। द्वारे ई चीज हरदम मोन राखि कऽ जे आदमी आगू बढ़ै छथि से इतिहासमे सेहो नाम करै छथि। आओर कार्यक्रममे से आइ के दिन इतिहासमे क्या महत्वपूर्ण अछि ताहिपर हमसब चर्चा कऽ ली।
1: आजे के दिन सन 1946 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। ये चार साल चला। सन 1969 आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह देश के पांचवें प्रधानमंत्री बने। सन 2018 आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मोहाली में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का शुभारंभ किया। सन 1925 आज ही के दिन बारूक बलमर का जन्म, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का टीका खोजा। सन 1928 आज ही के दिन स्मस्ट्रम में 9वें ओलंपिक खेल का शुभारंभ हुआ। और आज ही के दिन सन 1857 सर विलियम जेम्स हर्शल का जन्म हुआ। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हर इंसान की उंगलियों की छाप अलग होती है और आज फिंगरप्रिंट पहचान की सबसे बड़ा जरिया है।
0: तो ये एखन हम सब जानकारी प्राप्त करते रही आई के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है। और कार्यक्रम में जना कि हम सब बेरा बेरी के सब चीज के आने छी और क्रम में समेटे छी, तो यह क्रम में आओ अपने सबके मैथिली गीत सुनबे छी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है।
4: आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार।
3: आज ही

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आशीष जी, छोटे संदेश से पहले श्रोता हमारे मैथिली सुगम संगीत का आनंद ले रहे थे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित है आशीष कुमार सिंह।
3: धन्यवाद कुशल। आजुक हालचालक संग हम आशीष। सहरसा में संभावित बाढ़ के तैयारी के लिए जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैसार भेल। बैसार में संबंधित विभाग सबके दिशा निर्देश से देल गेलन। भगवान शिव के समर्पित पवित्र सावन मास के शुरुआत 30 जुलाई यानी कि बृहस्पति दिन से भ रहल अछि। एहि बेर सावन मास 28 अगस्त धरि रहत। सावन के पहिल सोमवारी 3 अगस्त के पड़ि रहल अछि। एहि दिन नवविवाहित सबके प्रमुख पर्व मधुश्रावणी पूजा सेहो प्रारंभ होयत और मौना पंचमी के शुभ संयोग सेहो रहत। सहरसा में अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र जिला के सांस्कृतिक प्रतिभा सबके नवका पहचान दियाबे के लेल कार्यरत अछि। कला और संस्कृति विभाग के पहल से प्रशिक्षार्थी सबके प्रतिभा में स्पष्ट बदलाव देखल जा रहल अछि और ऐसे कोसी के कला के राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सेहो भेट रहल अछि। श्री व्यास गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 के सफल आ सुव्यवस्थित आयोजन के लेल नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा वार्ड संख्या 31 स्थित MLT कॉलेज परिसर के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कलैथ। निरीक्षण के क्रम में ओ आयोजन स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई आ अन्य आवश्यक जानकारी सब के बारे में बारीकी से जायजा लेलथि। नगर आयुक्त संबंधित पदाधिकारी आ कर्मी सबके निर्देश देलखिन कि सबटा तैयारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के संग पूरा कऽ लेल जाए, जैसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बहुत पैघ संख्या में श्रद्धालु सब पहुँचे छथि और हुनका कोनो प्रकार के दिक्कत के सामना नहीं करय पड़नि। मधुबनी में अरुणिमा साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन भेल। एहिमे 16 रचनाकार अपन अपन रचना के प्रस्तुति देलथि। सभा के संचालन दिलीप कुमार झा केलथि आ अध्यक्षता चंडेश्वर खां करहन। 34 बिहार बटालियन NCC मधुबनी के नव पदस्थापित कमांडिंग अफसर कर्नल कुसुमाकर झा DM आनंद शर्मा से शिष्टाचार भेंट कऽ के जिला में NCC गतिविधि सबके विस्तार आ संचालन से जुड़ल विभिन्न विषय पर चर्चा कलथि। एहि क्रम में ओ नवका स्कूल आ शिक्षण संस्थान में NCC इकाई के स्थापना आ ओकर प्रभावी संचालन के लेल जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग के सेहो अनुरोध कलथि। मधुबनी जिला में एनीमिया के समय पर पहचान आ प्रभावी उपचारक लेल उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग 1 अगस्त से 31 अक्टूबर धरि विशेष एनीमिया स्क्रीनिंग अभियान चलायत। राज्य सरकार के निर्देश पर यह अभियान नियमित गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित कयल जायत। अभियान के क्रम में सबटा पात्र लाभार्थी सबके हीमोग्लोबिन प्रशिक्षण और परीक्षण कयल जतन, जैसे एनीमिया के स्थिति के समय रहित पता लगाकर आवश्यक परामर्श, उपचार आ जरूरत पड़े पर उच्च स्वास्थ्य संस्थान सब में रेफरल सेहो कयल जा सकय। स्वास्थ्य विभाग का मानना यह कि समय पर जांच और उपचार से मातृ और शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार संभव है। अपने सब सुन रहल छी हाल चाल।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन

0: मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। कमतौल के कोटपट्टी में राम जानकी मंदिर में भगवान श्री राम और माता जानकी के भव्य विवाहोत्सव श्रद्धा और उल्लास के संग मनाओल गेल। बहुत पैघ संख्या में श्रद्धालु सब भाग लेलत और भव्य जागरण में भजन मंडली सब अपन प्रस्तुति सेहो देलत। सेवानिर्मित कर्मी और कार्यरत कर्मी जिनकर वेतन बकाया छन अथवा सेवा समाप्ति के बाद लाभ के राशि नहीं भेट पेलन है, हुनका सबके लेल कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दिश सँ दरबार हॉल में सोम दिन 2 दिवसीय विशेष शिविर के शुभारंभ भेल। पहिल दिन भुगतान के लेल करीब 115 आवेदन आयल। शिविर आई दोसर दिन यानी कि मंगल दिन आई सेहो लागत। आवेदक अपन जरूरी कागजात के संगे भुगतान संबंधी आवेदन द सकै छथि। भारत स्काउट और गाइड के दिश से स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन और शारीरिक शिक्षक शिक्षिका सबके जिला कार्यालय राज्य उच्च विद्यालय में बिगनर्स कोर्स के प्रशिक्षण देल गेलन। कोर्स के शिविर प्रधान जिला संगठन आयुक्त स्काउट श्याम कुमार पांडे सबटा उच्च विद्यालय के चेतना सत्र में 16 ताली के सुर गूंजत एकर बारे में बतौलत। बच्चा स्काउट गाइड कोड में गप करे, एहिमे 176 उच्च विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका सब भाग लेलत। एहि मौका पर जिला मुख्य आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर चौधरी और जिला आयुक्त रोवर नीलेश कुमार सेहो उपस्थित रहत। परमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय के अध्यक्षता में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिला के जल संसाधन विभाग के अभियंता सबके संगे बाढ़ और सुखाड़ के तैयारी के लिए समीक्षा हेतु बैसार आयोजित कयल गेल। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितंबर के होय वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारी शुरू भ गेल अछि। काल्हि सोम दिन समस्तीपुर में एकटा बैसार आयोजित कयल गेल, जेमे न्यायालय में लंबित 16 होय वाला वाद सबके निपटाबे के रणनीति पर चर्चा भेल। रोसरा में साहित्य संगम के दिश से आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी में कवि सब ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक रचना सब से दर्शक सब के मन के मोहि लेलखिन। मानसूनक बरखा के दौरान वैज्ञानिक तकनीक से फलदार पेड़ पौधा लगबे से बेहतर उत्पादन प्राप्त कयल जा सकैत अछि। कृषि विज्ञान केंद्र सीतामढ़ी जिला के किसान आ बागवानी करे वाला सब के बरसात में वैज्ञानिक तकनीक से फलदार पौधा लगबे के सलाह देलखिन। एहि के लेल पहले गड्ढा के तैयारी, प्रबंधन, उन्नत प्रजाति के चयन पर काज करे के सुझाव से देल गेल। डीएम प्रतिभा रानी आ एसपी शैलेन्द्र कुमार सिंह श्रावणी मेला के तैयारी के लौके सोम के देकुली धाम के निरीक्षण कलत। माता सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम और जिला के प्रमुख आस्था केंद्र बघी धाम के सुरक्षा आब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सौंपल जायत। गृह विभाग के दिश से जारी अधिसूचना के बाद दुनू स्थल पर जल्दी BSAP के जवान के तैनाती कयल जायत। ब्रज किशोर सिंह पुपड़ी के हनुमान मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय श्री हनुमत ज्ञान महायज्ञ समापन भेल। सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ और हवन यज्ञ के संगे विद्वान और यजमान सब एहिमे भाग लेलत। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिहार सरकार के मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत नियुक्ति पावे वाला सहरसा के पैरा एथलीट मोहम्मद मिराज आलम के जिला खेल कार्यालय में सम्मान कयल गेलन। पिपरा के पथरा

0: हर पंचायत में नाग पंचमी के लेल 2 अगस्त के बैसार हैत। एसडीओ दीपक कुमार मध्य विद्यालय पिटवा टोल विद्यालय के निरीक्षण कलैत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश सँ काल्हि सोम दिन मनिगाछी के सबटा माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक विद्यालय सब में निर्वाचन साक्षरता क्लब दिस सँ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC सभागार में स्वयं पाठ्यक्रम एकीकरण आ विश्वविद्यालय परीक्षा मानचित्रण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम भेल। एहि संग संपन्न होते आजुक हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो आशीष जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 25 से 29 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर 28 और 29 जुलाई के आसपास गरज के साथ बिजली चमकने के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, सारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ कुछ स्थानों में घने बादल तथा मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के बाकी जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है और कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 90% तथा दोपहर के समय 50 से 55% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्य रूप से पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है। और कार्यक्रम में
0: जना कि हम सब बुझै छी कि हम सब बेरा बेरी के सब के समेट कोने छी, क्योंकि जाव धैर हम सब अहाँ के छै हमर सब पर्यटन रहैत अछि कि हम सब अहाँ के खुश रही, भोरे के जे समय होइ छै से नीक से कटे और नीक से कटैत अछि तऽ मोन प्रसन्न रहैत अछि और मोन प्रसन्न रहे से स्वास्थ्य सेहो नीक रहैत अछि। ओना कहलो जाइत अछि कि स्वस्थ हृदय सेहो जरूरी अछि स्वस्थ रहै के लेल।
3: तो आज हम लोग आशीष जी कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि स्वस्थ हृदय के लिए स्वस्थ आदतें क्या क्या हैं। फिलहाल अपने कार्यक्रम में हम लोग सुनते हैं पहले एक फिल्म संगीत।

0: करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कहीं सफर में जा रहे हैं कहीं घूमने या किसी काम से, और अगर मधुर संगीत के साथ मनोरंजन करते हुए अगर आप निकलते हैं तो रास्ता कैसे बीत जाता है उसका पता ही नहीं चलता।
1: निश्चित गप छे, और खास कर मनोरंजन के संगे संगे अगर हमार सबके ध्यान रखबाक चाहिए कि अपन हृदय पर, क्योंकि स्वस्थ हृदय रहत तखने हम सब स्वस्थ जीवन जी सके छी। हृदय हमर अहाँके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग अछि। बिना रुकल दिन राति काज कऽ के खून के शरीर के हरेक हिस्सा में पहुँचबैत अछि।
0: एक ये बात तो बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने कि हृदय मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह निरंतर धड़कते हुए शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त, ऑक्सीजन तथा आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाता है। यदि हृदय स्वस्थ रहता है तो पूरा शरीर स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है। आधुनिक जीवनशैली, अनियमित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव, धूम्रपान तथा प्रदूषण के कारण आज हृदय संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं।
1: और एक अगर गप करी कि एहन एहन आदत के हमरा अहाँके अपन जीवन में अनबाक चाहिए जैसे हृदय के सुधारि सके छी, तो सबसे पहले तो हरियर सब्जी, फल और ड्राई फ्रूट खाए के आदत अपन जिंदगी मानी। अइ में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट होते है जे कोलेस्ट्रॉल कम करते है, और तेल, नून, चीनी कम कर दिए, क्योंकि बेसी बीपी बढ़त है और बेसी शुगर और मोटापा से आनत जे हृदय के लिए नीक नहीं है। और खास कर के हमर अहाँके अखन और बच्चा सब जे छथि तिनका तो बहुत बेसी है जंक फूड, तलल भुनल और पैकेट बंद चीज खाए के आदत रहे छन, तो एकरा से बचबाक चाहिए। अइ में ट्रांसफैट होते जे नस के ब्लॉक कर देते। और सबसे जरूरी गप एखनके तो गर्मी के समय सेहो अछि, अइ में तो ओनाहो पानि पीबी मुदा कहियो 3-4 लीटर पानि निश्चित तौर पर पीबाक चाही। पानि खून के अहाँके पातर रखैत अछि।
0: हाँ, एक बात तो आशीष जी है, स्वस्थ आहार की आदत भी रखनी चाहिए। जैसे स्वस्थ हृदय की नींव संतुलित और पौष्टिक भोजन है। भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे तथा बीजों को शामिल करना चाहिए। इसमें विटामिन, खनिज, फाइबर तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं। इसके साथ ही अत्यधिक तेल, घी, मक्खन, तले हुए खाद्य पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, अत्यधिक नमक और चीनी का सेवन सीमित करना चाहिए। अधिक नमक रक्तचाप बढ़ाता है जबकि अधिक चीनी मोटापा और मधुमेह के कारण बनती है जो हृदय रोगों के प्रमुख जोखिम कारक है। और नियमित व्यायाम की भी आदत बनाए रखना चाहिए कि शारीरिक गतिविधि हृदय को मजबूत बनाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। प्रतिदिन कम से कम 30-45 मिनट तक तेज चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, तैराकी, योग या अन्य व्यायाम करना लाभदायक होता है। नियमित व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, रक्तचाप सामान्य रहता है तथा हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है।
1: और हमरा अहाँके आदत भऽ गेल अछि लिफ्ट पर चढ़े के, तऽ अहाँके प्रयत्न करी बेसी से बेसी सीढ़ी के माध्यम से अहाँके कतौ जाय के मौका लागत तऽ जेबाक चाहिए। दिन भर में जतेक बेसी अहाँ एक्टिव रहब ततेक अहाँके हृदय स्वस्थ रहत, और जखन अहाँ मेहनत करब तखने अहाँ नींद पूरा लऽ सकै छी, क्योंकि 7-8 घंटा के नींद लेनाइ बहुत जरूरी अछि। कम सुतै से हार्ट अटैक के खतरा से बढ़ि जाइत अछि। वजन के नियंत्रित राखी, पेट पर जमा चर्बी कखनो अहाँ ले नीक नहीं भऽ सकैत अछि। ताहि दुआरे बेसी से बेसी अपन व्यायाम करी, शरीर के थकाबी, नींद पूरा ली, और अगर किछु चलै के मौका लागे तऽ ओहिसँ कखनो कतराए नहि। और लगभग अगर किछु खास कऽ के अगर अहाँके उम्र भऽ रहल अछि तकर बाद 6 महीनामे चेकअप जरूर करबाबैत रही बीपी के, शुगर के और कोलेस्ट्रॉल के। और एहि सबके संगे सबसे जरूरी होइत अछि सकारात्मक सोच के। अहाँ हँसैत रहब, सकारात्मक ढंग से अगर सोचैत रहब तऽ ई सबसे नीक एक्सरसाइज अछि। परिवार और दोस्त सबके संगे समय बिताओ, चिंता के जतेक बेसी से बेसी दूर राखि सकी ओ ओतेक नीक हैत, और तामस तऽ नहि करी तऽ बेसी नीक।
0: तो हालांकि आशीष जी आपने एक अच्छी बात कही कि अधिकांश हृदय रोगों से स्वस्थ आते अपने आप अपना कर अपने आप को बचाया जा सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, तनाव प्रबंधन, पर्याप्त नींद, नशे से दूरी तथा समय समय पर स्वास्थ्य जांच जैसी आदतें न केवल हृदय को स्वस्थ रखती है बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाती है। इसलिए स्वस्थ हृदय के लिए स्वस्थ आदतों को दैनिक जीवन का हिस्सा बना

0: समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: और समय के संग संग हमरा सब के किछे बस करित रही त एखुनका समय में जे हिसाब से जा रहल जे हिसाब से गाछ वृक्ष कट रहल अछि एहि में वन जीव के संरक्षण के सेहो आवश्यकता अछि।
0: अभी के समय में आप देख रहे हैं आशीष जी कि लोग पोखर भर के और जमीन को भर कर पेड़ को काट कर खाली मकान पे मकान फ्लैट पे फ्लैट बनते जा रहे हैं, जिस वजह से
1: लगातार हम अहाँ के छे ग्लोबल वार्मिंग का शिकार भ रहल छी। और ये ग्लोबल वार्मिंग का शिकार एतेटा नहीं, पहाड़ जंगल सबठाम देखल जा रहल अछि। अखन लगातार असम के अखन बाढ़ देखू ओकर तेहन विचलित करे वाला चित्र सब आबि रहल अछि, तेहन वीडियो सब आबि रहल अछि कि केकरो मोन पसीज जायत, पूरा का पूरा गाम बहि रहल अछि, पूरा का पूरा पहाड़ दरक रहल अछि। ओहिसँ वन जीव सबके सेहो धीरे धीरे खत्म भ रहल छथि, हुनकर सबके प्रजाति खत्म भ रहल छनि। एखुनका समय में हम अहाँ अगर अपन आसपास के देखबै, अपन अगल बगल के देखियौ, पहले जे जानवर हमर अहाँके कि छै खेत खलिहान दिस अहाँके गाछ वृक्ष के बीच में रहै छलथि, से आब हमर अहाँके बीच में रहै छथि। क्या क्योंकि हुनकर घर के तऽ हम अहाँ मिलकर नष्ट कऽ देलियनि हैं। हम अहाँ हुनका मारै छियनि पीटै छियनि मुदा ई बिसरि जाइ छी कि ओ एलथि कि हमर सबके बीच में, हमर सबके बीच में अबै के हुनकर कारणे वएह छनि। ओ बेजुबान ओ जे वन जीव सब छथि से सब बाजि नहि सकै छथि मुदा हुनकर अहाँ हम अहाँ मिलकर घर खत्म कऽ देने छियनि, तो हमर अहाँके बीच में रहि ले मजबूर भऽ गेल छथि। और जखने एहन स्थिति हैत, एहन परिस्थिति हैत तऽ दिक्कत भेनाइ लाजमी छै। तऽ हमर अहाँके ई कर्तव्य बनैत अछि कि हम अहाँ बेसी से बेसी गाछ वृक्ष लगाबी, गाछ वृक्ष लगाबी। जंगल जखने हैत तखने हम अहाँ कहि सकै छी कि हमसब अहाँके धरती पर अपनो सुरक्षित रहब और ई जे वन जीव सब छथि तिनको सुरक्षित राखि सकै छियनि।
0: हाँ आशीष जी, भारत में दुनिया की 8% जैव विविधता पाई जाती है। बाघ, हाथी, गेंडा, मोर जैसे जीव सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। अगर ये खत्म हो गए तो ये हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगली पीढ़ी इन्हें सिर्फ किताबों में देख पाएगी। इनसे इंसानों को भी बहुत फायदा है, जैसे कि बहुत सी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जानवर से ही बनती हैं। परागण मधुमक्खी तितली फसलों का परागण करती है, बिना इनके खेती नहीं होगी। और बात करें प्राकृतिक सफाई, गिद्ध मृत जानवर खाकर बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। और मौसम नियंत्रण भी इसी से रहता है कि जंगल बारिश लाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं। वन्य जीवों से पर्यटक को बढ़ावा मिलता है। रतनबोर जिम कॉर्बेट जैसी नेशनल पार्क में लाखों लोग बाघ देखने आते हैं, इससे रोजगार भी बढ़ता है।
1: और अब किछु समसामयिक घटना के जखन चर्चा कइए रहल छी तऽ ओहो कइए लै छी। नीट प्रदर्शनकारी सब पर दर्ज मुकदमा वापस लेके बिहार सरकार किछु निर्णय लेलथ है। और तबादला एखन शिक्षक सबके जे भऽ रहल अछि, तऽ तबादला के संगे शिक्षक सबके जिला कैडर सेहो तैयार भऽ जायत। गप करी एखन अहाँके तऽ लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा आइ हैत। और ईसा ने सोना पर अहाँ के निशाना सजलत और मनु कांस्य से संतोष कलत। तो ई अखन हम सब अहाँ के किछु चर्चा करते रही समसामयिक के बारे में। आप समय हमरा सब के कही रहल है
0: कि श्रोताओं को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर ले चलते हैं और हम लोग भी सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ना, कोई व्यायाम नहीं करना और शॉर्टकट का तरीका खोजना, यानी कि घर से अगर कहीं निकल रहे हैं तो खाना खाने का उनके पास समय नहीं है, चलते चलते यानी कि जंक फूड कहीं भी, आजकल तो जंक फूड तो इतने आसानी से मिलते हैं कि हर कदम पे आपके पास ऑप्शंस है, पहले था कि घर से खा के ही निकलना है, अब तो आजकल की जो जनरेशन उनके पास समय ही नहीं है, आजकल के लड़कों आजकल के आदमियों के पास समय ही नहीं, वो चलते चलते सोचते हैं कुछ भी खा ले, तो वही स्वस्थ हृदय को मजबूत रखना है तो इन सबसे थोड़ी सी दूरी तो बतानी पड़ेगी।
1: और ओना जना एखन अहाँ गप के शुरुआत केने रही, हमरा बल्कि सबसे जरूरी है भोर में देरी से उठनाई था ओकर बाद तो एक चीज पर ध्यान राखी कि जतेक हमरा सबके शुरू से कहल गेल अछि कि अहाँ के ब्रह्म मुहूर्त में उठे से अहाँ के आधा जे काज अछि से अहाँ के सफल भ जाइत अछि और शरीर सेहो स्वस्थ रहैत अछि, ताहि दुआरे एहि पर ध्यान राखी। एखुनका समय में मोबाइल के कारण लोग अहाँ के बहुत राति तक जागल रहै छथि और सुतै छथि और उससे नींद सेहो नहि पूरा भ रहल छनि, तऽ ई सब एकटा सेहो कारण अछि अहाँ के जाहिसँ स्वास्थ्य खराब भ रहल अछि, तऽ एहि पर ध्यान राखी। और हमरा सबके आब ध्यान रखबाक अछि कि कार्यक्रम के समय के से मुदा चले चलत कहि जे कि आब अपने सब रेडियो सेट के संगे संगे हमरा सबके सुनि रहल छी न्यूज ऑन AIR ऐप पर सेहो, तऽ सुनल रहू सुनैत रहू और जुड़ल रहू हमरा सबके संगे, अहिना हँसैत मुस्कुराइत आइ के ई कार्यक्रम से हमरा आशीष के
0: आ साथे कुशल को
1: दिया विदा। नमस्कार।

0: हमसब एकेटा गप कहि लऽ चाहब कि जते चर्चा के दौरान जे हमसब अपने सबसे चर्चा केलहुँ कि स्वस्थ रहै के लेल हरदम हंसी खुशी रही, चिंता नहि करी और तामस के जतेक बेसी से बेसी दूर भ सके से कह के राखी।
1: और आशीष जी, इसमें सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे जो आजकल के लोगों में देखा जाता है कि सुबह सबसे पहले तो देरी से

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।

कानों से जब टकराएं सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा समाचार प्रभात, थोड़ी ही देर में।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्या खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं।

0: भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम वन की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया

0: में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
3: हम बहुत खुश हैं, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर।

0: आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी, सरकार ने कहा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बखमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद, हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बखमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की, विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी, विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
3: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs criminal complaints and show cause notices against agitators.

0: Is Anil Kushare for clinching the silver medal in the men's high jump event at the Commonwealth Games. Further, President Murmu congratulated Valluri Ajay Babu on securing the silver medal in the men's 79 kilogram weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Bindya Rani Devi Sorokhaibam for winning bronze in the women's 58 kilogram event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neena Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. After protest, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindustan Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines the Statesman. The Pioneer in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nidekani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home three more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyoko Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the ODC nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's short put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इकोनिज़म की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाज़ुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलती मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉर्ट पुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दिगर दिलचस्प मौजूदात पर खासतौर से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई, जोश और मुस्बत अंदाजे फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निज़ाम के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तईन नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम 1 की कामयाबी की सताइश की थी।
3: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा

0: जीत को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से कबल रियासत में कहीं भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ताजीरी, इंतकामी या नामुआफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दत तक दर्ज कराई गई सभी FIR फौजदारी शिकायतों और वजह बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कानूनी अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक वक्त की मजकूरा हद से कबल दाखिल किए गए केसों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: आसाम के उमूर दाखिला और सियासी उमूर के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुआफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। इधर तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को भी NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए मदु किया गया है। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाहती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैन अवी नेटवर्क को बरूए कार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैन अवी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तकम बनाने के लिए भारत की मुतनव सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवीत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के जेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मजबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयांग से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिश्री ने इस नजरिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तजारती और इकतसादी रबतों में बाहमी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौाक़े दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सिफारत खाने के मुताबिक दोनों

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी। गिरफ्तार लोगों की जल्द होगी रिहाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर, मतदान 30 जुलाई को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी। गिरफ्तार लोगों की जल्द होगी रिहाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर, मतदान 30 जुलाई को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में, अतिक्रमण मुक्त कराने की चल रही है कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: पटना जिले की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। आइए जानते हैं इस सीट के चुनावी परिदृश्य के बारे में।
2: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही इस सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। भाजपा अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं जनसुराज इस चुनाव के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बनाने में जुटा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 379,616 मतदाता हैं। इनमें 2,60,000 पुरुष, 179,533 महिलाएं तथा 23 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इस उपचुनाव में 4,998 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 मतदान बूथ बनाए हैं। चुनावी मुद्दों की बात करें तो ट्रैफिक जाम, जल जमाव, सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग तथा अन्य शहरी आधारभूत सुविधाएं मतदाताओं के बीच प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इस मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
3: जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के दौरान जल उठाने के लिए श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। सुल्तानगंज से मुंगेर बांका होते हुए झारखंड के देवघर तक चलने वाले इस 96 किलोमीटर कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। मेले में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ नेपाल, भूटान और अन्य देशों से भी शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुल्तानगंज से विनोद कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज मुंगेर दौरे का भी कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान

मंत्री तारापुर और असरगंज में कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। भाजपा से राज्यसभा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की 63 और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 511 संपत्तियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संबंधित वक्फ बोर्ड कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व के स्वयं के स्रोत के आदर्श नियम भी जारी किए। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण TRE4 के तहत नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना 1 से 2 दिनों के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। TRE4 के तहत 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों के कुछ पद भी शामिल होंगे। इस बीच BPSC ने सोशल मीडिया पर वायरल TRE4 की विज्ञप्ति को फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने गैर सरकारी स्वीकृत अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

AIR at 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ विधायक की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 में हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के मामले में 4 साल कारावास की सजा सुनाई थी। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के बैंक लॉकर की तलाशी में लगभग 64,79,000 रूपये मूल्य के आभूषण बरामद

बरामद किए हैं। ब्यूरो ने बरामद आभूषणों और अन्य संपत्तियों का विवरण अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आधुनिक कला तिरखा नई दिल्ली और बिहार संग्रहालय पटना ने कला और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों संस्थानों के बीच बिहार संग्रहालय में आयोजित होने वाली संयुक्त कला प्रदर्शनी शोध और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला तिरखा के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने नई दिल्ली में इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने पटना के महावीर मंदिर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब और गया के विष्णुपद मंदिर सहित राज्य की 11 महत्वपूर्ण धरोहरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसएपी को सौंपने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत इन स्थलों पर बीएसएपी जवानों की तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ धरोहरों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है और सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हालिया तनाव को देखते हुए अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिला पदाधिकारी विनोद तुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती गांव का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ा दी गई है तथा आने जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुईथासा स्थित राम जानकी पुल के पास से पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक और उसे शरण देने के आरोप में एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेसी खजूरी मार्ग स्थित कचरा प्रबंधन केंद्र के पास से पुलिस ने 20 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया की एक अदालत ने 2 बच्चों की हत्या की दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के रतनपुर स्थित बालिका गृह से 5 बालिकाओं के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस लापता बालिकाओं की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, बिहार सरकार ने कहा गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति रिहा किए जाएंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सरकार ने लोकसभा में पेश किया सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक। दैनिक भास्कर की खबर है, बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट का खनन होगा, परमाणु बम और ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होगा, 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रभात खबर ने लिखा है, 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के ट्रायल को मंजूरी। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, पंकज त्रिपाठी को मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में मिलेगा आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन पुरस्कार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार के सुधा को बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मुख्यमंत्री। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों को कोषागार के जरिए सहायक अनुदान देने की तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी, गिरफ्तार लोगों की जल्द होगी रिहाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर, मतदान 30 जुलाई को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे

पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चल रही है कार्रवाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए

0: कार्यक्रम में हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए
5: आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

0: उसमें आपको मीर का भी रंग नजर आएगा, गालिब का भी रंग नजर आएगा, दर्द भी नजर आएंगे, लेकिन इन रंगों के बावजूद शाद का अपना जो इनफराद था वो उसमें कायम है। तफक्कुर भी है, तहय्युर भी है। आप ये देखें, जैसे सफर जरूर है और उज्र की मजाल नहीं, सफर जरूर है और उज्र की मजाल नहीं, मजा तो ये है कि मंजिल ना रास्ता मालूम। ये उनकी जो गजल है, असीर जिस्म हूं मैं याद कैद ला मालूम, उसी का एक शेर है। आगे देखें, कहां से आया कहां है जाना, मैं कौन हूं किस दियार में हूं, न बस मैं गैरों को हूं न बेबस न अपने आप इख्तियार में हूं। इसमें ये गालिब का अक्स आप देख सकते हैं कहीं कहीं से। अर्श पर हम हुए तो क्या, जेरे जमीन हुए तो क्या, हैं जो यहाँ तो क्या हैं और जो नहीं हुए तो क्या। देखा तो होगा हमने अजल में तेरा जमाल, लेकिन वो कोई वक्त न था इम्तियाज का। एक और शेर देखें, दिल अपनी तलब में सादिक था, घबरा के सुए मतलूब गया, दरिया से ये मोती निकला था, दरिया ही में जाकर डूब गया। तो शाद का जो मामला है कि शाद बेहद कादिर कलाम और बिसियार गो शायर थे। अता काकवी ने उनको लेजे का शायर कहा है।
1: अच्छा।
0: कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है कि उर्दू गजल की जो कायनात है उसकी जो तसलीस है वो शाद पर खत्म होती है। तसलीस से मुराद ये है कि एक तीसरा जाविया शाद का होता है, तो बाकी दो जो जाविये होते हैं वो पहला मीर का है, दूसरा गालिब का है। कलीमुद्दीन अहमद के इस स्टेटमेंट में आप देखें कि इकबाल का नाम नहीं आता है। इकबाल का नाम अगर आता तो वो मुस्ततील कहते या मुरब्बा कहते हैं, लेकिन उन्होंने तसलीस का लफ्ज इस्तेमाल किया।
1: बेशक बेशक।
0: तो शायद इतने बड़े शायर थे कि मीर के बाद गालिब, गालिब के फौरन बाद जो सबसे बड़ा शायर जो है गजल के मामले में हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान में या हमारे बरसगीर में, वो शायद है।
1: बेशक।
0: शायद अजीम आबादी।
1: बेशक बेशक। आपने कहा कि शायद अजीम आबादी 15 साल की उम्र से शायरी, बाज़ाब्ता शायरी करने लगे थे। उनके बचपन का एक वाकया मैं आपको बता दूं कि जब उनकी उम्र महज 7-8 साल की थी और वो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है
0: जी,
1: उस वक्त शाद अजीम आबादी जो पतंग उड़ाया करते थे,
0: अच्छा,
1: एक दिन उन्होंने उस पर लिखा, जो कोई इस तिलंगी को लूटे,
0: अच्छा तिलंगी
1: जी, जो कोई इस तिलंगी को लूटे, संग आफत से इसका सब फूटे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इससे भी साफ जाहिर हो जाता है कि बचपन ही से शेरी रुझान की तरफ उनका तबीयत मायल था।
0: अब आप देखें कि पतंग का लफ्ज उनको उस वक्त इल्म में नहीं होगा
1: जी,
0: वो मकामी जुबान तिलंगी इस्तेमाल करते हैं।
1: बेशक बेशक।
0: तिलंगी इस्तेमाल करते हैं
1: जी, और उस वक्त पटना सिटी में पतंगबाजी, कबूतरबाजी, बटेरबाजी यह सब बिल्कुल आम था। शाहिद जमील साहब
0: जी,
1: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शाद ने किन किन असनाफ में लिखा और मासिर शोरा के उनके सरोकार क्या थे।
0: देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि शाद ने गजल में तबाजमाई की, गजल का जखीरा उनका बहुत ज्यादा है
1: जी,
0: और उसके बाद मरसिया निगारी भी की
1: जी,
0: मसनवी भी लिखी
1: जी,
0: रुबाई कता और नज्म भी
1: जी।
0: तो रुबाई में और कता में और मसनवी में
1: जी,
0: मरसिया और गजल में इनकी नस्बत कलाम ज्यादा है और गजल में सबसे ज्यादा कलाम है। तो गजल के अशार मैंने कुछ सुनाया आपको। अब देखिए, गजल का ये जो अशार थे इनमें तसव्वुफ है
1: जी,
0: उसके बाद आपको अंदरूनी जो जबर होता है, इंट्रोवर्ट जो शुअरा होते हैं जो अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं, शाद के कलाम में ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन शाद के यहाँ एक दूसरा रंग भी है
1: जी,
0: और उस रंग से भी लोगों को वाकफियत है, लेकिन उस पर गुफ्तगू कम हुई है। शाद का जो दूसरा रंग है गजल का, वो दूसरा रंग जो था रूमानी रंग की शोखियां थी उसके अंदर, और मामलाते हुस्न इश्क भी थे
1: जी, बेशक,
0: और उनकी तबीयत में चुलबुलापन भी नजर आता है। तो शाद का एक रूप वो भी है। तो शाद के दोनों को रूप को लेकर के चलने की जरूरत है। अब देखिए, लिखते हैं कि उठती जवानी अजब मुनासिब
1: जी,
0: सांवली रंगत हाय सितम।
1: वाह वाह।
0: शाद की एक तवील बहर वाली जमीन है, उसमें हाय जमाने का लफ्ज है
1: जी, जी,
0: इसमें हाय सितम है। देखें, उठती जवानी अजब मुनासिब, सांवली रंगत हाय सितम, आंखें रसीली बातें भोली, चाल कयामत हाय सितम।
1: क्या कहना,
0: ये देखिए रुमानी रंग की शोखियां इसके अंदर अठेलियां कर रही हैं। अपनी हवा से आप झिझकना। अब देखिए, हमने हाय जमाने वाली बात की गजल की, उसका एक शेर देखें, अपनी हवा से आप झिझकना, अपनी अदा से आप खटकना, चाल में लग्जिश मुंह पे हायाए, उफरी जवानी हाय जमाने। ये बड़ी मशहूर गजल है उनकी, मुख्तलिफ मुगनियों ने भी अपनी आवाज में इसको पेश किया। अगला शेर देखें, इसमें भी जमीन थोड़ी सी लंबी है
1: जी,
0: वो तेरी कज रविशी कज कुलही कीना रवि, दिलबरी अश्वगरी
1: जी,
0: कौन गश खा के सरे राह गिरा, कौन

0: मुआ फिर के देखा नजर, अच्छा मुआ का लफ्ज इस्तेमाल किया
1: है,
0: कौन गश खा के सरे राह गिरा कौन मुआ फिर के देखा नजर, यानी पलट के नहीं देखा। अच्छा इस शेर में खास बात यह है कि उन्होंने दो बहरे इस्तेमाल की है, ये पूरी एक बहर नहीं है। अगला देखें, चुस्त कमर का क्या सबब, तंगे कबा की वजह क्या, हम तो हैं आप सरबकप, हमसे अदा की वजह क्या। जहर में अमृत, शब में सुफेदी, शाम की रंगत, सुबह की सुर्खी, हाय वो आंखें प्यारी प्यारी, हो चुका जीना अब न जिएंगे। ये शाद का रंग है,
1: शाद का रंग है। और दूसरी तरफ खुमरियात पर भी तो उनके कई अशार हैं।
0: यकीनन यकीनन खुमरियात पर भी अशार
1: हैं। याद आ रहा, मैं आपको बता दूं कि शाद के कलाम में मैखाने का जो तसव्वुर है वहाँ भी पाकी है। उनके दीवान में एक शेर मिलता है कि बढ़ा के हाथ अलग से अलग सुबू लेते, क्या मजाल के साकी का हाथ छू लेते।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा एक और शेर बड़ा शाद का जबरदस्त है
1: जी,
0: इस पर लोगों की नजर कम गई है। गजब निगाह ने साकी की बंदोबस्त किया
1: जी,
0: शराब बाद में दी पहले सबको मस्त किया। ये जबरदस्त शेर है। तो खुमरियात में भी शाद ने अच्छा खासा लिखा है
1: जी, जी।
0: लेकिन उस पर गुफ्तगू कम होती है
1: बेशक।
0: शाद ने मसनवी भी लिखी है, जैसे नाले शाद है, चश्मे कौसर है, मादरे हिंद है, समरे जिंदगी का जिक्र आता है। 5-7 मसनविया अजकार में ज्यादा शामिल रही हैं। तो मैं समरे जिंदगी के 6 मिसरे पेश करता हूँ, गालिबन ये 3 अशार हैं। जब इसको पढ़ेंगे और कमसिन हो जाएंगे साफ इनके बातिन, जब उसको पढ़ेंगे और कमसिन हो जाएंगे साफ इनके बातिन, मैं क्या मेरी नज्म क्या बयां क्या, गूंगे का कलाम क्या जुबां क्या, जो शेर के पहले कह चुके हम 40,000 से नहीं कम।
1: वाह वाह।
0: इस मिसरे में ये भी पता चलता है कि शाद ने कितने अशार कहे इस वक्त तक।
1: आपने तज़किरा किया समराए जिंदगी मसनवी की, ये मसनवी उन्होंने कब और किस हालात में लिखे, क्यों लिखे, मैं आप बता दूं। शाद अजीम आबादी ने अपने बेटे की तकरीब मकतब के मौके पे
0: अच्छा
1: इस मसनवी को लिखा था, और उस मौके से शाये कराकर शुरका में तकसीम कराई थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: जिसमें इल्म हुनर हासिल करने की तलकीन की गई थी। इसी तरह उन्होंने 1910 ईस्वी में
0: अच्छा
1: मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल पटना सिटी में तकसीम इनामात के मौके पर एक मुसद्दस ख्वाबे वतन के उन्वान से पढ़ा था।
0: अच्छा।
1: जिसमें इल्म हासिल करने की फजीलत नहायत दिलचस्प और सलीस पैराए में बयान की गई थी।
0: अच्छा,
1: यानी
0: अच्छा।
1: इल्म पर वो जोर दिया करते थे। और मैं तो ये भी कहूंगा, मैंने जो गौर किया है कि शाद अजीम आबादी बिहार के वाहिद ऐसे खुशकिस्मत शायर हैं जिनके बेशुमार अशार जुबान जद खासो आम मशहूर मकबूल हैं।
0: यकीनन यकीनन।
1: बतौर मिसाल देखिए, जो शमा हुआ करती है रोशन सरे बाजार, इस शमा पे गिरता नहीं परवाना हमारा।
0: वाह वाह वाह। जो शमा हुआ करती है रोशन सरे बाजार,
1: इस शमा पे गिरता नहीं परवाना हमारा।
0: खूब खूब।
1: और एक नमूना देखिए, अब भी एक उम्र पे जीने का ना अंदाज आया,
0: जिंदगी छोड़ दे,
1: जिंदगी छोड़ दे पीछा,
0: पीछा
1: मेरा मजाज आया।
0: लाजवाब शेर।
1: गुलों ने खारों के छेड़ने पर सवा खामोशी के दम ना मारा।
0: अच्छा।
1: शरीफ उलझे अगर किसी से तो फिर शराफत कहाँ रहेगी।
0: क्या बात है, क्या बात। शरीफ उलझे अगर
1: किसी से
0: तो फिर
1: हो जाना जमी का सख्त होना, आसमान का
0: दूर हो जाना। जमी का सख्त होना, आसमान का दूर हो जाना।
1: गजब है आदमी के वास्ते
0: मजबूर
1: हो जाना। जमी का सख्त होना, आसमान का दूर हो जाना।
0: क्या बात। देखिए लगता है कि शाद की इस कबील के अशार में ऐसा मालूम होता है कि गालिब भी कहीं नजर आते हैं, मीर भी नजर आते हैं, दर्द भी कहीं नजर आते हैं, और कहीं के इकबाल का भी अक्स मालूम होता है। जैसा कि जिक्र हुआ कि शाद ने गजलों के अलावा रुबाई भी लिखी और में भी लिखी। शाद की रुबाइयों में जो मजामिन मिलते हैं वो फलसफियाना भी हैं, अखलाकी और असलाही भी हैं, इश्किया हैं और खुमरिया रुबाइयां भी हैं और मुतसव्विफाना भी। एक रुबाई उनकी है, बेनाम के बानामो निशा जाएंगे, बेनाम के बानामो निशा जाएंगे, मगमूम के हम खंदा जना जाएंगे, कुछ भी ना खुला अभी तक असरार उसका, कुछ भी ना खुला अभी तक असरार उसका, किस मुल्क से आए हैं कहाँ जाएंगे। ये बिल्कुल असीर जिस्म हूँ, मियाद खैर ला मालूम, ये किस गुनाह की पादाश है खुदा मालूम, ये बिल्कुल उसका अक्स मालूम होता है कि उसको शाद ने उसी मजमून को इस तरह से इसमें नज़्म कर दिया है। अच्छा एक दूसरी रुबाई देखें
1: जी,
0: पीरी के दिन हैं
1: जी,
0: गई जवानी अपनी,
1: पीरी के दिन।
0: ऐसा लगता है कि जब शाद साहब की उम्र 70-80 बरस की हो रही थी उसी जमाने की रुबाई है। पीरी के

0: है
1: जी।
0: गई जवानी अपनी हम छोड़ चले बहुत निशानी अपनी,
1: क्या कहना,
0: हम छोड़ चले बहुत निशानी अपनी
1: जी।
0: औरों की तो सुन चुके
1: जी,
0: औरों की तो सुन चुके कहानी हमसे, औरों से सुनोगे अब कहानी अपनी। ये बहुत मशहूर रुबाइयां नहीं है लेकिन इनमें गंजीने मानी मौजूद है, मानी का एक जहान मौजूद है और इससे शाद का रंग भी वाजे होता है। मरसिया की जहां तक बात है तो मरसियात का भी एक बंद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक बंद देखें, तैगे हैदरी की तारीफ में, आमतौर पर मसीह जो है वो मुसद्दस के फॉर्म में लिखे जाते हैं जिनमें छह मिसरे होते हैं, है ना। तो शाद ने अनीस व दबीर का किसी हद तक इत्तबा जरूर किया है मरसिए में, और ये बात भी मालूम बहुत से लोगों को है कि शाद जो है अनीस और दबीर का इत्तबा करते थे, लेकिन बाकायदे वो दबीर के शागिर्द भी थे, अनीस के शागिर्द नहीं थे। कलीमुद्दीन अहमद ने शाद की मरसिया निगारी में अहम इजाद के अनासिर तलाश किए। अहम इजाद का लफ्ज देखे उसको इनवर्टेड कॉमा में डाला है, उसको उन्होंने बड़े इस्तेहसान की नजर से देखा। तो एक मरसिया जिसमें तैगे हैदरी की तारीफ में लिखा गया है ये
1: इरशाद,
0: हाँ, इसके मिसरे आप देखें। बिजली सी कौन थी नजर आई निकल गई,
1: वाह वाह
0: कितना रवां मिसरा है
1: जी, जी।
0: और कितना अच्छा मिसरा है। बिजली से कौन थी नजर आई निकल गई, मेहमा सराए तन में दर आई निकल गई
1: जी।
0: सर में समाई ता कमर आई निकल गई, सर में समाई ता कमर आई निकल गई, घोड़े को काटती उतर आई निकल गई। ये तैग के बारे में, घोड़े को काटती उतर आई निकल गई, हरदम नई अदा थी जफाजू की चाल में, मछली तड़पती फिरती थी लोहे के जाल में। क्या जबरदस्त मिसरा है और कितना जोर इसके अंदर है। ऐसा मालूम होता है कि इस मिसरे के अंदर अनीस का भी जोर है और दबीर का भी जोर है। मुझे तो लगता है कि मरसिया निगारी में शाद का मकाम जो है अनीस और दबीर से शायद ही कुछ कम हो,
1: और बहुत दिलचस्प भी है,
0: बहुत दिलचस्प यकीनन यकीन। मरसिया आपने देख, मसनवी देखी आपने, शाद की जो ज्यादातर मसनवियां जो है वो पंडित दया शंकर नसीम वाली बहर में है, वो बड़ी मुश्किल बहर होती है। शौक लखनवी की जो मसनवी है उसकी बहर बड़ी रवां है, उसके मिसरे भी ज़बान ज़द खास आम है, लेकिन शाद ने मुश्किल बहर चुनी, इससे उनकी कादिलु कलामी का अंदाजा होता है और कितनी दस्तरस थी उनको जुबान पर बयान पर उसका अंदाजा होता है।
1: आपने जबान की जो बात कही कि कितना दस्तरस थी
0: जी,
1: मैं आपको ये बता दूं कि शाद अजीमाबादी को अपनी मादरी जबान उर्दू से इस कदर मोहब्बत थी कि जब वो ऑनरी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए तो फैसले उर्दू में ही तहरीर।
0: क्या बात, क्या गजब की बात है।
1: अच्छा शाहिद जमील साहब, अक्सर ये गुफ्तगू होती है कि शाद अजीमाबादी अपने हम असरों से या बिहार वालों से या उर्दू वालों से खुश नहीं थे, इसीलिए अच्छा। उन्होंने कहा था कि पर्दा पोशाने वतन तुमसे तो ये भी ना हुआ, एक चादर को
0: तरसती रही
1: तुर्बत में। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, बाकी शाद को जो कदर मंजिलत उस वक्त मिलनी चाहिए थे क्या उन्हें नहीं मिला?
0: 60 बरस की उम्र के बाद शाद को लोग शाद समझने लगे
1: जी।
0: उसके पहले शाद के मुआनदीन
1: जी,
0: मुखालफीन
1: जी,
0: हासदीन
1: जी
0: की तादाद इतनी ज्यादा थी कि शाद ने नवाए वतन के नाम से जुबान को दुरुस्त करने के लिए एक किताब लिखी थी
1: जी।
0: उस किताब में बाज़ वजूहात की बिना पर या प्रूफ की बिना पर कुछ गलतियां रह गई थी, तो उसको इन लोगों ने इशू बनाया।
1: अच्छा अच्छा,
0: इशू बनाया और बताया कि देखिए शाद के यहाँ कितनी गलतियां कितनी खामियां हैं। इंडियन क्रॉनिकल नाम का एक रिसाला जारी होता था,
1: अच्छा।
0: उसमें शाद के खिलाफ बड़े मजामीन छपे
1: जी।
0: और यही नहीं, सितम बालाय सितम ये कि शाद के जो अशार दुरुस्त थे उनमें भी उल्टे सीधे अल्फाज शामिल कर करके
1: उसे पेश
0: तोड़ मरोड़ के और शाद को गलत शक्ल दे करके उसमें शाया किया गया और बताया गया कि साहब देखिए शाद ऐसे ही उल्टे सीधे अशार कहते हैं।
1: उर्दू में भी तो कोई रसाला जारी हुआ था उनके खिलाफ जिसमें बहुत ज्यादा जो है कुछ ना
0: अलपंच
1: मामला था।
0: इंडियन क्रॉनिकल के नाम से जो रसाला जो निकलता था जिसमें शाद के खिलाफ लिखा गया वो किसी वजह कर वो बंद हो गया, तो उसको लोगों ने छोड़ करके फिर एक नया रसाला निकाला
1: उनके मुखालफिन
0: थे
1: उनके शोहरत से
0: जलते थे जो कि शाद की बुराई का शाद की हिज का और शाद की खराबी बिसियार का। अब देखिए अवध पंच वहां निकल रहा था
1: जी,
0: यूपी से
1: जी,
0: और यहाँ इन्होंने उसके नाम पे अलपंच निकाल दिया। अवध पंच में भी उनके बारे में मजामीन छपते थे, निगेटिव मजामीन छपते थे, मनफी मजामीन। इसी से शाद की अजमत का अंदाजा होता है कि ये शख्स उस जमाने में कितना बड़ा शायर था, कितना अजीम शायर था कि हासदीन की तादाद बेतहाशा थी
1: जी।
0: वक्त गुजरा वो सारे के सारे खत्म हो गए।
1: मैंने तो ये भी सुना है कि जिस

0: जी
1: इसकी जो शुरुआत है
0: जी
1: दो सहेलियों की गुफ्तगू से है।
0: बेशक बेशक
1: वो जो लड़की है जुबैदा जुबैदा जो उसकी हीरोइन है किताब
0: की शादी हुई है और उसकी
1: अनवरी नाम की सहेली
0: अनवरी जो है
1: अनवरी आती है उससे बात करती
0: जी वो उनसे मिलने आती है
1: वो बहुत दिलचस्प मुकालमा है
0: जी मिलने आती है और वो पूछती है कि भाई तुम्हारे बहनोई साहब जो बधावा लेके आए उसका काफी चर्चा है वो क्या है तो वो एक साड़ी दिखाती है
1: बनारसी साड़ी थी
0: बनारसी साड़ी जो है
1: बनारसी साड़ी थी
0: तो उसकी कीमत कोई खास नहीं है लेकिन उसमें वो नॉवेल या नॉवेलेट कहिए बधावा भी उसमें था उसे जुबैदा पढ़ के बहुत मुतासिर हुई और उसने सहेली को बताया कि देखो इसमें ये सारी बातें हैं उन्होंने उनकी सहेली ने कहा कि भाई मजाक किए होंगे वो उन्होंने कहा कि नहीं
1: बहनों ये तो मजाक करेंगे
0: हाँ मजाक लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहा है कि तालीम हासिल करने से ये फायदा है वो फायदा है और जो लोग तालीम नहीं हासिल किए वो किस तरह से तबाह बर्बाद
1: अच्छा, इस नुक्ते पर
0: जी
1: एक खास बात मुझे याद आती है
0: जी
1: ये जो लड़की जुबैदा है
0: जी
1: इसकी वालदा से
0: जी
1: और इनके बहनोई से यानी सास में और दामाद में झगड़ा हो गया था
0: बिल्कुल
1: झगड़ा हो गया था और मुकदमाबाजी भी हो गई थी
0: बिल्कुल
1: उसके बावजूद ये शख्स जो है अपनी साली को जो है तोहफे में भेजता है ये खास बात है
0: उनके बहनोई का नाम काजिम हुसैन
1: काजिम हुसैन
0: हाँ साहब
1: बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त
0: जो शांतापुरी साड़ी लेके गए थे जो कलकत्ता में महज 4 रुपए में मिलती थी
1: आज की तो 4,000 हो गई
0: वो 4 रुपए की साड़ी लेके गए थे तो ये देखिए कि एक तरफ तो लोग कितनी कीमती कीमती साड़ियां तोहफे जेवरात देते थे लेकिन उनकी सहेली को इसीलिए हैरत हो रही थी कि भाई ये 4 रुपए की साड़ी तुम्हारे बहनोई दिए हैं और वो भी आपने सही कहा कि भाई वो आए कैसे हाजिर कैसे हुए लोगों के ताल्लुकात खराब
1: सास से तो झगड़ा हो गया था
0: जी लेकिन जुबैदा खुश थी बहुत खुश थी कि वो बधावा देख के कि ये जो इस्लाही नॉवेल उससे जो उसे नसीहत मिला था और पूरे कौम और माशरा के लिए था उसका उसने तस्करा अपने
1: अनवरी से किया खास तौर से उसका तस्करा किया शाद साहब ने नज़में भी लिखी हैं जिनका जिक्र कम होता है लेकिन नकीम अदर शाद साहब ने जो किताब मुरत्तब की बाकियात शाद करके उसमें शाद की कई नज़में शामिल हैं
0: अच्छा।
1: तो एक नज़्म उसमें से तराना वतन भी है
0: जी, जी।
1: 4 मिसरे में आपको सुनाता
0: अच्छा।
1: हूँ इस नज़्म के पहले मिसरे में ही शाद ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया
0: अच्छा।
1: है ए गोश है जन्नत है ए शाद वतन अपना एक गोश है जन्नत है ए शाद वतन अपना ताहश रहे यारब आबाद चमन अपना एक माँ के ये बेटे हैं हिंदू हों के मुस्लिम हों
0: बेशक बेशक
1: एक माँ के ये बेटे हैं हिंदू हों के मुस्लिम हों गुलजार है दोनों से दामाने वतन अपना देखिए इससे जो है तवत्तुन की बू आती है
0: जी।
1: ये अंग्रेजों के जमाने की बात है लेकिन सरजमीन हिंद और सरजमीन वतन
0: जी।
1: को किस नजर से वो देखते हैं कि इस तराने वतन के उनवान से ये लिखा है उन्होंने शाद साहब के साहबजादे सईद हुसैन खान ने हयात फरियाद में अर्ज हाल के तहत पसे मर्ग बाकियात के बारे में लिखा है तो लिखते हैं कि वालिद मरहूम ने अपनी गैर मतबूआ तालीफात और असनाफ नज्म व नसर का बहुत बड़ा जखीरा छोड़ा है 50-60 जूज से ज्यादा तो हजरत का कुलियात मुश्तमिल बर गजलियात खुमरियात रुबाइयात और कतात वगैरह है
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: ये लिखा उन्होंने
0: जी, जी।
1: 150 से ज्यादा मरसिये हैं और कोई मरसिया 125 बंदों से कम नहीं है
0: 125 बंद
1: जबकि एक बंद में 6 मिसरे होते हैं मुसद्दस 6 मिसरे होते हैं और नसरी किताबों का अलग जखीरा है मैंने शाद साहब के साहबजादे की इस तहरीर से अंदाजा होता है कि शाद अजीम आबादी ने बहुत लिखा बहुत लिखा बहुत लिखा किताबें उन पर भी बहुत मिलती है लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी उनके फन का मुहासबा होना बाकी है खास तौर से नसर के मामले में
0: सामाईन हजरात अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि शाद अजीम आबादी जैसे बाकमाल शायर की फनी खसूसियात पे मजीद गुफ्तगू की जाए लिहाजा मैं जनाब शाहिद जमील का शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर को पेश करते हुए रुख्सत होना चाहते हैं कि तुम अपने शाद के हक में दुआए मगफरत करना गुलामे बावफा है दोस्तों मुखलिस तुम्हारा है
1: क्या बात बहुत शुक्रिया कदरदारी साहब
0: बहुत शुक्रिया
2: शाद अजीम आबादी अदबी दुनिया का एक मुतबर नाम अभी आप समाप्त फरमा रहे थे शाहिद जमील से कैसर जाहिदी की गुफ्तगू समीन काम पर हिफाजत और सेहत का आज आलमी दिन है ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि सेहत के मफहूम में जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और नफसियाती सलामती भी बराबर की शरीक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन

0: मतलब यह है कि दुनिया का हर इदारा, कारखाना या दफ्तर, इस बात का पाबंद है कि वह अपने मुलाजमीन को ऐसा माहौल फराहम कराए जहां उनकी ज़िंदगी और सेहत को कोई ख़तरा ना हो। मुलाजमीन को काम के दौरान हिफाजती सामान जैसे हेलमेट, दस्ताने, मास्क फराहम करना और उनके सही इस्तेमाल की तरबियत देना बेहद ज़रूरी है। तो सामाइन, बातें और भी करेंगे इसके मुतालिक। आइए, अब पेश खिदमत है कलाम शायर। आज अपने कलाम के साथ हैं शहजाद अशरफी।
1: वजन के चंद अशआर, मतला अर्ज किया है कि तबाह कुन है समा, धूप कर बलासी है, और फिजा में डूबी हुई ख्वाब गूं उदासी है, फिजा में डूबी हुई ख्वाब गूं उदासी है। अब मुझे न छेड़ो तबीयत जवान होने दो, मुझे न छेड़ो तबीयत जवान होने दो, अभी तो बाँह में कुव्वत मेरी जरा सी है, अभी तो बाँह में कुव्वत मेरी जरा सी है, और एक एक कतरे शबनम भी चूस डालेगी, एक एक कतरे शबनम भी चूस डालेगी, अभी तो खुए तमन्ना बहुत ही प्यासी है, अभी तो खुए तमन्ना बहुत ही प्यासी है। शेर देखें कि किसे मैं रिंद कहूँ और किसे कहूँ साकी, किसे मैं रिंद कहूँ और किसे कहूँ साकी, शराब खाने में कुछ ऐसी बदहवासी है, शराब खाने में कुछ ऐसी बदहवासी है, और नज़र झुकी ही रहे तो मज़ायका क्या है, नज़र झुकी ही रहे तो मज़ायका क्या है, चमन चमन में अभी नीम बेलेबासी है, चमन चमन में अभी नीम बेलेबासी है। और मख्तार्स किया है कि चला जो तीरे सितम बे बस के बेकसा घायल, चला जो तीरे सितम बस के बेकसा घायल, यही तो आपकी शहजाद रूशनासी है, यही तो आपकी शहजाद रूशनासी है। और एक और गजल के चंद अशआर कि दर्द कब तक हिजाब में रहता, अर्ज किया है कि दर्द कब तक हिजाब में रहता, जब्त गम के अजाब में रहता, दर्द कब तक हिजाब में रहता, जब्त गम के अजाब में रहता, और गर्दिशे इनकलाब में रहता, खून ही इंतखाब में रहता, गर्दिशे इनकलाब में रहता, खून ही इंतखाब में रहता। और शेर अर्ज किया है कि लाख कांटा गुलाब में रहता, दिल गजल की किताब में रहता, ला कांटा गुलाब में रहता, दिल गजल की किताब में रहता, लफ्ज़ शमशीर बेनियाम हो जब, लफ्ज़ शमशीर बेनियाम हो जब, मैं कहाँ तक हिसाब में रहता, और दोस्ती कद दराज से कर ली, दोस्ती कद दराज से कर ली, वरना इज्जत माब में रहता, वरना इज्जत माब में रहता, अक्कू बकू धूल फांकते शहजाद, दाना दाना जो ख्वाब में रहता, दाना दाना जो ख्वाब में रहता। और एक और गजल देखें, मतलब अर्ज किया है कि सजा के पुरखों ने रखा था जो करीने से, सजा के पुरखों ने रखा था जो करीने से, उतारी हमने वो तहजीब दिल के जीने से, उतारी हमने वो तहजीब दिल के जीने से, और बढ़ाई जाती थी तौकीर जिससे महलों की, बढ़ाई जाती थी तौकीर जिससे महलों की, बदल रहे हैं मुकद्दर हम उस नगीने से, बदल रहे हैं मुकद्दर हम उस नगीने से, हया की कैद से खुद को निकाल कर आखिर, हया की कैद से खुद को निकाल कर आखिर, दिखा दिया है जमाने को आप गीने से, हुआ है होता रहे बूंद बूंद सन्नाटा। शेर देखें कि हुआ है होता रहे बूंद बूंद सन्नाटा, मैं खुश खराम हूँ दरिया उठा के पीने से, मैं खुश खराम हूँ दरिया उठा के पीने से, तमाम रात तेरी याद डस रही थी मुझे, तमाम रात तेरी याद डस रही थी मुझे, लगा के देख लिया घाव हमने सीने से, लगा के देख लिया घाव हमने सीने से, लहू जला के गरीबों ने जिस्म खाक किया, लहू जला के गरीबों ने जिस्म खाक किया, अमीर पाक हुए खुशनुमा दफीने से। और मक्ता देखें कि मुझे था नाज बहुत ना खुदा पे ऐ शहजाद, मुझे था नाज बहुत ना खुदा पे ऐ शहजाद, मगर उतार चला मुझको वो सफीने से, कि लीडर को लीडर लिखूंगा, वक्त का सौदागर लिखूंगा, लीडर को लीडर लिखूंगा, वक्त का सौदागर लिखूंगा, फूलों को पत्थर लिखूंगा, खुद को शीशा घर लिखूंगा, फूलों को पत्थर लिखूंगा, खुद को शीशा घर लिखूंगा, मैं क्या हूँ तू क्या है साकी, मैं क्या हूँ तू क्या है साकी, होश में आने पर लिखूंगा, होश में आने पर लिखूंगा, और शहरों को तुम शहर ही लिखो।

0: शहरों को तुम शहर ही लिखो, मैं दुख का सागर लिखूंगा। शहरों को तुम शहर ही लिखो, मैं दुख का सागर लिखूंगा। और विष अमृत था जिसकी खातिर, विष अमृत था जिसकी खातिर, मैं उसको शंकर लिखूंगा, मैं उसको शंकर लिखूंगा। और कैसे कैसे लोग यहाँ हैं, हर चेहरा पढ़कर लिखूंगा। कैसे कैसे लोग यहाँ हैं, हर चेहरा पढ़कर लिखूंगा। और एक गजल के चंद अशआर देखें कि मेरी बदमस्ती का मुझको क्या सिला दे क्या खबर, मेरी बदमस्ती का मुझको क्या सिला दे क्या खबर, पांव के नीचे का दुश्मन कब हिला दे क्या खबर, पांव के नीचे का दुश्मन कब हिला दे क्या खबर। और एक इशारे से वो कब दुनिया मिटा दे क्या खबर, एक इशारे से वो कब दुनिया मिटा दे क्या खबर। इस वजूदे बेबका को पर लगा दे क्या खबर, इस वजूदे बेबका को पर लगा दे क्या खबर। क्या पता अपनी खुशी को आईना दिखलाए कब, क्या पता अपनी खुशी को आईना दिखलाए कब। किस तरह आँखों को सावन की सजा दे क्या खबर, किस तरह आँखों को सावन की सजा दे क्या खबर। और उम्र भर जीना बजीना आरजू दर आरजू, उम्र भर जीना बजीना आरजू दर आरजू, किस तरह मुझको हंसाए या रुलाए क्या खबर, किस तरह मुझको हंसाए या रुलाए क्या खबर। और आखिरी शेर के, ऐश की मीठी तमन्नाओं में उलझी जिंदगी, ऐश की मीठी तमन्ना में उलझी जिंदगी, नीम की पत्ती चबाने की सजा दे क्या खबर, नीम की पत्ती चबाने की सजा दे क्या खबर। और मक्ता पेश किया है कि सोचती है बस यही शहजाद अपनी बेबसी, सोचती है बस यही शहजाद अपनी बेबसी, आह की गूंगी सदा क्या गुल खिला दे क्या खबर, आह की गूंगी सदा क्या गुल खिला दे क्या खबर।
1: शहजादा शफी से आज आप समाप्त फरमा रहे थे उनके कलाम। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं काम पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन के बारे में। हुकूमतों और मुतालका इदारों को चाहिए कि वह लेबर कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं और हिफाजती मेयार पर पूरा ना होने पर कंपनियों पर जुर्माना आयद करें। काम पर हिफाजत और सेहत का आलमी दिन महज एक तकरीब या रस्मी दिन नहीं, बल्कि ये मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ और एक महफूज मुस्तकबिल का अहद है। किसी भी मुल्क या इदारे की हकीकी तरक्की उसकी इमारतों या मुनाफों से नहीं, बल्कि वहाँ काम करने वाले लोगों की सलामती और खुशहाली से नापी जाती है। साल 2026 में हम सबको, ख्वाह वह हुकूमतें हों, मालिकान हों या खुद मुलाजमीन, ये अज़्म करना होगा कि हम मिलकर काम की जगहों को खतरात से पाक बनाएंगे, ताकि हर मेहनतकश शाम को सही सलामत अपने घर वापस लौट सके।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म कलंक के इस गीत के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। श्रेया घोषाल का साथ दिया है इस गीत में वैशाली महाड़े ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत निर्देशन प्रीतम का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

शान, कविता कृष्णमूर्ति और बेबी स्नेहा को भी आप सुन रहे हैं। इस गीत को लिखा है नासिर फराज ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है कोई मिल गया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

रूप कुमार राठौर, हर्षदीप कौर को भी आप सुन रहे हैं फिल्म खट्टा मीठा में। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इस गीत को संगीत से सजाया प्रीतम ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।

शंकर महादेवन और अलका याग्निक को भी आप सुन रहे हैं फिल्म नायक में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार ए आर रहमान।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

फिल्म लगान में अभी आप सुन रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और वसुंधरा दास को। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है बज्जी का कार्यक्रम अंगना।

0: अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव प्रणाम करत हति। अपने सबके बज्जिका के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। खुशी के बड़ा महत्व होइया। खुशी आदमी के तब भेटैया जब हुनका मन मुताबिक कोनो काम पूरा होइया। हर काम आदमी के मन के मुताबिक होए, जे चाहे से भेट जाए, ये जरूरी नहीं है। एकरा लेल मन के उदास कैला से कोनो फायदा नहीं है, उल्टे ऐसे नुकसाने होइया। मन तनाव में रहैया आ जल्दी कोनो काम में मन नहीं लगैया। ऐ लेल कोनो परिस्थिति में उदास नहीं रही, सकारात्मक सोच रखेत अपन इच्छा के पूर्ति के लेल अपन मन मुताबिक काम के पूरा करे के लेल प्रयास करी आ खुश रही। खुशी से आदमी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आवैया आ संगे ऐसे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक यानी निम्न प्रभाव पड़ैया। ओना खुश रहना आदमी के अपन स्वभाव भी होइया। बहुते एहन आदमी हतन जिनका जीवन में जे भेटल है हुनका पास जेहे है वही में ऊ खुश रहत हतन। आ बहुत आदमी एहनो है जिनका जीवन में बहुत कुछ भेटल है आ ओकरा बादो ऊ खुश नहीं रहत हतन। एकरा पीछे भी कारण है, हुनका भी बहुत कुछ होला के बादो कुछ एहन बात के कमी होइया जैसे ऊ उदास रहत हतन। ए लेल फिर कहत हती सब कुछ सबके भेट जाए, सब कुछ मन मुताबिक होए, आदमी के जीवन में कोनो बात के कमी नहीं होए, एहन शायदे होइया। ये सब बात पर विचार करत हरदम खुश रहे के प्रयास करे के चाहिए। खुशी के बारे में एगो आदमी के की कहना है आओ सुनत हती।
1: खुशी सबके अपन अपन होए है, केकरो रुपया कमावे में खुशी मिले है तो केकरो खूब खर्चा करे में, केकरो घूमे फिरे में खुशी मिले है तो केकरो अच्छा अच्छा पहने ओढ़े में खाए पिए में। ए तरह से जब केकरो इच्छा के अनुसार ओकर काम हो गेल जे चाहल से मिलल तो ओय में खुशी मिलल। विद्यार्थी सब अब कोई कंपटीशन के तैयारी करे या ओय में सफल हो गेल तो ओकरा खुशी के ठिकाना न रहे है। माय बाप के लेल ओकर बेटा बेटी पढ़ लिख लेलक, सबके नौकरी चाकरी शादी विवाह हो गेल तो ई हुनका लेल सबसे बड़ा खुशी भेल। ओना ही किसान सबके देखू, ओकर फसल अच्छा भेल तो ओकरा फसल से खुशी मिलैया। अगर एक लाइन में कह

0: जाए तो इच्छा के पूर्ति से खुशी मिले है, पर इहो बात है कि इच्छा के कोनो अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा भेल नहीं कि दूसरा इच्छा मन में जागे लगल है। एक काम पूरा भेल तो दोसर काम सामने आ गेल। ई सब जीवन भर चलत रहत। अइला हम तो यही कहब, जीवन में अपन इच्छा के पूरा करे प्रयास हमेशा करे चाहिए, लेकिन जे जीवन में भेटल है, जो भगवान देलक है, आदमी के ओय में खुश रहे के चाहिए। काहे के सबसे बड़ा खुशी संतुष्टि में है, जे लोग के जल्दी नहीं होय है।
1: तो जीवन में जे भेटल है ओय में खुश रहत, आगे अपन इच्छा के पूर्ति के लेल जे संभव हो वो प्रयास करी। तो खुशी के महत्व के देखत जीवन में खुश रही, स्वस्थ रही। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त अपने के सुनवावत हती ब्रजेश कुमार सुमन के गायल ई झूमर गीत।

0: हर साल 3 जुलाई के दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनायल जाइए। एकर मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से होए वाला हानिकारक प्रभाव के बारे में लोग सबके बीच जागरूकता फैलावे के है। देखू, प्लास्टिक एक एहन पदार्थ है जे जल्दी नष्ट नहीं होइया। एकरा जमीन में गाड़ देल जाए भी तई सैकड़ों वर्ष लगला के बादो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होइया। प्लास्टिक से कई तरह के नुकसान होइया। ये पर्यावरण के नुकसान तक पहुँचेबे करैया, संगे एकरा से हमर स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ैया। जानवर भोजन समझ के प्लास्टिक के खा जाइया, जैसे जानवर के मृत्यु हो जाइया। प्लास्टिक से एहन प्रदूषण निकलैया जे पेड़ पौधा से लेके मनुष्य के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान पहुँचावैया। प्लास्टिक के जलावे पर प्रदूषण फैलैया। इतने नए प्लास्टिक नाला के बंद कर दैया, जैसे नाला के पानी नहीं बह पावैया। नदी समुन्दर में बेसी तर कचरा प्लास्टिक के पैल जाइया। अइ तरह से देखल जाए तो प्लास्टिक हर तरह से नुकसान पहुँचावैया। देखल जाए तो हम सब प्लास्टिक के उपयोग बेसी तर बैग के रूप में करत हती। बाजार से कोनो सामान लावत हती तो प्लास्टिक बैग में लेके आवत हती। तो हम सब प्लास्टिक के बैग के उपयोग करे से या प्लास्टिक के कोनो सामान के उपयोग करे से बची। अगर कोनो सामान बाजार से लावत हती तो अपन कपड़ा वाला झोला में लेके आई। दुकानदार के भी प्लास्टिक बैग में कोनो सामान देवे से परहेज करे के चाही। आ सामान देवे के लेल कपड़ा के झोला या कागज के ठोंगा के उपयोग करे के चाही। ऐ तरह से प्लास्टिक के बैग आदि के उपयोग करे से बची। जैसे प्लास्टिक से होए वाला हानि से हम सब बच सकी आ कोनो तरह के ऐसे केकरो नुकसान नहीं पहुँचे, चाहे वो पर्यावरण हो, जीव जंतु हो, माटी आ पानी हो या नदी नाला समुन्दर। तो एक बार फिर कहत हती, प्लास्टिक के प्रयोग करे से सब कोई बची। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त अपने के सुनवावत हती रेणु सिन्हा के खिस्सा राधा भौजी।
1: श्रोता भाई बहन, आई हम अपने के अंगना में उपस्थित हती एगो कहानी लेकर। हमर कहानी के शीर्षक है राधा भौजी। गोपाल बाबू के लड़का कृष्ण कुमार बड़ा होनहार और सहज स्वभाव के हतन। पढ़े लिखे में बड़ा तेज हतन। गांव के स्कूल से ही कृष्ण कुमार पढ़लन, बाकी प्रथम श्रेणी से ही पास करत रहलन हा। कृष्ण कुमार के बाबूजी और माई प्रेम से किशन कहत रहथिन, यही से गांव भर में सब कोई हुनका किशन कह के पुकारे लागल। किशन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गेलन और बोकारो शहर में लोहा के कारखाना में नौकरी भी करे लगलन। शहर में नौकरी करत रहत किशन बाकी समय निकाल के गांव अपन माई बाबूजी से भेंट करे आ जात रहत। एक बेर किशन जब शहर से गांव अयलन तब ममुहर जाय के लेल कहलन वो अपना माई से। तो हुनकर माई कहलथिन, जा मामा मामी से भेंट कह लीह आ बूढ़ नानी हव।

भेंट कर लो जाके, केकरो जिंदगी के कोनो ठिकाना न है। उ त पाकल आम है, कखनी चू जतै कोनो भरोसा न है। यही से जाकर भेंट करिए आब। किशन खुशी खुशी अपन ममुहर के गांव जाय के लेल जतरा कैलन आ पहुँच गेलन अपन ममुहर गांव। किशन जब गांव में पहुँचलन आ रास्ता से जात रहत त गांव के खेत खरिहान के सुंदर दृश्य देख के मन बड़ा खुश भेलन। कहाँ शहर आ कहाँ ही गांव, लगत है जैसे प्रकृति चारों तरफ अपन सुंदर दृश्य में बसत हतन। लाल लाल लीची के फल आ हरियर हरियर सुंदर सुंदर आम आ कटहल के गाछी देखते सबके मन खुश कर देवे। उ गांव में एगो आम के गाछी इतना सुंदर फरल रहे कि हर आदमी उ गाछी के देख के लोभा जात रहे। किशन भी उ गाछी के देखते आगे बढ़ल जात रहत कि इतने में चार पांच लड़की के झुंड उ गाछी में घूमत देखाइत दिलन। उ लड़की के झुंड में एगो लड़की इतना सुंदर रहे कि किशन उ लड़की के देखलन त देखते रह गेलन कुछ देर तक। रास्ता भर ये सोचत रहलन कि किनकर लड़की है पता लगावे के चाही। किशन जब अपना नानानी के यहाँ पहुँचलन तो मामा मामी और नानी सबसे बहुत प्रेम से मिललन और सबके गोर लगलन आ स्नेहगर आशीर्वाद पैलन। एक दिन जब किशन अपना नानी के पास बैठल रहत तो गांव के सुंदर दृश्य के आ आम और लीची के गाछी के शोभा के बखान करे लगलन और नानी से कहलन, गे नानी तू जनैत हते आम के गाछी में चार पाँच गो लड़की सब घूमत रहे, जे में बड़की बड़की सुंदर आँख वाली सबसे सुंदर एगो लड़की रहे, उ लड़की कौन है? त किशन के नानी कहलथिन, रे किशन केकरा बारे में तू कहत हत? उ त जमींदार रामजी बाबू के लड़की है राधा, ओकरे बारे में। इ गांव में सबसे सुंदर हुनके लड़की है। किशन बड़ा खुश होके नानी के गोर दबावे लगलन आ नानी से कहलन, गे नानी तू बात चलाब, हम उहे लड़की से शादी करब। तो नानी कहलथिन, बबुआ तू कहाँ इंजीनियर आ उ लड़की भले ही सुंदर त है बाकी पढ़ल लिखल न है, कैसहू पढ़े लिखे के जानत है और गांव के स्कूल से सातवां आठवां पास है। तो किशन कहलन, गे नानी कम पढ़ल लिखल है तो की भेलै, हम हुनका पढ़ा लेब, जितना पढ़तन उतना हम पढ़ा देब। तो नानी कहलथिन, ठीक है तू कहत हत तो बात चलबत हती। तो ये तरह से नानी के आ मामा के रामजी बाबू से बातचीत कैला पर शादी के दिन भी तय हो गेल। इतना सुंदर आ सहज स्वभाव वाला लड़का आ नौकरी है तो इंजीनियर, भला कौन बेटी वाला न चाहते अपना बेटी से शादी करे के। रामजी बाबू खुशी खुशी तैयार हो गेलन अपन लड़की से शादी करेला। बाकी एक बेर किशन के माई बाबूजी एकर विरोध कैलन कि कम पढ़ल लिखल लड़की से तू ब्याह न कर, तब भी किशन न मानलन आ कहलन कि बाबूजी कोई बात न है, शादी के बाद हम राधा के पढ़ा लेम। इस तरह से एक दिन किशन राधा से शादी करके ब्याह के बंधन में बंध गेलन। किशन हमर भैया के बचपन के दोस्त हतन, उ जब जब गांव अबैत जात हतन तो कुछ देर के लेल ही सही हमरा यहाँ जरूर एतन। शादी करके जब उ राधा भौजी के संग जात रहत शहर तो हमरा यहाँ भी अलन और कहलन कि सीमा देख अपना भौजी के हम शादी कर ले ली है। भौजी यानी राधा भौजी जे देखे से देखते रह जाए, इतना सुंदर जे लागे कि भगवान हुनका के फुर्सत के समय में बनौले होतन। बाकी अति सुंदरता के बाद हुनका में देहाती अल्हड़पन बेसी रहे, न रहन सहन के ढंग रहे और न केकरो से कैसे बातचीत करे के चाहे एकरो तरीका न रहे। हम ये बात किशन भैया से कहती, बाकी उसे पहले उहे हमरा के कहलन कि ये सीमा तू जे कहबे से हम बुझत हती, तू अपना भौजी के कुछ रहन सहन के ढंग आ बोले चाले के यानी केकरो से कैसे बातचीत करे के चाहे तनी सिखा द। हम कहली, हो भैया ए लेल तोहरा कम से कम एक सप्ताह रुके के पड़तब। अच्छा ठीक है हम रुकब, किशन भैया कहलन। एगो बात रहे राधा भौजी में, हुनकर स्वभाव बहुत ही मिलनसार रहे, तनिको न बुझायल कि हमर अपन भौजी न हतन। बहुत अच्छा सील स्वभाव आ कोई चीज सीखे के प्रवृत्ति भी रहे, कोई भी रहन सहन के ढंग आ बातचीत करे के सिखाई त जल्दी सीख लत। न त केकरा आप कहूँ कि केकरा तुम कहूँ, एकरो ढंग न रहे हुनका में। खैर एक सप्ताह ऐसा ही ननद भौजाई के हंसी ठिठोली में समय बीत गेल और किशन भैया राधा भौजी के

लेके शहर चल गेलन। शहर गेला पर किशन भैया राधा भौजी के लेल घर ही में मास्टर बोला के पढ़ावे लगलन और अपनो समय निकाल के हुनका के पढ़ावे लगलन। समय बीतत गेल, राधा भौजी मैट्रिक पास क गेलन और ओकरा बाद बीए भी पास क गेलन। राधा भौजी इतना लगन आ मेहनत से पढ़ाई कैलिन कि हरदम प्रथम श्रेणी से ही पास कैलिन। बीए पास कैला के बाद किशन भैया भौजी के लेके गांव जात रहत त एक दिन के लेल हमरो यहाँ आयलन। जब राधा भौजी हमरा दरवाजा पर गाड़ी से उतरत रहत त जब हम उनका देखली त देखते

0: किशन भैया भौजी के लेके गांव जात रहत त एक दिन के लिए हमरो यहाँ आयलन। जब राधा भौजी हमरा दरवाजा पर गाड़ी से उतरत रहत तो जब हम उनका देखली तो देखते रह गेली। हुनका में ऊ परिवर्तन हो गेल रहे कि लागते न रहे कि उहे राधा भौजी हथिन। भगवान सुंदरता तो दिले ही रहथिन और पढ़ला लिखला आ शहर में रहला के कारण खूब स्मार्ट लगत रहथिन। हमरा मुँह से निकलिए गेल कि वाह भैया तू तो भौजी के खूब स्मार्ट बना देला। ई तो तनिको न लगत हथुन कि उहे राधा भौजी हथुन। बोले चाले में भी खूब फरहर हो गेलिन। सबसे बातचीत करत त तरीका से बात करत। इहे बीच में हुनका दूगो बच्चा भी हो गेल रहे, एगो लड़का आ एगो लड़की। हम कहली भौजी से जब एगो लड़का हो गेल तो दोसर बच्चा न हो देती, ई तो लड़की हो गेल। तो राधा भौजी कहलिन हे बबनी बिना लड़की के अंगना घर तनिको न शोभैया। ए लेल जितना लड़का जरूरी है उतना ही लड़की भी जरूरी है। हम तो राधा भौजी के लड़की के प्रति सुविचार सुन के बहुत खुश भेली। ओकरा बाद किशन भैया आ राधा भौजी एक दिन रह के हमरा यहाँ गांव चल गेलन अपना माई बाबूजी से मिले। ओकरा बाद किशन भैया राधा भौजी के साथे अपना ससुराल भी गेलन, वहाँ भी सबसे भेंट कैलन। ममहर में भी मामा मामी या नानी से भेंट कैलन। सब कोई राधा बेटी या किशन भैया के सुखी सम्पन्न देख के बहुत खुश भेल। कुछ दिन गांव में रहला के बाद उ लोग शहर लौट गेलन। वहाँ गेला के बाद राधा भौजी बीएड के पढ़ाई कैलिन और सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर काम भी करे लगलिन। साथे साथे टोला मोहल्ला में जाके लड़की या महिला सबके पढ़े लिखे के लिए जागरूक करे के काम भी करे लगलन। यहाँ तक कि जे लड़की या महिला में हस्तकला के हुनर रहे जैसे पापड़ चिप्स अदौड़ी बड़ी अचार मुरब्बा बनावे के ओकरो में जागरूकता लावे के कोशिश कैलन। जे लड़की में सिलाई कटाई बुनाई आ कढ़ाई के हुनर रहे ओकरो सबके प्रेरित कैलिन कि तू सब अपना हुनर के प्रचार प्रसार कर आ लघु उद्योग खोले के चाहबू तो सरकार भी तोरा सबके मदद करी। यही तरह से काम के व्यस्तता और बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के कारण किशन भैया राधा भौजी के गांव अयला कुछ दिन बीत गेल। तो राधा भौजी के बाबूजी एक दिन गेलन शहर बेटी से भेंट करे। बाकी राधा भौजी तो स्कूल में पढ़बित रहथिन, हुनकर बाबूजी स्कूल में ही चल गेलन आ बेटी के पढ़बित देख के बहुत खुश भेलन। जब राधा भौजी के पता चललन कि हुनकर बाबूजी आयल हथिन तो वो बाहर आकर बाबूजी के गोर लगलथिन। बाबूजी हुनका सस्नेह हृदय से आशीर्वाद देलथिन आ कहलथिन बेटी तोहरा ऐसन बुद्धि सब बेटी के भगवान संसार में देथुन। कुछ दिन बेटी के पास रह के हुनकर बाबूजी गांव लौट गेलथिन। गांव में राधा भौजी के बाबूजी अपना बेटी या दामाद के खूब प्रशंसा करे लगलन। अब गांव गांव में चाहे वो राधा भौजी के नैहर के गांव हो चाहे किशन भैया के ममहर हो और चाहे हुनकर अपन गाँव घर हो, सब जगह हर अंगना घर में हिनकर सबके चर्चा प्रशंसा पूर्वक होय लागल। इस तरह से नवयुवक आ नवयुवती सबके लिए किशन भैया आ राधा भौजी प्रेरणा के स्रोत बन गेलन।
1: राधा भौजी अखनी अपने रेणु सिन्हा के एक हिस्सा सुनित रही। कार्यक्रम में अब समय है बात अपन धरोहर के। बात अपन धरोहर में आई बात अपन देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित विश्व धरोहर पुरापाषाणिक आवासीय स्थल भीम बेटका के। भीम बेटका क्षेत्र अपन देश भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनायल गेल शैल चित्र के लेल प्रसिद्ध है। ये चित्र पुरापाषाणिक काल से लेके मध्यकाल समय तक के मानल जाइया। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चिन्ह है। ये स्थल मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित है। ये क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित कैलक। एकरा बाद 2003 में यूनेस्को एकरा विश्व धरोहर स्थल घोषित कैलक। इस क्षेत्र में जे पूरा अवशेष मिला

तथा ओहिमे प्राचीन किला के दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख आ परमार कालीन मंदिर शामिल है। एहन मानल जाइए कि ई स्थान महाभारत के भीम से संबंधित है, यही से एकरा नाम भीम बैठका पड़ल, जे कालांतर में भीम बैठका हो गेल। ई क्षेत्र मध्य भारत के दक्षिण पठार के दक्षिण किनार पर स्थित विंध्याचल के पहाड़ी के निचला छोर पर है। अखनी अपने बात अपन धरोहर में बात अपन देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित विश्व धरोहर पुरापाषाणिक आवासीय स्थल भीम बेटका के बारे में जानकारी प्राप्त करत रही। एकरा से जुड़ल औरो कते बात है, लेकिन बात अपन धरोहर में आई बात बस इतनी। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आ गेली है। अब शब्द सरिता। शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मानी। बज्जिका के एगो शब्द है खोतिया। एकर माने होइया कर्ज, जना लोग कहत हतन अपने एना काहे कहत हती, हम अपने के कोनो खोतिया धरले हती की, यानी कि हम अपने के कोनो कर्ज धरले हती की, तो खोतिया के माने भेल कर्ज। ओकर बाद एगो शब्द आयल है अरसा। एकर माने होइया बीता हुआ लंबा समय, जना लोग कहत हतन अरसा के बाद अपने से भेंट भेल है, यानी लंबा समय के बाद अपने से भेंट भेल है, ता अरसा के माने भेल बीता हुआ लंबा समय। ओकर बाद एगो शब्द है अहदी। एकर माने होइया आलसी, जना लोग कहत हतन अपने बहुत अहदी हती, कोनो काम जल्दी नहीं करत हती, यानी कि अपने बहुत आलसी हती, कोनो काम जल्दी नहीं करत हती, तो अहदी के माने भेल आलसी। ओकर बाद एगो शब्द है भगल काछना। एकर माने होइया बहाना बनाना, जना लोग कहत हतन अपने के ये काम नहीं करे के है तो नहीं करूँ, लेकिन भगल नहीं काछू, यानी कि अपने के ये काम नहीं करे के है तो नहीं करूँ, लेकिन बहाना नहीं बनाऊ, तो भगल काछे के माने भेल बहाना बनाना। आ अंत में एगो शब्द आयल है हदस। हदस के माने होइया भय या घबराहट, जना किनको किनको बहुत ऊंचा पर से नीचे देखला के बाद हदस होय लगैया, यानी भय होय लगैया, घबराहट होय लगैया, तो हदस के माने भेल भय या घबराहट। तो ई रहे बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मानी। अखनी अपने शब्द सरिता सुनित रही। एकरा संगे बज्जिका कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने के कैसन लगैया, अपने अपन विचार के एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकेत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। ईमेल आईडी है akashwani.darbhanga@gmail.com। तो अब कार्यक्रम से प्रस्तुतकर्ता विनीत कुमार ठाकुर, संयोजक अमरनाथ प्रसाद के संग हमरा यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव के दू अनुमति एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करत हती।

अभी आप सुन रहे थे बज्जी का कार्यक्रम अंगना। अंगना का ये कार्यक्रम पूर्व प्रसारित था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा के को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं ढोंडू ताई कुलकर्णी।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: लोहानसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में अपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
1: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
1: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
1: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
1: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
1: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
2: जी।
1: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
1: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
1: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध

0: दोहन हो रहा है
1: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: जी श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओ अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते।

0: ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला।
1: इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
2: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
1: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
2: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
1: अच्छी, और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
2: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, जी, जी।
1: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
2: जी।
4: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
2: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
5: दीदी लता, दीदी लता।
2: लता?
6: जी दीदी।
2: क्या ये लता?
6: जी दीदी।
2: अरे नहीं।
6: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
2: अच्छा,
6: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया। सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
2: अच्छा
6: जी दीदी।
2: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता,

0: थकता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
1: अच्छा
0: जी दीदी।
1: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी, मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो।
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी।
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी ना रखें।

0: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
2: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूं।
0: ठीक है आ जाना।
2: अच्छा
0: मैं भी आ जाऊं लता।
1: हाँ हाँ मैं भी आ जाऊं लता।
0: हाँ हाँ तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है
1: ओहो,
2: और एक कंघी।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, आदि पुरुष में सचेत और परंपरा को आइए सुनते हैं।

0: फिल्म अकेली में आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान को।
1: बच जाएगा आपको, कुछ नहीं करना, बच भी जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सैम बहादुर में श्रेया घोषाल और सोनू निगम को। आइए अब सुनते हैं फिल्म सितारे जमीन पर का ये गीत। गायक कलाकार हैं शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और दिव्य कुमार।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं तो बेजुबान था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। भारत विश्व के उन युवा देशों में से एक है जहां 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या कुल आबादी की लगभग 54% से भी ज्यादा है, जबकि 35 वर्षों से कम आयु के लोगों की संख्या 65% के करीब है। मगर बात हुनरमंद श्रम शक्ति की हो तो आंकड़ा विकसित देशों की तुलना में बेहद अफसोसजनक रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह में आज अपना देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें यह चुनौती कतई नहीं है कि देश में कौशल नहीं है, बल्कि चुनौती ये है कि कुशल जनशक्ति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रणाली विकसित कर उसे रोजगार से जोड़ने की जोरदार पहल की जाए। अब सवाल ये है कि क्या विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए हमारे युवाओं में कौशल विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या हम उस लक्ष्य को भलीभांति समझ भी रहे हैं या नहीं? अगर समझ रहे हैं तो क्या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसे लेकर चलाई जा रही योजनाओं पर हम कोई अमल भी कर रहे हैं? क्या इन योजनाओं का लाभ हम युवा उठा भी रहे हैं या किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं? जन कल्याण और देश हित के कुछ इन्हीं अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद जरूरी विषय पर चर्चा के लिए, आप श्रोताओं को जरूरी जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी, पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में कार्यक्रम हेलो जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: कैसे हैं सर ये बताइए।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
1: बहुत बढ़िया हूँ। और बहुत सारी बातें होंगी युवा कौशल को लेकर, लेकिन एक श्रोता जो जुड़ गए हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: मोहन पासवान, गांव बसंतपुर, जिला दरभंगा, बिहार। कैसा है सर
1: जी,
3: गांव हो या शहर, राज्य हो या देश, सभी जगह युवाओं की भरमार है।
1: बिल्कुल।
3: युवाओं में किस तरह से कौशल विकास कर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है सर? दूसरा सर, राज्य देश में तकनीकी कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो कौशल विकास प्राप्त युवाओं को किस तरह से रोजगार मिलेगा सर? क्योंकि बैंक ऋण नहीं देती है समय पर सर। एक और सर सुन लिया जाए, सर युवाओं के बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक कितने कौशल विकास केंद्र होना चाहिए सर, जिससे मूर्ख और पढ़ा लिखा दोनों व्यक्ति कौशल प्राप्त कर सके?
1: मोहन पासवान जी के बहुत सारे सवाल आ गए हैं, जो आज इस कार्यक्रम में सवालों के हिस्से में ही हैं सारे सवाल उनके। जी एक और श्रोता जुड़ गए हैं, उनकी भी बात ले ही ले।
2: सर
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: नमस्ते सर, मैं चंद्रेश्वर शाह बोल रहा हूँ, धर्मपुर से।
1: चंद्रेश्वर शाह जी, क्या जिज्ञासा है इस कार्यक्रम में?
4: जिज्ञासा सर, देखिए लाल वाली बाग, बिजनेस वाली बाग, शिक्षित अनशिक्षित दोनों है गाँव में। और अभी और शिक्षित के लिए बिजनेस करना आसान बात नहीं है, और मूर्ख के लिए तो महा आसान बात नहीं है। तो देखिए बैंक में अगर आम साधारण आदमी जाता लोन लेने के लिए, तो उनको तो इतना फरमाइश कर देते हैं कि बेचारा कभी पूरा कर नहीं पाते हैं, ना वो लोन से वंचित रह जाते हैं। कि है सही है, सरकार इसमें देते हैं कि भाई गरीबों को हो, बिजनेस करने वाले को उनको लोन दिया जाए, लेकिन सर स्टॉक जो है सही ढंग से पेमेंट नहीं करता है।
1: जी सर।
2: चंदेश्वर शाह जी, खास करके बैंक लोन की चर्चा करते हैं। बैंक लोन

0: सहज, सरल, स्वाभाविक है और युवाओं को बढ़ने के लिए अनिवार्य शर्त है। वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, लेकिन बैंक के ऊपर एक प्रकार का दबाव है। दबाव यह है कि गुड गवर्नेंस में तो ठीक है कि इसे खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन उसे घाटे में नहीं जाना चाहिए। ऐसे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का सवाल है। सवाल ऐसे है कि बैंक लोन तो दिया जाता है, लेकिन जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, उनकी विश्वसनीयता भी होती है। अगर विश्वसनीयता बनी हुई है उस शाखा के साथ, आपकी साख बनी हुई है, तो आप बार बार लोन ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो बैंक का क्रेडिट देना, बैंक लोन और फिर रिकवरी, ये सवाल है जिसकी वजह से अड़चनें आती हैं। फिर भी आप उससे लाइजनिंग करें। मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह भी चलाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा आसानी से
1: ऋण
0: ऋण उपलब्ध है।
1: जी,
0: और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में
1: हाँ,
0: जो महिलाएं जा रही हैं, उनको भी
1: लाभ
0: यह
1: मिल रहा है
0: लाभ
1: इसका।
0: मिल रहा है। दूसरी बात, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, उनके सहयोग से, आप जा सकते हैं, बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं।
1: एक सवाल ये है, हमने कहा कि सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना देश है, लेकिन ये जो युवा शक्ति है उसमें स्किल्ड
0: जी जी
1: यानी
0: हाँ
1: जिनमें कौशल है,
0: जी
1: जिसमें
0: जी
1: हुनर है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। क्या कहेंगे आप?
0: सर, मुझे लगता है दो तीन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।
1: जी
0: मसलन, हमारे यहाँ अगर 2.3% से ज़्यादा लोग कुशल हैं, अब ये कुशल या कौशल या उनकी विशेषज्ञता, उनकी जागरूकता
1: जी
0: और समझदारी, दरअसल जो मार्केट है, जो बाजार है और जो युवा उपलब्ध हैं, हमारे पास जो ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट के अनुरूप नहीं है। जो मार्केट की आवश्यकता है, रोजगार कहाँ कहाँ उपलब्ध है। अब
1: एक श्रोता बार बार हेलो हेलो कर
0: जी
1: रहे हैं,
0: सर,
1: तो
0: सर
1: जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: जी नमस्कार।
1: नाम बताएं अपना।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
2: मेरी ये जिज्ञासा है, जैसे कौशल विकास जो हमारे जो प्रशिक्षण है, तो जैसे कि जैसे जो ब्लाइंड युवा हैं, जो जिनने पढ़ाई की है, तो उनके लिए किस तरह से जो है इसका जो है प्रशिक्षण। जी
1: आपने दिव्यांग की बात की है?
2: जी दिव्यांग की बात की है
1: हाँ
2: हमने।
1: हाँ क्या सर, क्या
0: जी
1: कहेंगे आप?
0: सवाल ये है कि किस प्रकार की दिव्यांगता है। अगर वह ब्लाइंड हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, किस तरह की दिव्यांगता है उसके आधार पर, और किस प्रकार का कौशल उनके पास है, ये दो बातें हैं। तीसरी बात है कि वह कहाँ करना चाहते हैं, लोकेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखना होगा,
1: जी,
0: उसके बाद ही वह संभव हो पाएगा कि उन्हें किस तरह की सहायता दी जा
1: उसमें भी
0: सकती
1: क्या
0: है।
1: है ना कि दिव्यांग है और उनकी जो ब्लाइंडनेस है उसमें वो पढ़ाई उन्होंने की है या नहीं की
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: पढ़ाई
0: क्वालिटी
1: है
0: एजुकेशन का
1: हाँ
0: क्या
1: है या नहीं
0: स्तर
1: है,
0: है।
1: या फिर वो किसी हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं तो उसमें उनकी
0: जी
1: कोई
0: जी
1: विशेषज्ञता है या दक्षता है, ये
0: स्मॉल
1: सारी बातें हैं।
0: और कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या किस प्रकार के उद्यमिता चाहिए, किस प्रकार की सहायता चाहिए।
1: तो उसमें भी उसके लिए प्रशिक्षण है
0: जी
1: जी, इसका लाभ उठाया जा सकता है। हर किसी के लिए सुविधाएं सरकार ने दे
0: सर
1: रखी है। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी कि आज युवा कौशल को लेकर के जो बातें हो रही हैं उसे हम
0: जी
1: दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, कुशल और अकुशल,
0: सर,
1: ये फर्क क्या है?
0: एक तो जो कुशल क्लेम करते हैं कि उनके पास कौशल है, कॉम्पिटेंट हैं, अगर उनके पास निपुणता है, कार्य कौशल है, इसकी जांच, इसकी परख तो वह संस्था या उद्यम या वह विभाग या वह क्षेत्र या औद्योगिक घराना करता है। अगर उसकी जांच, उसकी पड़ताल की जाती है, तो वो कुशल नहीं पाए जाते हैं, कॉम्पिटेंट
1: जी
0: नहीं होते हैं। तो ये जो गैप है स्किल में, कैपेसिटी में और कैपेबिलिटी में, वह जो दक्षता है, निपुणता है, और हमारे यहाँ एक सोच और है
1: जी
0: कि हम डिजर्व करते हैं कुछ और क्लेम करते हैं कुछ। तो डिजर्व करना और क्लेम करना,
1: दोनों में फर्क है।
0: दोनों में फर्क है। मसलन हमारे यहाँ 67% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह
1: जी
0: ग्रेजुएट्स का है। ग्रेजुएट्स का 67% जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, वो
1: जी
0: अनएम्प्लॉयड है। सवाल है कि उसने किस विषय में ग्रेजुएशन किया, और बाजार में उसके

0: ये जॉब है या नहीं, मुझे लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के अवसर हैं। अब हेल्थ में अगर किसी ने BMLT किया, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, तो अगर वह उस क्षेत्र में दक्ष है तो आप देखेंगे किसी भी स्पेशलिस्ट, किसी भी डॉक्टर या चिकित्सक कोई एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, वे कहते हैं कि इसका ठीक से कॉटेज लगा दो, बैंडेज कर दो, इंजेक्शन डाल दो
1: जी,
0: ये प्रिस्क्रिप्शन है।
1: तो
0: वहाँ जो हेल्थ में असिस्टेंस कर सकते हैं वैसे कुशल BMLT का अभाव है, ANM, GNM ऐसा, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी जैसे ट्रेडिशनल स्टेट यूनिवर्सिटी में जॉब ओरिएंटेड हम किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जी, हम इस तरह के ट्रेनिंग नहीं। दूसरी बात हमारे कल्चर में और वर्क कल्चर में, सर हमारी संस्कृति में एक है कि अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया तो हमारी संस्कृति ये बन चुकी है कि व्हाइट कॉलर जॉब, साहब बनने की बात, हम नहीं चाहते अपने बच्चे को कि वह स्टार्ट करे। स्टार्ट कहीं से करना चाहिए, वह 35 वर्ष तक, 37 वर्ष तक इंतजार कर रहे हैं, 40 वर्ष तक इंतजार कर रहे हैं, उनको शुरू कर देना चाहिए था। और वो इंडिविजुअल, मैं ये नहीं करता कि जो कॉम्पिटेंट हैं, जो मेरिटोरियस हैं, जो IAS में चले गए, सिविल सर्विसेज में IITian हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनको भी कमतर नहीं मानता हूँ, कहीं भी वो सेवा करें। सो यू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर।
1: देखना ये भी होगा ना प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी कि जो युवा शक्ति है
0: सर,
1: उनकी संख्या कितनी है और उसमें से कितने लोग ग्रेजुएट हैं, ये भी तो बात है ना
0: सर।
1: जो लोग ग्रेजुएट नहीं है या जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की है, जो 10th से नीचे की लेवल में है या जिन्होंने तीसरी चौथी क्लास की परीक्षा देकर पढ़ाई छोड़ दी है, आखिर वो भी तो देश के हिस्सा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी देश के हाथ हैं, हैंड्स ऑफ आवर कंट्री,
0: बिल्कुल
1: है ना। उन हाथों को अगर काम ना मिले, उन हाथों को अगर रोजगार ना मिले, उन हाथों में अगर रोटी ना हो, तो फिर देश विकसित कैसे बनेगा? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता भी है और इसी को लेकर उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला देने के लिए। तो उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें युवा शक्ति की तरफ उसी तरह से देखना होगा जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये तो बात है। इस चर्चा के बीच हमारे एक श्रोता भी जुड़ गए। हेलो,
2: नमस्कार सर, विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार साहब
1: जी, अपना नाम बता दें।
2: महाकाल सिंह, हनुमानगढ़, राजस्थान से। सर, कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को चालू किया गया, 11 साल पूरा होने वाला है सर, इसके बावजूद भी युवा में पलायन की जो समस्या है वो रुक नहीं रहा है सर।
1: युवाओं में पलायन, ये एक बड़ी समस्या है सर। महाकांत सिंह जी पूछ रहे हैं युवाओं में पलायन नहीं रुक रहा है, जबकि 11 साल से ये योजना जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी गई है
0: जी। मुझे लगता है कि पलायन के दो रूप हैं, पलायन सकारात्मक भी है। सकारात्मक इस अर्थ में है, अगर आपका बच्चा या कोई युवा IITian है तो वह अमेरिका जा सकता है,
1: सही बात है,
0: वह इंग्लैंड जा सकता है, जर्मनी जा सकता है,
1: वह
0: विकसित राष्ट्रों में जा सकता है और वहां से फॉरेन करेंसी भी ला सकता है,
1: सही।
0: अगर वह किसी भी आर्ट्स के फील्ड में भी अगर वह प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो बाहर जा सकते हैं। इसलिए पलायन को मैं केवल निगेटिव सेंस में नहीं देखता,
1: सही बात।
0: अगर आपका बच्चा IAS हो गया तो आपके गाँव में थोड़े IAS रहेंगे, वो तो बाहर जाएंगे। पलायन का दो पक्ष है, बल्कि सर बायोलॉजी में ये कहा जा सकता है जो माइग्रेटरी बर्ड है वो उम्दे किस्म का है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो पलायन का एक पॉजिटिव पक्ष भी है। अगर आपके बच्चे इनकॉम्पिटेंट,
1: लेकिन प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी,
0: सर, सर
1: सवाल तो ये भी है ना कि पलायन की वजह क्या है।
0: पलायन बेहतर जिंदगी के लिए लोग बाहर जाते हैं, कारण यह है कि हमारा जितना प्रयास है।
1: मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम युवाओं का देश कहते हैं ना
0: सर,
1: तो ये गांवों का भी देश है।
0: बिल्कुल,
1: और गांव अगर समृद्ध नहीं है तो देश समृद्ध कैसे होगा?
0: हाँ, या ये
1: और गांव की समृद्धि में ये पलायन क्या रोड़ा नहीं है, ये सवाल है।
0: सर, गांव, भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। सर, हमारा ग्रामीण जीवन स्वर्ग से सुंदर हो सकता है, लेकिन हमारे दादाजी अकेले थे, 25 एकड़ की जमीन थी
1: जी,
0: और 5 भाई हो गए तो 5 तो फिर 5 एकड़ पर चला आया।

0: और उसके बाद तीन, तो फिर वह तो एकोमोडेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए प्लान तो अवश्यंभावी है
1: जी।
0: अब उनको ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, क्वालिटी एजुकेशन और जो हुनर है, जैसे हुनर है तो आपको कद्र, आपको सम्मान मिलेगा। ये तभी संभव हो सकता है जब आप उस हुनर को एक्वायर करें। हुनर में बाधा क्या आ रही है? हमारे गांव में ये कहा जाता है, अरे उनका बेटा तो यही करता है, यह जो सोच है इसलिए उत्पादकता घट जाती है।
1: सही बात।
0: इसके लिए मैं कहता हूँ, अगर गुजरात में डेयरी इंडस्ट्री चलती है तो वहाँ सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन मिथिला में माफ करेंगी माता और बहनें, उनका डेयरी में मिनिमम योगदान है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में डेयरी इंडस्ट्री का ओनर, मालकिन वहाँ की महिलाएं, और वो समृद्ध हैं। तो वर्क कल्चर को टाइम एंड स्पेस के हिसाब से देखें।
1: सही बात है।
0: मैंने देखा कि हमारे गांव के कुछ बच्चे जो दिल्ली गए इसलिए कि अपनी इनकम को बेहतर करें, आमदनी को बढ़ाने के लिए, लेकिन वे वहाँ से बीमार होकर आ गए और बीमार में फिर उनका इलाज यहाँ करवाना पड़ा, फिर वे स्वस्थ हुए फिर गए, फिर कर्ज में डूबे। तो इस तरह से मैंने देखा कि वहाँ जाने से बहुत अच्छा लाभ हुआ ऐसा नहीं, बल्कि बिहार के कृषि में
1: जी
0: आज श्रमिकों का संकट है। और आप घर पर देखो, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, एक ग्रेजुएट सर दिन भर में 1000 रुपया नहीं कमा सकता, लेकिन मैं दावेदारी के साथ कह सकता हूँ कि एक ट्रैक्टर का ड्राइवर दिन भर में 1000 रुपये कमा कर आ जाते हैं। और आप अपने कंपाउंड में, अपने कैंपस में किसी फिजिकल, देखिए कार्य तो दो ही प्रकार के होंगे
1: जी,
0: या तो शारीरिक करिए या मानसिक। अब आप मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आप हैं नहीं, हमने कहा इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट कर दो तो वो लेटर नहीं ड्राफ्ट कर पा रहे हैं।
1: सही बात है।
0: हमने कहा कि बागवानी कर दो तो बागवानी भी नहीं करेंगे।
1: एक श्रोता जुड़ गए।
0: सर सर सर
2: जी, सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बताइए कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं देख रहा हूँ आज बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार के छात्र बड़ी संख्या में बिहार से बाहर जा रहा है
1: जी।
2: राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर होने के नाते ऐसा कौन सा नीतिगत शिक्षक पहल होनी चाहिए जिससे युवा को अपने ही राज्य में गुणवत्ता शिक्षा और रोजगार मिले?
1: अपना नाम बता दें।
2: सर मेरा नाम नागमणि हुआ, मैं केवसी गंगवाल से बोल रहा हूँ।
1: नागमणि जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। चलिए आपका सवाल आ गया है, सर क्या कहेंगे आप?
0: नागमणि जी का प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, क्वालिटी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई सीमा नहीं है।
1: सही
0: तो,
1: बात है,
0: वो तो असीम है। दूसरी बात है कि आप अगर युवा हैं तो आप चयनित कर दें।
1: एक और श्रोता जुड़े हुए। जी नमस्कार, हेलो।
3: जी नमस्कार, हम अरुण कुमार लाल दास सुंदरपुर जिला दरभंगा से बोल रहे हैं।
1: अरुण कुमार लाल दास जी, स्वागत आपका हेलो जिंदगी में, बताइए क्या जिज्ञासा है?
3: हाँ देखिए, मेरा प्रश्न ये है
1: जी,
3: है ना
1: जी,
3: कि दरभंगा के अंदर युवाओं में जो कौशल विकास योजना के लिए कहाँ कहाँ केंद्र खुला हुआ है, जहाँ जहाँ युवा लोग जो है जा करके कौशल विकास संदर्भित जानकारी लें या ट्रेनिंग पाए?
1: जी एक कार्यालय दिल्ली मोड़ के पास है, हम समझते हैं वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पर स्किल इंडिया के लिए जो वेबसाइट है उस पर हर ज़िले के लिए कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं, प्रखंड विकास का जो कार्यालय है वहाँ पर सारी योजनाओं के लाभ के तौर पर, आप सिर्फ योजनाओं के बारे में ही नहीं बल्कि श्रमिक जो हैं अकुशल, कुशल श्रमिक के निबंधन की भी बात हम करेंगे इस कार्यक्रम में, ये सारी जानकारी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। एक टोल फ्री नंबर के लिए चर्चा कर रहे थे बिहार कौशल विकास मिशन को लेकर के, 1800116090। इस नंबर पर चाहें तो आप, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर भी फ़ोन कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर जॉब को लेकर रोजगार परख उसकी चिंता हम करें कौशल विकास मिशन के तहत, तो फिर DETJOB.bihar.gov.in इस पर भी जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ये भी बात है, दोनों फायदे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, सुविधाएं तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कौशल विकास मिशन है जिसमें कुशल युवा, समृद्ध युवा का संकल्प है। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार की चर्चा जब चल पड़ी है तब हम ये बात करें।

0: रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का भी मूर्त रूप बिहार में दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, रोजगार की राह को लेकर की भी बहुत सारी योजनाएँ हैं बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि कदम बढ़ाएगा कौन? जो भी जिज्ञासु हैं, जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा आगे बढ़ना होगा और देखना होगा, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्धिहंती
1: सर्वाणी कार्याणी नौचा मनोरथे।
0: क्या कहेंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी?
1: साहब ये तो खुद एक बार कहा जाता है कि कुआं प्यासा के पास क्यों नहीं पहुंच गया, लेकिन इसका साथ सरकार से भी गुजारिश हो सकती है या हम लोग मांग कर सकते हैं सिविल सोसाइटी की ओर से कि हरेक पंचायत में, हरेक प्रखंड में इस तरह के सूचना केंद्र की आवश्यकता है और इसे प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम को भी पंचायत तक जाने की जरूरत है, जहाँ हजारों की तादाद में नागरिक हैं तो वहाँ एक एक एक बैंक की शाखा और इस तरह की जो वित्तीय सहायता और ये प्रशिक्षण केंद्र, इस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की

0: देखना होगा, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्धियंती
1: सर्वाणी कार्याणी नौचा मनोरथे।
0: क्या कहेंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी?
1: साहब ये तो खुद एक बार कहा जाता है कि कुआं प्यासा के पास क्यों नहीं पहुंच गया, लेकिन इसका साथ सरकार से भी गुजारिश हो सकती है या हम लोग मांग कर सकते हैं सिविल सोसाइटी की ओर से कि हरेक पंचायत में हरेक प्रखंड में इस तरह के सूचना केंद्र की आवश्यकता है और इसे प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम को भी पंचायत तक जाने की जरूरत है, जहाँ हजारों की तादाद में नागरिक हैं तो वहाँ एक एक एक बैंक की शाखा और इस तरह की जो वित्तीय सहायता और ये प्रशिक्षण केंद्र, इस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। इस लिहाज से मैं तो अरुण कुमार जी का समर्थन करता हूँ, लेकिन यह जागरूकता और सजगता तो नागरिकों में चाहिए ही कि हमारा केंद्र कहाँ है या उसका वेबसाइट कहाँ है
0: जी,
1: या उसका लिंक कहाँ है या किन व्यक्तियों को हम पकड़ें जहाँ से हमारा काम बन सकता है, तो ये नागरिकों की चेतना में ही अंतर्निहित है जी। शिक्षा क्षेत्र में मैं लगभग 3 दशक से अधिक काम किया, मैंने देखा कि वहाँ जो हमारे बच्चे आते हैं वह भी विषय के चयन में एक तो जो अभिभावक हैं वे उतने प्रशिक्षित या शिक्षित नहीं हैं
0: जी,
1: उनको शिक्षा का उनमें शिक्षा का अभाव है। जैसे सूबे बिहार में 17.4% लोग ही ग्रेजुएट्स हैं
0: जी जी।
1: कोई कॉल है?
2: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: सर नमस्कार जी, मैं सुजीत पासवान
0: जी। सुजीत पासवान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: के जाले प्रखंड का रहने वाला हूँ मैं
0: जी हाँ,
2: और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी मैं PhD कर रहा हूँ
0: जी,
2: रिसर्च स्कॉलर। सर आज का जो प्रोग्राम है हेलो जिंदगी
0: जी,
2: इसमें कौशल युवाओं के लिए जो मतलब प्रोग्राम रखा गया है
0: जी,
2: इसमें बिहार सरकार के द्वारा KYP और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा PMKVY चलाया जा रहा है
0: जी हाँ जी हाँ,
2: इसका मैं जमीनी स्तर पे मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ सर।
0: अच्छा,
2: ये सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है या इसके लिए सरकार मतलब कुछ करेगी?
0: प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी, सरकार की योजनाएं तो है सुजीत जी बता रहे हैं
1: जी,
0: लेकिन जमीनी स्तर पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे आप?
1: अगर जमीनी स्तर पर वह योजना दिखाई नहीं पड़ती है तो उसके दो कारण हैं, एक तो कि लोगों में चेतना का अभाव और दूसरा कि आपने कोई सर्वे नहीं किया, सर्वेक्षण नहीं किया कि कितने लोगों का इसका लाभ मिला। जैसे कुशल युवा कार्यक्रम जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है वह 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, और स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड भी है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना ₹1,000 प्रति महीना दिया जाता है। तो ये आंकड़े आपको देखना होगा कि कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को मिल सकता है।
0: सही,
1: तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, हाँ ये हो सकता है कि उसकी संख्या कम है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं।
3: जी सर, मेरा नाम रमन कुमार है।
0: जी रमन कुमार जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: सिद्धिपुर गांव बहादुरपुर प्रखंड जिला दरभंगा से।
0: जी रमन कुमार जी, जिज्ञासा क्या है ये बताइए।
3: सर जिज्ञासा ये है कि हमारे क्षेत्र में कौशल युवा केंद्र है, लेकिन वहाँ पर में जो सिस्टम है कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर का जो प्रोडक्ट सब है वो सब काफी मतलब क्षतिग्रस्त है, तो उसको कोई देखने के लिए नहीं आता है, और जो कंप्यूटर के ऑपरेटर है वो भी मनमाना फीस लेता है।
0: क्या कहेंगे आप, इनके केंद्र में कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहे हैं कौशल युवा केंद्र में?
1: ये तो सब हो सकता है कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो, बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटर और सपोर्ट के लिए, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट के लिए एक सिस्टम है जो उसे सपोर्ट करता है, समर्थन प्रदान करता है, तो वो देखना पड़ेगा कि वहाँ कौन लोग हैं, उनका मोबाइल नंबर इकट्ठा करके फिर वहाँ देखना कि वो कंप्यूटर काम करे या ना करे। दूसरी बात, अगर आप सैद्धांतिक तौर पर करें या उसके जो व्यावहारिक पक्ष है, हम सभी सरकार शासन प्रशासन पर निर्भर रहता है, हम समाज की ओर से भी इनिशिएटिव लें।
0: सही बात है
1: जी, जो सोशल इनिशिएटिव है सिविल सोसाइटी की ओर से, क्योंकि सरकार का लक्ष्य ये भी है कि जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर।
0: सही बात है,
1: जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर। और आप ये देखेंगे एक आंकड़े के हिसाब से जो युवा वर्ग है 15 से 29 जो आयु सीमा वर्ग है उसमें अभी 44% युवाओं में यह चेतना जाग गई है। 44% युवाओं में, बिहार में नहीं लेकिन गुजरात में,
0: हाँ
1: राजस्थान में
0: यही दिक्कत है
1: कि 44% बच्चे ये चाहते हैं खुद का इनिशिएटिव लेना।

0: सुजीत जी की, सुजीत जी की चिंता हमें लगता है यही थी
1: जी,
0: है ना, कि हमारे क्षेत्र में ये जो कार्य किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो 44% को जब आप पार कर जाएंगे तब तो दिखेगा। ये भी तो बात है, जो चीजें गुजरात में दिख रही हैं, जो चीजें राजस्थान में दिख रही हैं,
1: विकसित राज्यों में दिख रही
0: जो अच्छे मतलब प्रतिशत दिखाई दे रहे हैं, वो प्रतिशत हमारे राज्य में हो, इसके लिए जरूरी ये भी है कि उस प्रतिशत का एक हिस्सा हम भी हैं, हम अपनी इकाई को हटा कर नहीं देखें।
1: जी जी,
0: हम इकाई बनाएंगे तो दहाई बनेगा।
1: दो तीन आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 15-16 में 19 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई।
0: सही बात है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
1: जी जी,
0: अभी हमने कहा था ना कि बढ़ई का काम करने वाले लोग, लोहार का काम करने वाले लोग जो अकुशल हैं उनको कुशल दर्जा देने के लिए विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है बिहार में, पीएम सेतु योजना है, कितने योजना हम गिनाते हैं आपके लिए, डोमेन स्किलिंग बिहार कौशल विकास मिशन के तहत उसके लिए भी योजना है। इसके लिए जो है संपर्क करने के लिए चाहें तो आप अपने केंद्र पर जाएं, या फिर जो टोल फ्री नंबर हमने बताया है 1800-296-5656, ये एक नंबर है, उस पर भी करियर को लेकर के सूचना का केंद्र है ये, वहाँ भी ले सकते हैं। चलते चलते क्या संदेश देंगे आप?
1: सर, मुझे लगता है कि अक्सर मैं छात्रों से कहा करता हूँ कि दो शैली है, एक है कि चिंतन शैली और दूसरा है कार्य शैली। आप थॉट वेज एंड वर्क वेज, अगर आप थॉट वेज एंड वर्क वेज दोनों में परिवर्तन चाहते हो, चिंतन शैली और कार्य शैली को बदलते हो, तो आपके जीवन में बदलाव संभव है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप यथास्थितिवादी खुद हैं तो परिवर्तन असंभव है। दूसरी बात, युवाओं में तीव्रता के साथ जल्दी जल्दी मतलब हड़ी, हम अभी अभी अरबपति बन जाएं।
0: तो ये कहते हुए कि आज की हेलो जिंदगी का विषय था युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, बतौर विशेषज्ञ प्रोफेसर भुवनेश्वर यादव जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये कहते हुए विदा लेते हैं कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद, मुझे संजय को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम एक की सफलता के बाद स्काईरूट के संस्थापकों से मुलाकात की। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 महीने के एक शिशु सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली एसाइलम में बदलाव किया है जिसके तहत आव्रजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आव्रजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शर्मिला को बधाई दी। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।
1: कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

देशभक्ति गीत 1:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत 2:02 आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार 2:03 में 2:03 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें 2:10 पर रोजगार सूचना 2:15 पर आप एक बार फिर से सुन सकेंगे दोपहर समाचार

शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे तरुण कुसुम के तरुण मिथिला के अंतर्गत युववाणी। 5:40 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। छः बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर कार्यक्रम विवरण। 6:10 पर आप सुन सकेंगे विद्यापति गीत। 6:25 पर मैथिली संवाद। 6:30 पर गाम घर, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर चर्चा। 7:00 खेती गृहस्थी और 7:25 पर कुछ संदेश। 7:30 होगा प्रादेशिक समाचार का समय और 7:47 पर जिले की हलचल। 7:52 पर आप एक बार फिर से फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे। 8:15 पर आप सुन सकेंगे सिंगरहार। 9:30 पर आप सुन सकेंगे विविधा। 9:45 पर सुनेंगे इंग्लिश टॉक।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे दिल्ली हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आपने सुना देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

फिल्म एक फूल दो माली में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को, गीत प्रेम धवन के और संगीत रवि का।

फिल्म लाजवंती का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ गीता दत्त और साथी की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत आर डी बर्मन का।

फिल्म लावारिस का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथी। गीत जावेद अख्तर के और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

फिल्म अनुपमा में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत कैफी आजमी का और संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही पूरी तरह बाधित रही। लोकसभा अध्यक्ष ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने कहा कि संसद चर्चा और संवाद का स्थान है और पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। इसके बावजूद हंगामा और शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक

0: अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा, राजद, जनसुराज समेत विभिन्न दल अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेता भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर रोड शो और सभा कर रहे हैं। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा क्षेत्र के बोरिंग रोड, हड़ताली मोड़, चकारम समेत विभिन्न इलाकों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में वोट की अपील की। जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न मोहल्लों और टोलों में लोगों के साथ संवाद कर समर्थन मांगा। 30 जुलाई को मतदान होगा, मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एक वीडियो अपील जारी की है। श्री कुमार ने लोगों से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के दौरान जल उठाने के लिए श्रद्धालु अजगैबी नाथ धाम पहुंचने लगे हैं। सुल्तानगंज से मुंगेर बांका होते हुए झारखंड के देवघर तक चलने वाले इस 96 किलोमीटर कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने आज मुंगेर जिले में कई मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज और थाना भवन का लोकार्पण किया। श्री चौधरी ने तारापुर और असरगंज में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ कर दिया है। अररिया जिले से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हिंसा के बाद कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र मानिकपुर, कोसिकापुर और भवानीपुर में आज सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्र में सामाजिक समरसता और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं, साथ ही लोगों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जहानाबाद के साई सेंटर स्कूल में आज साइबर मंगलवार का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के साथ साइबर अपराध से बचने के उपायों की जानकारी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए कुल पद है 395। आवेदन शुरू होने की तिथि है 21/7/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल और अधिकतम उम्र सीमा 50 साल। ऑफिशियल वेबसाइट यूनियन

bankofindia.bank.in पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के लिए कुल पद है 545। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 9/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा है 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026। इसके लिए कुल पद है 6557। आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026। न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष।

इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के लिए कुल पद है 200, आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026, इसकी न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.government.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को

0: को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interest. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता

0: शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
1: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
2: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
3: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
4: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक

0: रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरिया के सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशो रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशो शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉर्टपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: with me.
1: Okay.
0: Ready? Come on. One.

फिल्म आखिरी रास्ता का ये गीत अभी आप सुनेंगे। गायक कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और एस जानकी।

फिल्म सैनिक का ये गीत अभी आप सुनेंगे। गायक कलाकार हैं कुमार शानू और साधना सरगम।

फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत अभी आप सुनेंगे। गायक कलाकार होंगे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम।

अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। सभा यहीं संपन्न होती है, हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी
1: तो
0: है।
1: सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो, कल्पना करो क्या होगा, है ना?
3: इंसान तो नहीं रह सकता,
2: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है। और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है। कहते हैं ना, पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
3: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
2: बिल्कुल। और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
3: बिल्कुल। और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
2: बिल्कुल। और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना, ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
3: बिल्कुल। और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये

0: अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम है और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और
0: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने का,
1: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते हैं, पौधे, बीजों का रोपण कर सकते हैं जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा, जो
0: बहुत खुशी मिलती है,
1: बहुत खुशी मिलती है जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार का रहेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर, वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना है, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम बताओ?
0: सूख जाएगा वो जो हमने लगाया है, बीज पता भी नहीं कहाँ अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
1: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
0: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
1: बिल्कुल, और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
0: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
1: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन

0: जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
1: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: भाई मन कहे मैं झूमू मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए आरती
1: उनको देख
0: देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश
1: देख
0: हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा

0: प्राकृतिक संरक्षण संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार, वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं, तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं, तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव, जैसे कि गिर के सिंह, अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि इनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के, हमारे को साथी हैं जो हमें वही चीज़ बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की, है ना, कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई, घर में मची खूब दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था, और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया।
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे, मैं बड़ी थी भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस, लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे साधे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे, वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
0: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई, इस पर इतना ही कहूंगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज्यादा उसी रूप में साथ निभा रही हैं। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हों या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर, और झगड़े भी, लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी।
1: एक और हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी है और हमारे खानदान में बड़ी ही है, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती है।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता तो पोल खुल जाए।

0: ये तो है ना। तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते, लोग नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे, जरा जरा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते, दाल खत्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी से किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े, और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए भाई बहन की। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है, मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए, नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या दो मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह, अक्सर हम करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मजेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी, एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहां लग गई, उसने धक्का मुक्की में, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो छोटी हूं उससे कमजोर हूं, पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूं।
0: क्या बात है, चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तुम्हें आती, देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारी साथी जो लिखती है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस

0: पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
1: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए, इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता है। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज का इंतजार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात।
0: अच्छा जी,
1: जी
0: तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं, और आप ही मेरी पत्नी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाए,
1: भाई,
0: तो
1: हमने
0: बिल्कुल प्लीज कालकन को खाना दीजिए कृपया।
1: हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी लिखते हैं, पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई, और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया है कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ, तो एक साथी चूहे और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
0: और जो एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं, और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
1: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं। और
1: और
0: क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है। मेरे नाती ने जब उनकी फीस ज्यादा थी, मैं अब मतलब अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंचरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने, तो समय पर आप खाना खाएं और प्रकृति की

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना पड़ा।
1: खूब वाली पड़ी,
0: अच्छा
1: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, सेफ्टी फॉर द फैमिली, पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
0: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
1: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको यह था कि मुझे

0: बम्बई जाना है, वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया, बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी तो जिम्मेदारी आ गई है, तो बंसी वाले का इशारा होगा मैं तब जाऊंगा।
1: ये इशारा कब
0: ये
1: हुआ?
0: इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वॉज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी हैं,
1: वाह वाह
0: मतलब एक जो
1: वाह,
0: लड़की आती है ना घर में
1: पिताजी
0: लक्ष्मी,
1: के लिए
0: वो
1: नसीब लाती है।
0: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है, दुर्गा इज द फाइनल पावर।
1: ये
0: तो ये
1: इशारा
0: उनको
1: था,
0: याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
1: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
0: 56, फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
1: गजब।
0: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
1: सबसे बड़ी
0: सबसे
1: बेटी।
0: बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों क्यों, वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है, तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
1: कमाल की बात कही है।
0: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
0: 13 साल 14 साल, तो
1: जी।
0: तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
1: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
0: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
1: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए? कहां रहे? और वो
0: वो अलग
1: रेल,
0: अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
1: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
0: हाँ वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
1: हाँ
0: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
1: जी
0: जो हमने
1: जी
0: छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
1: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह
0: मांगा नहीं है, आप
1: वाह।
0: सोचो पूरी दुनिया मांग रही है, अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
1: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां
0: हाँ
1: लिखी।
0: बड़ा नटखट है तू,
1: कृष्ण
0: कृष्ण इधर
1: कन्हैया,
0: नहीं
1: क्या
0: है,
1: बात है! ये
0: क्या
1: गाना भी
0: करे।
1: बख्शी साहब
0: और
1: का
0: सर
1: है।
0: वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
1: हाँ
0: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना। सर ये क्या
1: वाह
0: लाइन है यार, आप सोचो
1: वाह
0: हम क्या
1: वाह।
0: कहनी चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहां ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका मेरा होता,
1: क्या
0: इससे
1: बात
0: बड़ी
1: है!
0: दुआ है क्या दुनिया में?
1: नहीं
0: हाँ
1: नहीं
0: बी
1: क्या
0: माई फ्रेंड।
1: गजब का ख्याल है
0: वो
1: ये!
0: गाने में कहीं नहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार ये तो मेरे जैसा है, अपना ही जैसा है यार।
1: वाह वाह वाह वाह।

0: बख्शी साहब को माय सीनियर, ही वाज माय सीनियर इन माय जॉब, आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, शाकिर खान. शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए. क्वेश्चन सुभाष ने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर. ही सर मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूं.
1: गजब.
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माय वॉइस हैज टू बी हिडन. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लव्स बख्शी साहब के हैं तो ये वो मेरा फेलियर है.
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है.
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो पड़े.
0: तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. गिवेंट एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से. फिल्म रिलीज हो गई है तो क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. तो कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर. दैट कैरेक्टर इज अनएडुकेटेड, शी कैनॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला है सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस. तो वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले.
1: साउथ की फिल्म थी.
0: ही वॉन्ट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म. व्हाई यू वॉन्ट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस आर माई वर्ड, दिस नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज दिल पे कोई
1: जोर चलता नहीं.

0: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्श साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला, बख्श साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
0: अरे कमाल है वो तो।
1: वो कहानी बताइए।
0: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स, और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को। तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ। बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो। तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है। बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ। बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता

0: का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, उसका हर गाना मालूम था। आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो? बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो? काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है? सुनाओ। सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ। और सुनाया। तीन चार उसने कविता सुनी बख्शी आपकी। बोले तुम वापस मत जाओ। तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, तीन साल रखा उसने घर पे
1: बुरीवली में।
0: हाँ पैसे भी नहीं लिए। तो जिंदगी भर मरते तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए।
0: हाँ
1: अब एक आसरा हो गया।
0: हाँ
1: यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था।
0: हाँ,
1: मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
0: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे सके, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को। बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे। यू वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: 1956 रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। बोले सर आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर। तो वहाँ चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और बीएसटी बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोले मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
1: पागल हो गया,
0: बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
1: हाँ उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या?
0: हाँ तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
1: क्या बात है,
0: एकदम चौंक गया हुआ आदमी। उसको लगा कि सर ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छा सुनाओ।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
1: वाह वाह वाह वाह, यहां से शुरू
0: होता
1: है
0: कि गाने क्यों जरूरी हैं।
1: जी
0: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे तो उसमें बख्शी साहब को बीच में मौका मिला।
0: राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज है, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकेंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह वाह।
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखने में भूल गए, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
1: कितनी
0: इतना बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए, कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।
0: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
1: जी।

0: ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी साहब का क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोडक्शन करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं वह घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजित स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजित स्टूडियो गए, और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्म स्थान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्म स्थान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहले लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया था निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम? इसे मैं फौजी हूं और मैं गाने लिखता हूं। फौजी की बहुत इज्जत थी, अच्छा फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई? बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया। बोला वाह तो बाकी के 3 गाने लिखो, इसी से लिख के लाया।
1: अरे कैसे लाया?
0: तीनों का 4 गाने लिख के लाया। 4 गाने लिख दिए तुमने?
1: जी
0: हाँ। सुनाओ, सुने, रिकॉर्डिंग होगी उसकी,
1: वाह वाह,
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आए ना तो नदी को बाहर ही निकल लेने के, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली,
0: उनकी पहली हिट थी।
1: जी
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे, उससे पहले एक और हिट थी

0: चांद सी महबूबा,
1: हाँ
0: उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: एक दो गाने थे,
0: हाँ
1: हिमालय की गोद में,
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था
1: जी,
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी, ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको हाँ, मौका दिया था हाँ।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले
1: हाँ।
0: सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी
0: सुपर डुपर हिट। उसके बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे गाने लिख रहे हैं, वापस आ गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, तू इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: लेकर कुकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है और मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क्ड फॉर।
1: बहुत काम करते थे।
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत।
0: तुमने 3 मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई है जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3-4-5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
0: जब आप इसमें से चुनोगे, जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59।
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रुको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर्ड के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया है।
1: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था, जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कह रहा था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरीक्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरीक्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
0: हाँ, बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे,
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव फॉर हन बख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, तो सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूं कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू टू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था

0: कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ।
1: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।

0: तो बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट है मैगजीन के, कि मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसे जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपए मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: तो उनको लोग बोलते थे, अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो यू हैव अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो टू रबिश इट यू नो कि नहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूं यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो रिफ्लेक्ट करो, आरडी पे डाल दो, एलपी पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इस लेट हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, और रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था रेड का, तो वो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का आई थिंक सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी।
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहां गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह
0: बख्शी बॉस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी,
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

हर चीज़ आपने सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, इसका जो क्रेडिट है ना इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उर्दू

0: ओके आए थे। वो क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है तो आप टायर यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो चरण ने बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो बजरू साहब साहिर साहब ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको तो उर्दू वॉज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें उसको गाएं भी, तुम उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं। एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक जो मैं चाहे या करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं चाहे कली से प्यार करूं।

दीवाना जिसके सब दीवाने, मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने।

आंखों से जरा आके तुम मिला दे मेरी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के पाँच बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में दोस्तों। और आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कुछ लोकगीत और साथ ही साथ कुछ आपसे हम बातचीत भी करेंगे। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में ये लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब सुनिए चंद्रिका कुमारी के स्वर में ये लोग।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे स्नेहा झा के स्वर में लोकगीत। अब समवेत स्वर में सुनिए ये लोकगीत।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार झा के स्वर में ये लोकगीत। और देखिए ना दोस्तों, जैसा कि वर्तमान परिवेश हमारा दिनानुदिन किस प्रकार का होता चला जा रहा है और हमारा आचार व्यवहार विचार भी किस प्रकार से परिवर्तित होते जा रहे हैं, यह सभी हम लोगों के लिए एक संकेत है कि हम लोग प्राकृतिक वातावरण को छोड़ करके कृत्रिमता की ओर निरंतर जो बढ़ते जा रहे हैं और उससे न तो लाभ और हानि की आशंका न करते हुए अपने जीवन यापन में लगे रहते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम यदि कर लेते हैं तो हमें लाभ होगा, दूसरे को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें कहीं कोई चिंता नहीं होती। तो देखिए यहाँ यह सोचने वाली बातें हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य ही मनुष्य का सहकर्मी होता है। वैसे तो आज के युग में हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य से ज़्यादा तो लोग अब पशु से भी प्रेम करने लगे हैं और उसे भी पालतू बना लेते हैं, तो वह मानववत ही व्यवहार करता है या मनुष्यवत ही व्यवहार करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्राणी हो या कोई पालतू पशु, हम सबों के लिए समान व्यवहार करते हैं तो अच्छी बात है।

और वहीं यदि हम पशु के साथ हिलमिल कर रहते हैं तो वह भी हमारे घर के सदस्य जैसा पालतू तो हो जाता है, लेकिन न जाने वह कब हिंसक रूप ले लेगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उससे कहीं अपने आप को दूरी बना करके रखें और यथासंभव हम अपने कार्यों में लीन रहें। अर्थात कहने का अभिप्राय यह भी है कि हम वातावरण आए दिन हम क्या करते कि वृक्ष लगाते नहीं और उसके बदले में हम दस गुना 20 गुना ज़्यादा ही वृक्ष की कटाई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है तो पर्यावरण की क्षति होती है। आज देखते हैं चारों तरफ किस प्रकार से बादल उमर घुमर करके तो आती है लेकिन बारिश के नाम पर शून्यता हो जाती है और बारिश नहीं होती। चारों तरफ हाहाकार पानी के लिए धीरे धीरे बढ़ता स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और हम मानव किस प्रकार से अपने हाथ पैर को मोर करके रखे हुए हैं। अस्तु दोस्तों, आज के कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। एक छोटे से अंतराल के बाद हम आपको सुनवाएंगे कुछ नए फिल्म संगीत।
1: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म 777 चार्ली का यह गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म चार्ली 777 का यह गीत। गायक कलाकार थे नोवीन पॉल, साई वेद वागदेवी एवं संगीत निर्देशन नोवीन पॉल का था। बोल थे सैनी दास के। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः हम हाजिर होते हैं इस कार्यक्रम में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म भूल भुलैया 3 का यह गीत सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में। बोल समीर के हैं और संगीत निर्देशन अमाल मल्लिक एवं प्रीतम अमाल मल्लिक का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक छोटे से अंतराल के बाद अब सुनिए फिल्म बंदूक और गुलाब का यह गीत तान देवन एवं राजा सिन्हा की आवाज में। बोल हैं दिलीप बर्मन के और संगीत निर्देशन शशि कुमार एस का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे ढुन की फिल्म का यह गीत।

0: विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर

0: 3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोऊ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का वक्त होगा शाम 7:52 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे सिंगरहार कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। रात्रि 9:45 पर आप सुनिए इंग्लिश टॉक। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में चले आज प्रश्नकाल की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। विषय होगा अहिसंसार। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का होगा। कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। विषय होगा दांतों में छेद, कारण और निदान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जीवेश रंजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रतिदिन प्रातः 6:10 पर। रामचरित मानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन दिन में 9:10 पर प्रसारित किए जाएंगे, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दिन में 10:00। लोकगीत आप सुनेंगे 10:30 पर और शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे दोपहर, श्रोताओं क्षमा करेंगे, शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे दिन के 11:00।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर, और पुनः आप फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार। देशभक्ति गीत दिन में 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा 1:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर तथा फिल्म संगीत का वक्त होगा दोपहर 2:30 पर। सुगम संगीत आप सुनते हैं दोपहर 3:00। संध्या 5:00 का समय होगा युवानी कार्यक्रम का। संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। 6:30 पर आप सुनेंगे गांव घर कार्यक्रम और तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7:00। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

अभी आप विनय कुमार झा के स्वर में ये विद्यापति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: हम रेनबो पटना से प्रस्तुत है संवाद। संवादक संघ हम छी कल्पना झा। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के लऽ कऽ चर्चा शुरू भऽ गेल अछि। एहि विधेयक में परीक्षा पेपर लीक रोकब आ परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता अनबाक लेल कतेको महत्वपूर्ण प्रावधान कयल गेल अछि। विधेयक में दोषी सब के 10 वर्ष धरिक कैद, 10 करोड़ टाका धरिक जुर्माना आ अपराधी सब के संपत्ति जब्त करबा एहन कठोर दंड सम्मिलित अछि। राज्य सरकार नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में भेल प्रदर्शनक दरमियान दर्ज मामला सब के वापस लेबाक निर्णय लेने अछि। गृह विभागक दिस सँ जारी सार्वजनिक सूचनाक अनुसार 26 जुलाई क सांझ 6 बजे धरि राज्यक कोनो भाग में विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित लोकसभक विरुद्ध कोनो दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक वा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहि कयल जायत। एहि अवधि धरि दर्ज सब प्राथमिकी, परिवाद आ कारण बताओ नोटिस वापस लेबाक विधिक प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कयल जायत। एहि के संगहि एहि मामिला सब में गिरफ्तार वा निरोधित लोक सब के शीघ्र रिहा कयल जायत। सरकार ई सेहो स्पष्ट कयलक जे एहि मामिला मे नामित लोक सभक विरुद्ध भविष्य मे सेहो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप सँ कोनो कार्रवाई नहि कयल जायत। सर्वोच्च न्यायालय 18 वर्ष सँ कम उम्र आ बिना कोनो आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शनकारी विद्यार्थी सब के शीघ्र रिहा करबाक निर्देश देलक अछि। न्यायालय प्रदर्शनक दरमियान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोगक आरोप सब सँ संबंधित कतेको याचिका सब पर सुनवाई कयलक। न्यायालय जनौलक जे प्रदर्शनक दरमियान छात्र आ पुलिस अधिकारी सब के लागल चोटक आरोप सभक निष्पक्ष आ स्वतंत्र जांच आवश्यक अछि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनावक लेल प्रचार आई सांझ थमि गेल। प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा, राजद, जनसुराज सहित कतेको दल अपन पूरा ताकत लगा देलनि। एनडीएक घटक दलक वरिष्ठ नेता लोकनि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में कतेको स्थान पर रोड शो आ सभा कयलनि। एम्हर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा क्षेत्रक बोरिंग रोड, हड़ताली मोर, चकारम सहित कतेको क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में रोड शो कयलनि। जनसुराज के संस्थापक आ प्रत्याशी प्रशांत किशोर प्रचार के अंतिम दिन कतेको मोहल्ला आ टोला सब में लोक सभक संग संवाद क समर्थन मंगलनि अछि। ध्यातव्य अछि जे 30 जुलाई क मतदान हैत आ मतगणना 3 अगस्त क कराओल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई भागलपुर में सुल्तानगंजक नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेला को उद्घाटन कयलनि। 28 अगस्त धरि चलय वाला एहि मेलाक दरमियान जल उठेबाक लेल श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम पहुंचय लगलाह अछि। सुल्तानगंज सँ मुंगेर, बांका

0: होइत झारखंडक देवघर धरि चलयवला एहि 96 किलोमीटर कांवर यात्राक विशेष महत्व अछि। एहि सँ पहिने मुख्यमंत्री श्री चौधरी आइ मुंगेर जिला मे कतेको मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज आ थाना भवनक लोकार्पण कयलनि। श्री चौधरी तारापुर आ असरगंज मे कतेको विकास कार्य सभक शुभारंभ कयलनि। मॉनसूनक सक्रियता सँ राजधानी पटना सहित प्रदेशक विभिन्न भाग मे वर्षा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे अगिला 24 घंटाक दरमियान रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, बांका, भागलपुर सहित राज्यक दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण पूर्व भाग मे कतेको ठाम तेज हवाक संग वर्षाक संभावना अछि। संगहि वज्रपातक येलो अलर्ट सेहो जारी कयल गेल अछि। पछिला 24 घंटाक दरमियान गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक आ अधवारा समूह सहित राज्यक अधिकतर नदी सभक जलस्तर घटल अछि। ओतहि बागमती आ कोसी नदीक जलस्तर मे वृद्धि भेल अछि। केन्द्रीय जल आयोगक रिपोर्टक अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ीक रून्नी सैदपुर आ मुजफ्फरपुरक बेनीबाद मे खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि। एम्हर कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा मे लाल निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि। मधुबनी जिलाक फुलफरास थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन फराक फराक ठाम छापेमारी कऽ उत्पाद विभागक टीम 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत नव ऊर्जा सुनिहार सब श्रोता लोकन के मिहिर कुमार झा के नमस्कार, संग गोपी भाई नमस्कार। नमस्कार
1: नमस्कार मिहिर भाई, संगे संग गाम घरक श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। देखियो मिहिर भाई, आजुक दिन मंगल अछि आ मंगल को हम सब युवा लोकनिक लेल नव ऊर्जा कार्यक्रमक प्रसारण करैत छी। वास्तव में युवा जे होइत छथि ओ अहाँके अथाह ऊर्जा के स्रोत होइत छथि, मुदा ऊर्जा तखने छै से अहाँके बनल रहत जखन कि देह आरोग्य रहत। किया तऽ जँ तन आरोग्य रहत तऽ मन निश्चित रूप सँ आरोग्य होयत, चिंतन आरोग्य होयत, कर्म आरोग्य होयत। तऽ एहि लेल सजगता और साकांक्ष भेनाइ जरूरी अछि। आ देखियो आइ अहाँके 28 जुलाई अछि, आइ हमसब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मना रहल छी। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ायल जाइत अछि। आ ई समझ लिए अहाँके लीवर में जे सूजन होइए आ जे गंभीर अहाँके यकृत रोग या लीवर रोग आ कैंसर का कारण बनिए।
0: देखियो गोपी भाई, आइ जे छै 28 जुलाई के हेपेटाइटिस दिवस अपना सब एहि दुआरे मनबै छी जे आजुक दिन ई जे वायरल हेपेटाइटिस जकरा लीवर सूजन अपने कहलियै, ओकर जन ओकरा बारे में जन जागरण बढ़ायब। सब मानव के लीवर से संबंधित ई बीमारी जे हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करब होइत अछि। देखियो गोपी भाई, आजुक दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक बलगर के जन्मदिनक स्मरण में ई वायरल हेपेटाइटिस दिवस अपना सब मनबै छी।
1: देखियो हाँ, हेपेटाइटिस वायरस जे होइए ओ 5 प्रकार के होइए, ABCD और ई। हेपेटाइटिस बी और सी ई सबसे अहाँके आम संक्रमण अछि जे बहुत रास लोक के होइए आ एकर परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष 1.3 मिलियन अहाँके छै से मृत्यु होइए और 2.2 मिलियन नव संक्रमण होइए। तो निदान और उपचारक लेल बेहतर उपकरण और उत्पादक घटित कीमत के बावजूद परीक्षण और उपचार जे कवरेज दर यह ओ रुकल अछि। तो जँ एखन से त्वरित कार्यवाही कयल जाए तो 2030 तक जे विश्व स्वास्थ्य संगठन अछि WHO के उन्मूलन लक्ष्य तक पहुँचनाइ अहाँके संभव अछि। आ नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमबर्ग हेपेटाइटिस बी वायरस के खोज कयलाक बाद एहि वायरस के इलाज के लेल डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन के विकास केने छलथि। डॉक्टर बलमबर्ग के खोज के सम्मान में सब साल हमसब 28 जुलाई के हुनक जन्मदिन पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाबै छी। एहि दिन के मनाबे के शुरुआत साल 2008 से भेल छल।
0: देखियो गोपी भाई, ओना तो बीमारी सबटा कोनो बीमारी के छोट नहीं बुझिए, तो बीमारी तो सब, लेकिन लीवर जे छे अपना सब शरीर वास्ते बड़ उपयोगी छे,
1: बहुत उपयोगी।
0: लीवर एकटा लीवर छे आ लीवर पूरा पेट के ठीक रखे छे,
1: ठीक रखे। आ जखन पेट जे पाचन क्रिया या ओ लीवरे पर अहाँ के निर्भर है, बुझलहुँ। लीवर जो अहाँ का आरोग्य या तो पेट अहाँ का आरोग्य, जे खायब कहल गेल जे पत्थरो खायब तो ओ पच जात छे। आ लीवर जो अहाँ का संक्रमित छे या लीवर कमजोर या तखन तो एहन होयत कि छै से मान कोनो चीज खाओ तो अहाँ के पाचन क्रिया में दिक्कत होयत।
0: देखियो गोपी भाई, लीवर ठीक रहत ना तो पेट स्वस्थ रहत, साफ रहत। कहल गेल छे पेट सफा तो रोग दफा, पेट ठीक रहत तो कोनो रोग नहीं है। ई जे हेपेटाइटिस लीवर हेपेटाइटिस जे छे जे लीवर के लेल बड़ खतरनाक बीमारी होइ छे। ई हेपेटाइटिस कतेको प्रकार के होइ छे, जेना कहने रहिए हेपेटाइटिस ए आ ई जे छे ई अपना सबके अक्सर अहाँ देखल जाए छे जे गंदा पानी या दूषित पानी जे पील जाए छे
1: ओकरा कारण होइए,
0: ओहि कारण होइए। ओते हेपेटाइटिस बी आ सी जे छे संक्रमित रोग जे छे से रक्त के असुरक्षित रक्त से जेना करो केओ सुइया लेलक आ वएह सुइया के डिस्पोजल सुइया नहि निडिल के फेर दोसर गोटा के दऽ देल गेलै, जँ ओ आदमी हेपेटाइटिस से संक्रमित होइ छै फेर पुनः जे दोसर गोटा के देल जाइ छै तऽ ओहो संक्रमित होइ के संभावना।
1: तो अहाँके कहबाक अभिप्राय ई अछि कि संक्रमण से आ प्रदूषण से बचबाक चाही। आ विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 के विषय अछि, हेपेटाइटिस आइए इसे समझे। तो लोग और हुनक जान बचाए वाला सेवा के बीच जे अहाँ का बहुत रास बाधा अछि एकरा दूर करे के आह्वान कयल गेल है। आ वायरल हेपेटाइटिस विश्व भर में रोकल जा सके वाला बीमारी और मौत के एकटा प्रमुख कारण बनल अछि। तो एहि लेल अहाँ के सजगता और साकांक्ष भेनाइ जरूरी, बुझलहुँ। जँ हमसब सजग छी साकांच छी तऽ एहन खान पान राखब एहन आहार विहार राखब कि संक्रमण नहि होयत पहिले तँ प्रदूषण सँ बची
0: बची
1: जँ हेपेटाइटिस सँ बचऽ के चाहै छी तँ आसपास अहाँके जल जमाव नहि हेबाक चाही आ जल जमाव जँ अछि तँ ओहिमे छै से जे मच्छर अहाँके बहुत रास एहन मच्छर होइए जे संक्रमित कऽ दिए तऽ एहि लेल DDT पाउडर सबके छिड़काव अहाँके समय समय पर करैत रहबाक चाही।
0: सफाइ हर बीमारीके निदानके सबसे बड़का अस्त्र छै।
1: आ जे अहाँके खट्टा फल अछि जेना भेल नेबो भेल अहाँके अथी संतरा भेल तऽ ई सबके खेबाक चाही किया तऽ ई की करैए कि प्रतिरक्षा तंत्रके बढ़ावा दैए आ जँ शरीरके प्रतिरक्षा तंत्र अहाँके मजबूत अछि तो कोनो प्रकार के बीमारी अहाँ पर दुष्प्रभाव नहीं छोड़ सकैया।
0: देखियो गोपी भाई,
1: हाँ हाँ,
0: एक भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के लेल 9-15 सूत्री कार्यक्रम सेहो चलायल जा रहल अछि। ई भारत सरकार के एक बढ़िया आ अल्पसंख्यक कल्याण वास्ते एक नीक योजना छै।
1: देखियो भारतीय समाज जे अछि एहिमे अल्पसंख्यक जे अछि भारतीय समाजक विकासमे हुनक पैघ योगदान छ। आ भारतीय संविधान कहैत अछि कि जे कमजोर वर्ग अछि चाहे ओ अल्पसंख्यक हुए महिला हुए अनुसूचित जाति हुए अनुसूचित जनजाति हुए पिछड़ा वर्ग हुए तऽ हिनकर विकासके लेल भारत सरकार छै से तरह तरह के योजना और कार्यक्रम अहाँके बनेने छथि आ चला रहल छथि ताकि छै से ओ जे मुख्य धारा अछि समाजक ओहिके बीचमे छै से हुनकर मने मुख्य धारामे ओ आबि सकैत तऽ एहि लेल अल्पसंख्यकके कल्याणके लेल प्रधानमंत्रीके 9-15 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकारके एकटा नीक पहल अछि जे शिक्षाके अवसर बढ़ेने आर्थिक रोजगार सुनिश्चित केने आओर जीवन स्तरमे सुधार अनने जेन मुख्य लक्ष्य पर केन्द्रित अछि। देखियो अल्पसंख्यक भारतीय समाजके अभिन्न अङ्ग अछि। जँ अल्पसंख्यकके विकास होयत तखने छै से भारतीय समाजके विकास हेतै तऽ एहि लेल सरकार छै से अहाँके सजग अछि साकांक्ष अछि कि अल्पसंख्यक समाजके विकास हुए आ एहि लेल ई कार्यक्रम छै से बनाओल गेल हँ।

0: कहल गेल छै जा धरि सभक विकास नहि हेतै, सभक संग नहि हेतै, सभक विश्वास नहि हेतै, तहन समाज केना उठतै? सभक विकास होय, सबके सहयोग भेटै एके रंग, तखने ने समाज के विकास हेतै। अल्पसंख्यक समुदाय जे छै एहिमे छोटा समुदाय अबै छथिन, जेना मुसलमान भाई लोकनि, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ई सब जे समुदाय छथिन ओ अल्पसंख्यक बाहुल अबै छथिन। आ हिनकर कल्याणके वास्ते भारत सरकार एकटा प्रधानमन्त्रीके 9-15 सूत्री कार्यक्रम चलेलक यऽ, जकर मुख्य उद्देश्य छै जे शिक्षामे बढ़ोतरी केनाइ,
1: शैक्षिक अवसरमे बढ़ोतरी केनाइ, आर्थिक विकास
0: केनाइ,
1: आगू केनाइ आओर जीवन स्तर आ सुरक्षाके बढ़ावा देनाइ। अब शैक्षिक अवसरमे जेना भेल प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, हँ, योग्यता सा साधन छात्रवृत्ति, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल के पहुंच बढ़ेने, उर्दू शिक्षण संस्थान के बढ़ावा देने, उर्दू शिक्षक के भर्ती केने और मदरसा के आधुनिकीकरण केने। उन्हें आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम बनाओल गेल है और बहुत कम अहाँक अथी पर ऋण जो दिल जाइए, बहुत कम सूद पर दिल जाइए। और जीवन स्तर और सुरक्षा, आवास और बुनियादी सुविधा के विकास तथा सांप्रदायिक सौहार्द और हिंसा के रोकथाम, ई आवश्यक है कि हुनक जे सुरक्षा है वो सुनिश्चित किया जाए। क्या तो देखियो, लोकतंत्र का असली परीक्षा तखने होइ छै मीर भाई जखन कि कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित हुआ और ओकर सर्वांगीण विकास
0: है।
1: जो अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित है, ओकर विकास भ रहल छै, तो बुझ लिया कि ओहि देश में लोकतंत्र अहाँके सफलतापूर्वक चल रहा है।
0: देखियो गोपी भाई, अल्पसंख्यक के जे जे जे अथी में मोहल्ला में अल्पसंख्यक के बेसी बाहुल क्षेत्र छै, ओहिमे बुनियादी ढांचा के विकास जे छै से विशेष हेबाक चाही। जेना ओहिमे स्कूल खुजे, स्वास्थ्य केन्द्र होय, शिक्षा के बढ़िया व्यवस्था होय, इंफ्रास्ट्रक्चर जे छै रोड, पानि, बिजली, एहि सबके जे छै से नीक से विकास होय, ई अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में से अल्पसंख्यक जे 15 सूत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम छै ओकर मुख्य उद्देश्य छै।
1: हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र के लिए स्कॉलरशिप के व्यवस्था सेहो अछि। मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान के माध्यम से स्टार्टअप अधसंरचना के उन्नत केने, जेना मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान के सहायता प्रदान किया जाए कि जैसे अहाँ बेसी से बेसी जो मुस्लिम युवा छथि वो स्टार्टअप कार्यक्रम के अपनाबैत और स्टार्टअप कार्यक्रम में वो आगू बढ़त, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, आई व्यापक पैमाना पर चल रहा है। आ मुस्लिम युवा अहाँक से अल्पसंख्यक युवा छथि वो जागरूक भ रहा है, साकांक्ष भ रहा, तकनीकी ज्ञान लऽ रहा है, बुझलहुँ, आ अपन स्टार्टअप योजना के निक जना शुरू कऽ रहल छै, सरकारी में प्रशिक्षणो दऽ रहल छै और आर्थिक रूप से सहायता सेहो दऽ रहल छै। तऽ जँ प्रशिक्षण भेट रहल यऽ, आर्थिक सहायता भेट रहल यऽ, तऽ निश्चित रूप से स्टार्टअप योजना जँ हम मन से करब, ईमानदारी से करब, समर्पित भऽ कऽ करब, तऽ निश्चित रूप से सफल होयब। आ ओना ही छै से अहाँके जीवन के सफलता के जे गाड़ी अछि ओ तखने बढ़ैया जखन कि गीत संगीत समय समय पर अहाँके हम सुनैत रही, ताकि छै से अहाँके शारीरिक और मानसिक जे अहाँके तनाव ओहिसँ कम होइए आ शारीरिक मानसिक छै से ऊर्जा बढ़ैए। तऽ किया ने हम छै से अहाँके अपने सब ई गीत सुनी,
0: सुनल
1: देवी गीत कुमकुम झा के स्वरमे।

0: हाँ, एखन हमसब कुमकुम झा के स्वर में देवी गीत सुने छु। वास्तव में माता का जे आशीर्वाद होत वही से जीवनक सर्वांगीण विकास होत। आ देखियो, राष्ट्र निर्माण में युवा लोकन के बड़ पैघ योगदान है। क्या तो युवा लोकन जे होत छथि ओ देशक विकासक रीढ़ होत छथि, ऊर्जा के स्रोत होत छथि आ भविष्य के निर्माता होत छथि। ओ तकनीकी नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव का वो अगुवाई करित छे। हुनका सबके संबोधित करते एक बेर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहने रहे युवा लोकन के संबोधित करें कि जो अहाँ सोचे छी, जेहन अहाँ सोचे छी ओहने बनि जाए छी। जो अहाँ स्वयं के माने खुद के कमजोर बुझे छी तो कमजोर भ जाए छी, आ जो खुद के ताकतवर बुझे छी तो ताकतवर भ जाए छी। तो विचार जे या ओ मनुष्यक व्यक्तित्व के निर्माण करे
1: लेकिन मन के हारे हार
0: हर है मन के जीते जीत। तो युवा लोकन जे होत छे तो हुनका सब में छे से अहाँक बहुत एहन विचार होय छन आ नवाचार होय छन कि ओ नव नव जे अनुसंधान भ रहल या ओकर उपयोग करत अथा उत्साह छन, ऊर्जा छन, जैसे तो देश के समाज के आगू बढ़ाबे में पैघ योगदान ओ करत छथि। तो राष्ट्र निर्माण में युवा के योगदान, एहि विषय पर आई हम सब वाद्यांकन पर आधारित परिचर्चा सुनब।

0: प्रतिभागी छथि नंदिनी झा, शुभम जायसवाल, जाह्नवी चौधरी, सुमित, शिवम और संचालक के छथि
1: संचालक गोपीचंद झा छथि आ प्रस्तुति छन असद दाऊद।
0: तो सुनी हम सब वाद्यनंकन पर आधारित ई परिचर्चा
1: सुनल जाए।
2: राष्ट्र निर्माण में युवा कोनो देश का सबसे पैघ संपत्ति होइत अछि, जे अपन ऊर्जा और तकनीकी कौशल से सामाजिक आ आर्थिक विकास के गति देते अछि। वो शिक्षा, नवाचार, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और स्वच्छता अभियान जेहन सामाजिक अभियान में बढ़ चढ़ के भूमिका निभा कर देश के आत्मनिर्भर और विकसित बनाबित अछि। तो राष्ट्र निर्माण में युवा के बहुत रास भूमिका अछि। एहि विषय पर आकाशवाणी दरभंगा के दिस से एक परिचर्चा का आयोजन भ रहल अछि, जे बाह्य ध्वनिंकर पर आधारित अछि। हमरा लग किछु अहाँके सिविल सर्विसेज के तैयारी करय वाला किछु युवा छथि, जे अपन नव विचार से लैस छथि, नव विचार से युक्त छथि। तो हुनका से हम जानय चाहबन कि ओ केना योगदान दऽ सकैया आ राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रक विकास में केना बढ़ चढ़ कऽ भागीदारी कऽ सकैत अछि। तऽ सबसे पहिने हमरा लोग अहाँके युवा छथि, अहाँके नाम की अछि?
3: हमर नाम नंदिनी झा भेल।
2: अहाँके बाबूजी के नाम?
3: हमर बाबूजी के नाम रंजीत कुमार झा भेल।
2: अच्छा अच्छा, तो हम अहाँसँ जानय चाहब नंदिनी जी कि राष्ट्र निर्माण में युवा केना योगदान दऽ सकैया, कोन कोन क्षेत्र एहन अछि जाहिमे युवा के योगदान भऽ सकै छै आ राष्ट्रक विकास में बढ़ चढ़ के भूमिका निभा सकैया, तऽ अहाँ किछु बताबियौ।
3: अहाँके आर श्रोतागण सबके हमर नमस्कार। भारत एकटा युवा देश छै, जतय लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष सँ कम आर 50% 25 वर्ष सँ कम छै। ई केवल आंकड़ा नहि मुदा देश के सबसे पैघ ताकत छै। आइ के युवा केवल सपना नहीं देखैए, ओकरा साकारो करैए। भारत दुनिया के तेसर सबसे पैघ स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुकल है, जतय युवा रोजगार मांगा वाला नहीं मुदा देव वाला बन गेल छै। डिजिटल इंडिया आ स्किल इंडिया युवा सबके नया दिशा देलक। जेना कि स्वामी विवेकानंद जी एक बेर कहने रहथिन, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। खेल, तकनीक आ सेवा हर क्षेत्र में युवा आगू है और एहन युवा सब सेहो छथिन जे कठिन परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से देश के लेल अपन कर्तव्य के पालन कर रहल छथिन। शास्त्रों में कहल गेल छै भगवद गीता में, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। यह जे भावना छै, यह भावना एहि देश के युवा के निरंतर आगू बढ़ा रहल छै। बहुत चुनौती छै, लेकिन अतक युवा सब के जे हौसला छै, चुनौतियों से पैघ छै, क्योंकि जखन युवा आगू बढ़े छै त भारत देश दौड़े छै।
2: बहुत नीक जानकारी देलौ नंदिनी जी। वास्तव में जखन युवा अपन योगदान देते अछि तखने देश दौड़े छै, किया त युवा में अथाह ऊर्जा होइए आ ओ ऊर्जा जँ उचित दिशा में लागे तो निश्चित रूप से समाज का राष्ट्रक विकास होइए। अब हमरा लग छै दोसर युवा छथि, अहाँ के नाम की भेल?
4: शुभम जायसवाल छ।
2: अच्छा, शुभम जायसवाल। तो शुभम जी, अहाँ ई बताबू कि नवाचार में और तकनीकी प्रगति में युवा कोना योगदान दऽ रहल?
4: नवाचार में AI के द्वारा, कोडिंग और स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, और जैसे कृषि भ गेल या फिर इंडस्ट्री भ गेल, उस समय युवा सिर्फ अब एम्प्लॉय होने के लिए नहीं सोच रहा, बस किसी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी जैसे दो चार लोग काम कर सके उसके अंदर में वैसा सोच रहे हैं, ताकि आधुनिक खेती बाड़ी हो, उसमें AI से इंटीग्रेशन हो सके, उसके हिसाब से उसमें बहुत जैसे कॉस्ट कम लगे, उसके बाद टाइम भी कम लगे, ताकि बहुत उसका उपयोग, टाइम का बचत का उपयोग किसी और चीज़ में प्रोडक्टिविटी में लाने में बढ़ा सके। और कल्चरल जैसे जो है नया नया एप्लीकेशन बनाबे छै, उसमें जैसे प्रचलन में नहीं छै, लेकिन आप जो है AI के आवे से पूरा जन जन तक, पूरा देश में विदेश में फैल गेल है। कहीं भी अब के इंसान जो है कोनो दुनिया में रहे छै, तो वो कोई भी भाषा से कहीं के भी कोनो

0: चीज देख देख सकल छै और वहां के पल पल के खबर लेत रहल छै।
1: बहुत नीक जानकारी देलौं। अब हमरा लक्ष्य तो अहाँ के दोसर युवा, अपने के शुभ नाम की भेल?
2: हमर नाम जानवी चौधरी भेल।
1: अच्छा, जानवी चौधरी। तो जानवी चौधरी, हम अहाँ से जानना चाहब कि सामाजिक सुधार और सामाजिक जागरूकता में युवा कोना योगदान दे सके?
2: सामाजिक सुधार और सामाजिक जागरूकता में युवा के बहुत ज्यादा योगदान छे। जेना कि अहाँ बुझे छे कि पहले के समाज कते रूढ़िवादी विचारधारा के रहे छले, समाज में कुरीति जेना दहेज प्रथा और बहुत सारा कुनीति रहे, जेना कि ओय के खिलाफ युवा सब आवाज उठबे छथिन। आय के युवा स्टार्टअप इंडिया के उद्गम के माध्यम से केवल स्वयं रोजगार प्राप्त,
1: अरे केवल अपने रोजगार नहीं लो रहल छथि, दूसरों को रोजगार,
2: बल्कि दूसरों के रोजगार दे रहल छथिन। और शिक्षा युवा के नई तकनीक और आधुनिक नवचार के माध्यम से देश के

0: खिलाफ युवा सब आवाज उठबै छथिन। आइ के युवा स्टार्टअप इंडिया के उद्गम के माध्यम से केवल स्वयं रोजगार प्राप्त,
1: अरे केवल अपने रोजगार नहीं लो रहल छथि, दूसरों को रोजगार,
0: बल्कि दूसरों के रोजगार दे रहल छथिन। और शिक्षा युवा के नई तकनीक और आधुनिक नवचार के माध्यम से देश के वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनबै छथिन।
1: वाह, बहुत निक उचित जानकारी देलहुँ अहाँ। अब हमरा लोग छै अहाँके सुमित, तो सुमित हम अहाँ से जानना चाहो कि युवा समाज के नवनिर्माण में और उद्योग जगत में उद्योग का आगू बढ़ावे में योगदान कोना दे सके।
2: सबसे पहले तो हम बताबे चाहब कि युवा का अर्थ की भेल, जना कि युवा का अर्थ केवल आयु नहीं अछि, युवा का अर्थ अछि जकरा लग नूतन सोच अछि, जकरा लग आदम साहस अछि और जकरा लगन परिवर्तन अनबाक जिद अछि। तो सामाजिक में एकर ई महत्व अछि कि जना राष्ट्र निर्माण केवल सड़क या पुल बनेला से नहीि अछि, राष्ट्र तब बनत जखन समाजक कुरीति मिटैत अछि, दहेज प्रथा, जातिवाद और नशाखोरी और जेहन दीमक से अपन समाज के बेचबाक जिम्मेदारी हमर और अहाँक अछि। हमर मिथिलाक युवा जन ई ठानी लेत कि तो समाजक कल्यापक निश्चित अछि। और
1: बहुत नीक जानकारी अहाँ देलहुँ सुमित जी। आ हमरा लोग अहाँक दोसर युवा छथि अभिषेक मिश्रा, तो अभिषेक जी हम अहाँ से जानना चाहब कि अहाँ तो बुझै छियै कि युवा अथा ऊर्जा के स्वामी होइत छथि, ऊर्जा बड बेसी होइए, लेकिन ऊर्जा जो नियंत्रित नहीं हुए तो ऊर्जा बेलगाम भऽ जाइए आ गलत दिशा में जा सकैए। तो जो अहाँक जो ऊर्जा अछि युवा लोकन के, युवा लोकन के ऊर्जा के उचित दिशा में कोना लगाएल जाए, कोन क्षेत्र में ओ काज करथि और कोन अहाँक कोना उनका प्रेरित कयल जाए कि वो छै से अपन ऊर्जा के उचित दिशा में लगाबथि।
3: आजुक समय में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़त अर्थव्यवस्था छै, तो एकर पाछू हमर युवा के हाथ छै, कियाकि अहाँ कहने रहें कि युवा के ऊर्जा बहुत छै, तो युवा के आजकल के मतलब जरूरी है कि वो उसको स्टार्टअप में लगाए, स्टार्टअप और तकनीक में मतलब उसको इस्तेमाल करें। युवा सब अपन नया सोच के स्टार्टअप से शुरू जोर के करे, केवल स्वयं रोजगार नहीं ले बल्कि दूसरों लोग के दे, ओकर के द्वारा तकनीकों के डेवलप करी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके खेती तक ड्रोन के प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे
1: ड्रोन का प्रयोग हो रहा है।
3: हाँ, युवा तकनीक के अपन हथियार बनाकर भारत के डिजिटल इंडिया बना रहे छे, तो ई सब के थ्रू युवा अपन ऊर्जा के सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बिना गलत दिशा में हटाए।
1: बहुत उचित जानकारी दिलो अभिषेक जी। आप हमरा लग युवा क्षेत्र शिवम कुमार, तो शिवम जी अहाँके बाबूजी के नाम की है?
4: हमर पिताश्री के नाम है श्री देवनंदन कुमार।
1: अच्छा, अहाँ कथी कौन विषय के तैयारी कर रहल छी, की तैयारी कर रहल छी?
4: सिविल सर्विसेज के तैयारी।
1: अच्छा, सिविल सर्विसेज के तैयारी कर रहल छी। तो हम अहाँ से जानना चाहब शिवम जी कि एखन जे अहाँक देख रहल छिए युद्ध जे भऽ रहल छै ईरान अमेरिका में और इजराइल में, तो राष्ट्र के निर्माण में विदेश नीति के की योगदान छै और राष्ट्र निर्माण में युवा कोना योगदान दऽ सकैए?
4: सबसे पहले तो जते भी श्रोतागण छी ओकरा हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहल छी जे कार्यक्रम में जुड़ल छी। तो भारत एक युवा देश अछि, एतय अधिकांश आबादी युवा वर्ग के छी, युवा शक्ति देश के सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानल जायत छी, जहाँ युवा सही दिशा में मेहनत करैत रहल छी तो देश के विकास तेजी से होइत छी, युवा लोग देश के आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभावत छै, उद्योग खेती आ सेवा के क्षेत्र में करैत छी, अपन व्यवसाय स्टार्टअप भी शुरू करै छी, नए नए तकनीकी अपनाबत छी और जो है आज के युवा विज्ञान और तकनीकी में बहुत आगे छी, कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट के सही उपयोग करैत छी और इतना ही नहीं शिक्षा में भी बहुत योगदान दे रहल छी, जना कि जानै छियै कि खुद पढ़ैत अछि और दूसरे के

0: भी पढ़ावे के प्रेरणा दैत छी। ऑनलाइन माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करे छी, समाज में जागरूकता फैलावे छी और युवा अपना संस्कृति और परंपरा के जिंदा रखे छी। लोकगीत नृत्य भाषा के बढ़ावा दैत छी, जना कि त्यौहार में बढ़ चढ़ के भाग लैत छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत निक जानकारी देलौं। तो अहाँ सब युवा जे छी, अहाँ सबसे भेंट घाट कऽ कऽ लागि रहल यऽ कि एकदम हमहूँ युवा भऽ गेल छी। आ अहि सबके जेना ऊर्जा और शक्ति के द्वारा छै से समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में योगदान दै के मन करऽ लागल हँ। अहाँ सबके बड़ नवीन और नूतन विचार से अहाँ सब छै से युक्त छी और हम आशा करै छी कि अहि विचार के छै से अहाँ अपन जीवन के कर्म क्षेत्र में लगायब और जीवन के सब क्षेत्र में अहाँ आगू रहब, अपन समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएब। अहाँ सब जानकारी देलहुँ, बड़ उचित जानकारी देलहुँ, समग्र जानकारी देलहुँ, एहि लेल अहाँ सबके कोटि से धन्यवाद।
2: एखन बाह्य ध्वनिंकन पर आधारित परिचर्या सुनै छलहुँ, राष्ट्र निर्माण में युवा के योगदान। आ अहि के संगे गाम घर के समय सम्पन्न हेबाक अछि और हम सब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चलू। तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन का हार्दिक स्वागत है। तो मीर भाई, केना की खेती बाड़ी भ रहल छे से कहियो।
3: देखियो, किसान तो खूब मेहनत कए के सब तरह खेती बाड़ी करे छे।
2: हाँ,
3: किसान अन्नदाता छे,
2: अन्नदाता
3: दाता सर्वोच्च पैघ रहे।
2: हाँ, हाँ, चाहिए।
3: किसान भाई जो खेती पथारी में अन्न फल फूल सब तरह खेती करे छे। अपन सबक किसान भाई लोकन जे छे से गाछ जेना अपना सब ओहिठाम आम जे छै से बहुतायत सबके गाछ छनि आ फलक राजा आम के कहलो गेल छै। आ सब बरख देखै छियै जे किसान लोकनि कतबो 10-20, 50-100 गाछ छनिओ आमक, तैयो 2-4-5
2: लगबिते छै।
3: ई जे आम आ लीची के गाछ लगबै छथि, ओकरा जे आधुनिक विधि से लगेतथि तो वो बेसी फरतै आ छोटे छोटे गाछ रहते आधुनिक विधि में। किया तो आब अखन देखै छियै पुरान गाछ सब जे छै सरही या कलम ततेक नमहर भऽ गेल छै जे ओहिपर तोड़नहार लोक के नहि भेटै छै। आ आम जे छै बढ़िया आम होइत तोड़ल नहि जाइ छै। तऽ आधुनिक विधि के प्रयोग कयला सँ आम आ लीची के गाछ छोट रहै छै लेकिन फरै खूब छै।
2: फरै खूब, बहुत नीक गप कहलहुँ अहाँ। देखियौ मीर भाई, आजुक जे युग अछि ओ अर्थ प्रधान युग अछि। आ अइ अर्थ प्रधान युग में हम सब एहने फसिल का एहने फल के खेती बाड़ी करी छी जाहिमे अहाँके नीक कचा के में नीक आर्थिक उपार्जन हुए। आ मिथिलांचल के तो अहाँके छै से विशेषता अछि आम और लीची। आम और लीची के बाग लगाबे के जे आधुनिक विधि अछि ओकरा हम सब कहै छियै सघन बागवानी। एहि विधि से कम जगह में बेसी पौधा लगा सकै छी और पैदावार जे यऽ उपजा जे हुए ओ बेसी और जल्दी भेटे। तो अठम दुनू फल के लगाबे के जे आधुनिक और वैज्ञानिक विधि छै एहि पर हम सब चर्चा करी। एकर आम का आधुनिक किस्म अछि आम का आम्रपाली, मल्लिका, पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, ई किस्म कम जगह घेरेत अछि। आ लीची के अछि शाही, चाइना और गंडकी योग्यता, ई व्यावसायिक रूप से सफल अछि। परम्परागत रूप से जे आमक गाछ हम सब लगाबै छी ओ 10x10 मीटर, मतलब जैसे अहाँ के पौधा से पौधा के जो दूरी हेबाक चाही, पाती से पाती के दूरी 10 मीटर और पौधा से पौधा के दूरी 10 मीटर, मुदा आधुनिक विधि में कम दूरी राखल गेल अछि। सघन विधि जे करबे ताहिमे कम जगह में छै 5x5 मीटर छै या 2.5 मीटर x 2.5 मीटर। आम्रपाली के लिए, आम्रपाली तो छोट गाछ होइ
3: छै, छोट गाछ
2: अगर फल बड़ सुदगर होइ छै। लीची जे अछि एकरा लेल 6x6 मीटर अछि या 5x5 मीटर, मान पाती से पाती अहाँके 5 मीटर और पौधा से पौधा 5 मीटर छै से। आ खाद के तैयारी अहाँ नीक जना एहिमे कऽ ली। समय जे अछि मई जून के महीना में खाद खोदी, आकार राखी 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई, मान गहीर हेबाक चाही खाद। आ माटिक उपचार में खाद के ऊपरी जो भाग अछि ओहिमे 20-25 किलो सरल गोबरक खाद, 2 किलो केचुआ खाद, बर्मी कंपोस्ट जकरा कहै छी अपने सब, आ 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर खादि के दोबारा भरि दी। अच्छा, रोपे के कर सही समय किया छै?

0: से कहियौ।
1: देखियौ, एकर रोपयके सही समय जे छै से आब वर्षा जेना जून जुलाई सब रोपि सकै छै,
0: जुलाईसँ सितम्बर बरसातके मौसम सबसँ उत्तम मानल
1: जाइ छै। देखियौ गोपी भाई, आम आ लीची गाछ लगबैके आधुनिक विधि जे छै ताहिमे सघन बागवानी या अल्ट्रा सघन बागवानी जे छै सबसे उपयुक्त छै, जाहिमे कम समयमे कम जगहमे बेसी गाछ लगै छै, ओ जल्दी फड़ितो छै। आ सघन बागवानी जे छै ताहिमे ट्रिप सिंचाइ आ नियमित कटाइ छटाइके उपयोग कयलासँ ई जे गाछ होइ छै से फड़ितो बेसी छै, नमहर नहि भेल, घनगर भेल आ खूब फड़ै छै। एहि तरहे पारम्परिक जे आम लीचीके गाछ अपना सब लगबै छलहुँ ओहिके तुलनामे जे आब जे आधुनिक विधिसँ आम आ लीचीके गाछ लगायब तऽ बेसी फड़ै छै, आ जखने बेसी फड़त तऽ बेसी मुनाफा हैत।
0: पौधाके जे चयन करब अहाँके विश्वसनीय सरकारी नर्सरीसँ कलमी गाछ खरीदी, कलमी पौधा आ बीजू जे यऽ ओ बीयासँ उगल गाछ जे यऽ ओ फल देबमे 7-8 साल लगाबैए, आ जखन कि कलमी गाछ जे यऽ ओ 3 सालमे फल देबऽ लागैए। रोपणमे अहाँके खादिके बीचमे छोटगर जगह बनाकऽ आ गाछके जे पिण्डी होइए ओकरा मानि बिना तोड़ने ओहिमे लगाबी, आ जे जोरवला जे हिस्सा यऽ ओ जमीनसँ 6-8 इंच ऊपर हेबाक चाही। आ पटौनीके जे विधि यऽ तऽ आइकाल्हि तऽ अछि कि जलोके कमसँ कम मानि कम खर्चा करी,
1: ड्रिप सिंचाइ जे छै,
0: हँ, तऽ ओहि लेल अहाँके ड्रिप सिंचाइ अछि, टपकन विधि जकरा हिन्दीमे कहै छियै, तऽ गाछके एकदम जड़िके पास लगमे जा कऽ जल देलाके लेल अहाँके ड्रिप इरिगेशनके प्रयोग करी टपकन पटौनीके, एहिसँ होइए कि 50-60% जलके बचत होइए, आओर खादके जलके सङ्ग ओकर फर्टिगेशन विधि द्वारा सोझे जड़ि तक ओकरा पहुँचा सकै छै। आर कहाँ कहबेके लिए कि कटाइ छटाइ आओर कनोपी प्रबन्धन तऽ ई आधुनिक बागवानीके मुख्य हिस्सा अछि। गाछके शुरुआत 2-3 वर्ष तक ओकरा सोझे बढ़ऽ दी, आ ओकर बाद जमीनसँ 1 मीटरके ऊँचाइ तक कोनो मुख्य शाखा नहि निकलऽ दी, एकर बाद 3-4 मुख्य शाखाके अलग अलग दिशामे बढ़ऽ दी, ताकि गाछके आकार जे हुए ओ छतरी जेहन हुए आ सूरजके रोशनी जे यऽ ओ अन्दर तक आबि सकै। तऽ एहि विधिसँ जे करब तऽ अहाँके नीक बागवानी करब आ ओकर बाद उपजा नीक हैत।
1: देखियौ गोपी भाइ, अहाँ जे कहलियै खड्ढा खोदैके, तऽ खड्ढा खोदलाके बाद जे छै से ओहिमे जे माटि जे खड्ढा खोजै छै तऽ ओ माटिके बाहर निकालि देबाक चाही।
0: अच्छा, हाँ,
1: बुझि गेलियै। आ तकर बाद खड्ढामे 70% नीक दोमट माटि जे छै कतौ बाहर से निकलि, आ 30% जे छै पुरान सरल गोबर जकरा कम्पोस्ट कहल जाइ छै से ओहि खड्ढामे दियै। 500 ग्राम नीमक खैर आ 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा एहि सब तरह मिलाकऽ ओ दोमट माटिमे, आ तहन ओहि खड्ढाके भरिके आ किछु 2-5 दिनके बाद कम्पोस्ट देलाके बाद तखन जे गाछ रोपे तऽ ओ गाछ बेसी फैलत, बेसी जल्दी ओकर विकास होइ छै।
0: अच्छा, तऽ जखन अहाँके नीक आधुनिक जे विधि अछि ओ आधुनिक विधिसँ वैज्ञानिक विधिसँ खेती बाड़ी करब तऽ नीक फल हैत, पुष्ट फल हैत, स्वदगर फल हैत, सोहनगर फल हैत, आ ओ खायब आर बटबो करब, बेचबो करब, आ ओहिसँ अहाँके नीक कैचा कमायब, आ जखन लगमे कैचा रहत, पैसा रहत तो मन एकदम गदगद रहत, आ गदगद रहत तऽ गीत गाबैके मन करत, आ गीत सुनैके मन सेहो करत। तऽ किया नहि हमसब एकटा गीत सुनी अरविन्द कुमार झाके स्वरमे,
1: सुनल जाए।

0: बाबा सुनियो दू पाँती हमरो प्रणाम। वास्तव में जे विनय के पाँती होइत अछि ओ जरूर अहाँ के परमात्मा तक पहुँचैत अछि। अवस्था शर्त जे अछि इएह अछि कि हृदय शुद्ध हेबाक चाही, भाव शुद्ध हेबाक चाही आ कल्याणक भाव हेबाक चाही कि सबके कल्याण हुए। जँ सबके कल्याण के लेल अहाँ सोचबै तऽ अहाँ के कल्याण निश्चित रूपेण होयत। आ देखियौ मिहिर भाई, अपने सब जे खेती बाड़ी करै छी ताहिमे मौसम पूर्वानुमान के बड पैघ भूमिका होइए। जँ मौसम के बारे में हमरा पहिने जानकारी भऽ जाइए तऽ हमसब अहाँ के सजग भऽ जाइ छी आ ओहिके अनुरूप खेती बाड़ी करै छी। तऽ मौसम पूर्वानुमान के जानकारी किसान भाई लोकनि के हमसब दऽ दियनि तऽ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग दिस से जारी 25 जुलाई से 29 जुलाई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार में बहुत रास स्थान पर 28 से 29 जुलाई के लगपास गरज के संग बिजली चमकने आ तेज हवा चलवा के संभावना है। गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, सारण, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला के किछ किछ स्थान में घनगर मेघ आ मध्यम से भारी वर्षा भ सकैए। आ पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के बाकी जिला में नीक वर्षा होय के संभावना नहीं अछि, कतौ कतौ हल्क वर्षा भ सकैए।
1: देखियो गोपी भाई, एहि दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे के संभावना अछि आ न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहे के संभावना अछि। आ भोर के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 90% रहत आ दुपहरिया में 50 से 55% रहे के

0: संभावना से हो चाहे सापेक्ष आर्द्रता पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्य रूप से पूर्वा दिशा में पूर्वा हवा बहत आ 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के पूर्वा हवा के चल रहा
1: पूर्वा हवा चले के संभावना है। अच्छा, तो ये जो मौसम जानकारी किसान भाई लोग के भेट गलन तो ये से खेती बाड़ी के काज में बहुत सहयोग भेटत। आ देखियो तिलक जे खेती है तिल के बुझबे करे छी कतेक बाजार मांग जबरदस्त है आ कतेक पौष्टिक हो या तिल आ बेसी अहाँ के जाड़ के मास जे आबि रहल या अइ में तो तिल के और छै से तिल के जे ओकर स्वभाव हो या ओ गरम हो या तो तिल के खेती उचास जमीन में ओकरा बौ करी और उपलब्ध जे मृदा है ओहिमे नमी के लाभ उठावे के लिए बौ के काज अइ सप्ताह के अंत तक पूरा कऽ ली। बुझलहुँ, कृष्णा कालिका कांके सफेद आ प्रगति किस्म के चयन करी आ बिया के जे ओ थायरम 2 ग्राम बिया के दर से उपचारित करी आ 30 × 10 = 15 सेंटीमीटर के दूरी पर बौ करी आ प्रति हेक्टेयर 60 क्विंटल गोबर का खादक संग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 20 किलोग्राम फास्फोरस आ 20 किलोग्राम पोटासक उपयोग करी आ शेष जे 20 किलोग्राम नाइट्रोजन है ओकरा बाव के लगभग 29 दिन के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में दी।
0: देखियो गोपी भाई, मोटा अनाज मिलेटस जतो पर्याप्त
1: मोटगर अनाज
0: जगह श्रीयन कहै छै जतो पर्याप्त वर्षा नहीं भेले जे ऊंचा जमीन पर धान रोपण नहीं भ सकले ओहि जगह पर वैकल्पिक फसल के रूप में मरुआ जे छे से रोपि देबाक छे। मरुआ के नीक किस्म जे कहल गेल अछि अपना सब एहिठाम वास्ते राजेंद्र मरुआ RU8 आ RU3 तथा संगे ओकर दोसर एक कौनी राजेंद्र कौनी 1 ई खेती जे मरुआ के अपना सब कह सकै छी। ओते सूर्यमुखी जे छे तकरो खेती आप करे के समय आबि गेल छे। सूर्यमुखी जे छे ऊंचास जमीन में अपना सब कह सकै छी। एकर नीक प्रभेद जे छे KVS S1 KVSS44 KVSS53 तथा DRSS1 ई सब जे छे से सूर्यमुखी के नीक किस्म संकर किस्म के बिया के अपना सब उपयोग कर सके छी।
1: अच्छा, केना किए में खाद देबे?
0: हाँ, खाद जे छे से 2.5 ग्राम किलोग्राम जे छे बीज के दर से बिया के उपजारित कर ली आ 80 से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर एकर बिया के रोपबाक चाहिए। खाद के गप जे कहलहुँ से प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल गोबर जे कंपोस्ट खाद होइ छै ओकर उपयोग प्रति हेक्टेयर के दर से करी संगे 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 90 किलोग्राम फास्फोरस आ 40 किलोग्राम पोटास तथा 30 से 40 किलोग्राम गंधक का उपयोग
1: सल्फर का उपयोग
0: ई सब को जे छे खाद के उपयोग कर सके छे।
1: आ देखियो परोर जे होइया परोर कते निक सब्जी होइया आ बाजार मांग कते ओकर जबरदस्त है कह सके छी कि हम सब के ओ तीमन तरकारी के राजा होइया तो किसान परोर के बाव कह सके छै। परवल के राजेंद्र परवल 1 राजेंद्र परवल 2 राजेंद्र परवल 3 स्वर्ण रेखा आ स्वर्ण अलौकिक आ स्वर्ण सुरुचि किस्म के चयन करी आ खेत में 150 × 100 सेंटीमीटर के दूरी राखी आ खेत के तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सरल गोबरक खाद आ 60 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस के उपयोग करी तो जँ एकर उपयोग करब तो छै से नीक तीमन तरकारी हैत परवल के उपजा नीक हैत आ परवल के बुझबे करै छी बाजार मांग कते जबरदस्त है परवल बेच के नीक कैचा कमायब आ तखन जे से गीत नाद सुने के मन करो
0: तो सुनल जाए गीत।
1: हाँ, सुने।

0: महल पर कागा बोला है रे, शारदा सिन्हा के स्वर में झूमर सुने चलो, बड़ नीक झूमर छल, जतबे शब्द मधुर छल आ ओतबे छे से हुनक स्वर जे छल वो मधुर छल। आ देखियो बरसात के समय में गाय आ महिष के नीक देखभाल के लेल साफ सुथरा आवास हेबा के चाहिए, सूखल और संतुलित चारा दी और कीचड़ और मच्छर से बचाव बड़ आवश्यक है। जे यहाँ का अच्छा गोबर और पेशाब जो करिए तो रोजाना साफ सुथरा करी बथान का, जल के निकासी के नीक प्रबंध करी ताकि बारा में पानी नहीं आवे। तो अहि के संग खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न भ रहल है, तो हम सब खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई से आज्ञा ली। नमस्कार मीर भाई।
1: नमस्कार गोपी भाई।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सुनिए, आपके पास कोई शानदार रेडियो आइडिया है क्या?
4: आइडिया है, कहानी है, ऑडियो कंटेंट है, लेकिन उसे सुनाएगा कौन?
3: आकाशवाणी।
4: जी हाँ, प्रसार भारती के आकाशवाणी नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित हैं।
3: क्या आप प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, कंटेंट क्रिएटर, राइट्स ऑनर या एग्रीगेटर हैं?
4: तो अपने मौलिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजिए और अपने कंटेंट को दीजिए आकाशवाणी का विशाल मंच।
3: रेडियो ड्रामा, फीचर, डॉक्यूमेंट्री, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो सीरीज, पॉडकास्ट, क्विज
4: और शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम तथा लोक संगीत आधारित कार्यक्रम भी।
3: हिंदी, अंग्रेजी और निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं में नेशनल, रीजनल और लोकल आकाशवाणी स्टेशनों के लिए।
4: आपके कार्यक्रम में हो सकता है विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से जुड़ने का अवसर।
3: चुनिए अपनी भागीदारी का तरीका, रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड या ग्रेटेस्ट मोड।
4: रेवेन्यू शेयरिंग मोड में विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से आय का साझा अवसर, और स्पॉन्सर्ड मोड में अपने ब्रांड, उत्पाद या सेवा के प्रचार के लिए फ्री कमर्शियल टाइम का अवसर।
3: बस ध्यान रहे, कंटेंट मौलिक हो, अधिकार आपके पास हो और आकाशवाणी के कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का पालन हो।
4: आपके कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव ट्रीटमेंट, टीम, ऑडियो क्वालिटी और व्यावसायिक संभावनाओं का होगा मूल्यांकन।
3: तो फिर इंतजार किस बात का?
4: अपना कार्यक्रम प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में आकाशवाणी पटना के क्लस्टर या नोडल कार्यालय को ईमेल करें।
3: हमारा ईमेल पता है
4: ddgeaipatna@rediffmail.com या pecaipatna@gmail.com या
3: hooaipatna@prasarbharati.gov.in।
4: अधिक जानकारी के लिए सीधे आ जाइए आकाशवाणी पटना।
3: आपका आइडिया, आपकी आवाज,
4: आकाशवाणी का मंच। आकाशवाणी के साथ कंटेंट को नई पहुंच
3: और विज्ञापन को नई संभावनाएं।

हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सभी बीएड कॉलेजों में खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त, अंतिम दिन भाजपा राजद जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने झोंकी पूरी ताकत, 30 जुलाई को होगा मतदान। और मानसून की सक्रियता फिर बढ़ी, पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर आखिरकार चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक में परीक्षा पेपर लीक रोकने और परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में दोषियों को 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार लाने का इरादा न रखने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा है कि यह नया विधेयक महज दिखावा है, क्योंकि यह पहले के अधिनियम में केवल एक संशोधन है। इससे पहले विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में भोजनावकाश के पहले की कार्यवाही बाधित रही। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश भी दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। इनमें सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। इधर राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। ताजा जानकारी के अनुसार इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित व्यक्तियों को रिहा करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने विकसित

0: रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में कहा कि यह देश के किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान चरण में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। श्री चौहान ने बताया कि अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की मजदूरी की वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है, जबकि पहले मनरेगा में 100 दिन का ही रोजगार मिलता था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द ही राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। श्री चौधरी ने मुंगेर में लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी।
1: अभी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है, सरस्वती विद्या निकेतन बन रहा है, 551 जगह पर इसकी शुरुआत हुई, आज लगभग 10 जगह पर मैंने फिर आज शुरुआत किया है, ये बढ़कर 561 हो गया, इसको रोज बढ़ाऊंगा।
0: मुख्यमंत्री ने मुंगेर में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने जिले के तारापुर और असरगंज में मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज और थाना भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 28 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक ऐप की भी शुरुआत की है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटना और सोनपुर तथा सुल्तानगंज और अगवानी घाट को रोपवे से जोड़ा जाएगा।
1: हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉरपोरेशन बनाया और दो जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मेरिन ड्राइव है, वहां का जो हरिहरनाथ मंदिर है वहां ले जाने का काम करेंगे, और अजगैबीनाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, राजद, जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर रोड शो और सभाएं की। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लोगों से संपर्क कर एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में वोट की अपील की। जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भी प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न मोहल्लों और टोलों में लोगों के साथ संवाद कर समर्थन मांगा।

0: 20 जुलाई को मतदान होगा जबकि 3 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: जितने भी सभा रैली या जुलूस होती उस पे जो है रोक रहेगी। 48 घंटे पूर्व से लाउड स्पीकर के प्रयोग पे भी जो है कंप्लीट बैन होता है। सभी राजनीतिक प्रचारक कार्यकर्ता जो उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं है निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें बाहर जाना होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बतानी है, चूंकि यह साइलेंट पीरियड रहेगा, जो गाड़ियां पहले से दी गई हैं वो गाड़ियां अब साइलेंट पीरियड में जो है उसका उनको फिर से परमिशन लेना होगा इलेक्शन के दिन के लिए।
0: मॉनसून के सक्रिय होने से राजधानी पटना समेत विभिन्न भागों में बारिश हो रही है जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ भागों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 29 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह समेत राज्य की अधिकतर नदियों का जलस्तर घटा है। वहीं बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर बह रही है। राज्य सरकार ने कैंसर पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज के लिए बड़ी पहल करते हुए कैन किड्स संस्था के साथ समझौता किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे और कैन किड्स के संस्थापक पूनम बगई ने आज पटना में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कैन किड्स कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। कैन किड्स के संस्थापक पूनम बगई ने कहा कि समझौते के अनुसार राज्य में चाइल्डहुड कैंसर टास्क फोर्स का गठन, टेली कंसल्टेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
3: हमने आज एक एमओयू साइन किया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के साथ। उसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 100% बच्चे को पूरी तरह से आर्थिक सहयोग मिले और उस सब के वजह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो बोलते हैं वो होगा और फिर बच्चों की सर्वाइवल भी बढ़ेगी।
0: आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जिससे गंभीर यकृत रोग और यकृत कैंसर हो सकता है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, जो लोगों और उनकी जान बचाने वाली सेवाओं के बीच की बाधाओं को दूर करने का आह्वान है। अररिया जिले से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाके में हिंसा के बाद कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र मानिकपुर, कोसिकापुर और भवानीपुर में आज सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। रोहतास पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक विप्लव कुमार ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज टीबी रोगियों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत डिजिटल सूचना संग्रह का कार्य 1 अगस्त से प्रारंभ होगा। यह कार्य डिजिटल मोड में मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जहानाबाद पुलिस ने हजारीबाग से पटना आ रही मिनी कंटेनर से 3 करोड़ रुपए का 280 किलो गांजा बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू। विधेयक में पेपर लीक जैसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। मुंगेर में कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। अंतिम दिन सभी

राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने की तैयारी। और मानसून की सक्रियता बढ़ने से पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
1: लखीसराय जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। राज्य के सभी प्रखंडों के साथ लखीसराय के 7 प्रखंडों में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉडल विद्यालयों का उद्घाटन किया। सभी विद्यालयों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बरहिया प्रखंड स्थित मालती रामाश्रय ज्ञान भारती उच्च विद्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिले के हलसी, रामगढ़ चौक, चानन और पिपरिया प्रखंडों में नव स्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन कॉलेजों की शुरुआत की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इन संस्थानों की स्थापना से जिले के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार के सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिनों की उपलब्धियों पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का समाहरणालय में सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पिछले 100 दिनों के दौरान विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। भूमिहीन और महादलित परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में अभियान बसेरा 2 के तहत समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में 10 चयनित लाभार्थियों को भूमि पर्चा वितरित किया गया। अपर समाहर्ता नीरज कुमार ने प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि यह अभियान जरूरतमंद परिवारों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जिले में 3 दिवसीय विशेष पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का सफल आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रियाज नजमी ने किया। शिविर के दौरान नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उनके जिले में ही उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल सेवा का उद्देश्य लोगों को सुविधा के साथ पासपोर्ट उपलब्ध कराना है, जहां अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को

0: आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिले की सभी पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डेयरी उत्पादों के व्यवसाय से जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधा उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय प्रखंड के साबिकपुर स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नव निर्मित भवन, स्मार्ट क्लास और पिंक रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विकसित समाज की मजबूत नींव है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह और दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार ने लखीसराय संग्रहालय का भ्रमण किया। संग्रहालयाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार ने उन्हें संरक्षित प्राचीन मूर्तियों और जिले की ऐतिहासिक विरासत से अवगत कराया। जिले के सभी 700 प्रखंडों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि जिले के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि उपचार सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव ने कजरा सौर ऊर्जा एवं बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे हमराज फिल्म का यह गीत कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण एवं शान की आवाज में। संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8 बजने ही वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए
2: करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा

ताकि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके

0: राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीटर वेव को 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार, साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहारक संग हम छी माला झा। अपने समस्त गोटे के स्वागत है कार्यक्रम में, जतः साहित्य आ साहित्य से संबंधित विभिन्न विधा पर चर्चा सुने छी। तें न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यमे व रेडियो सेट पर जुड़ल रही। गद्य साहित्य के जो आई गप करी त कथा, वार्ता, निबंध, आत्मकथा, जीवनी लेखन, यात्रा साहित्य, शोधकाज आ संस्मरण साहित्य मुख्य है। आई संस्मरण साहित्य पर किछ विशेष चर्चा कयल जाए। संस्मरण गद्य साहित्यक एकटा भावानुभूति परक ललित विधा अछि। निबंध आ कथा दुहक माध्यम सँ ई अपन लेखन शैली के निर्धारण करैत अछि जे व्यक्तिनिष्ठ होइत अछि। एहि विधाक मैथिली साहित्य में उत्पत्ति आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्यक प्रभाव से भेल छल। संस्मरण एकटा आत्मनिष्ठ विधा अछि। एहिमे लेखक बहुधा अपन व्यक्तिगत जीवन व व्यक्तिगत संपर्क में आयल कोनो महान व विशिष्ट व्यक्तिक कोनो विशिष्ट गुण, क्षण, पहर व कोनो विशिष्ट कालखंडक चित्र के अंकित करै छथि। वा कही कि संस्मरण लेखकक निजी संबंध आ व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होइत अछि। ऐसा ज्ञात होइत अछि जे ए लेखन में लेखक निश्चित रूपे प्रत्यक्षतः सम्मिलित होइत छथि। संस्मरण रचना में स्मृतिक विशेष महत्व होइत अछि जे सत्य दृश्य पर आधारित रहित अछि। ए लेखन में ऐतिहासिक महत्व होइत अछि कारण संस्मरण लेखन में लेखक प्रत्यक्षदर्शी होइत छथि। तें ई साहित्य सत्य घटना पर आधारित होइत अछि। वस्तुतः संस्मरण जाहि शैली में लिखल जाइत अछि ताहि सँ ई वस्तुतः मनोरंजन आ ज्ञानवर्धन दुनू कोटि में राखल जा सकैत अछि। मनोरंजन शब्दक चर्चा आयल तऽ एकर ध्यान रखैत सुनल जाऊ ई गीत जाहि में भक्ति अछि, भाव अछि।

आप स्वतः चहु दिस शिवमय वातावरण मंत्रमुग्ध केने रहत। भक्ति के एहन रूप रंग मिथिला में विशेष देखा में अबैत अछि। ओना देश प्रदेशक समस्त शिवालय भक्तिक रंग में रंगल सजल अछि ऋतु परिवर्तनक स्वागत में। त गीतक बाद पुनः चर्चा करी संस्मरण साहित्य के, जे विशेषतः पत्र पत्रिका में प्रकाशित होइत अछि, जाहि कारणे एहि विधाक विकास में पत्र पत्रिकाक महत्व विशेष रूप सँ अछि। ओना स्वतंत्र पोथी वा ग्रंथ रूप में सेहो संस्करण साहित्य भेटैत अछि, मुदा संख्या कमे अछि। जँ विकास के गप करी तऽ स्वतंत्रता सँ पहिने वा आलोच्य काल में एहि विधाक विकास बड मध्यम छल। पहिल संस्मरण छेदी झा अपन जेल जीवनक अनुभवक आधार पर लिखलनि। स्वतंत्रताक पश्चात एहि विधाक विकास में गति आयल। एहि क्षेत्र में सबसे बेसी प्रखर पहिल व्यक्ति भेला ज्योतिष बलदेव मिश्र, जे महापंडित बच्चा झा बुबुआजी झा पंडित जयदेव मिश्र पर प्रायः दुई दर्जन सँ बेसी महान स्वर्गीय आत्माक संस्मरण लिखलनि, जे 1960 ईस्वी में पत्रिका में धारावाहिक रूपे प्रकाशित भेल। एहिना समकालीन विद्वान सँ सम्बद्ध अनेको संस्मरण भेटैत अछि, जेना कवि शेखर बद्रीनाथ झाक अभिनंदन ग्रंथ, प्रोफेसर रमानाथ झाक अभिनंदन ग्रंथ, ठाकुर गंगानाथ सिंहक स्मृति अंक, पंडित राजेश्वर झाक स्मृति अंक समेत और कतेको। आन लोकन सँ भेटल अनुभवक संग संग अपना संगे प्रत्यक्ष रूपे बीतल बात पर सेहो कतेको संस्मरण लेखनक रचना भेल, जेना गिरिन्द्र मोहन मिश्रक किछ देखल किछ सुनल, जाहि में विभिन्न शिक्षक संग बीतायल गेल अनुभव के ओ लिखलनि। यात्री जीक प्रवास संस्मरण, जाहि में श्रीलंका प्रवासक मध्य भेटल अनुभवक वर्णन अछि। ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्मक शिकारक संस्मरण हुनका सँ भेंट भेल छल, लेखमाला समेत और अमरजीक अश्रु तर्पण मणिकांत ठाकुरक नैहर छूटल संस्मरणक लोकप्रियताक और

0: गप करब। ए मध्य सुनी गद्य साहित्यक एकटा रुचिगर रूप कथा पाठ।
1: कथाक शीर्षक अछि कुंजी। नवका डेरा मे आई पहिल दिन छल, बड़ मुश्किल से भेटल छल ई एक कोठरी वाला डेरा। ओहू मे एसगर लड़की के रहबाक लेल छोट शहर में डेरा भेटब कनी मुश्किल होइत छैक। ओना चारू दिस से एही डेराक परिसर में 10 टा कोठरी छलैक। बीच में आंगन, एकटा चापाकल आ चबूतरा, एक दिस 4 टा शौचालय स्नान घर, चारू सामूहिक छल। दसो कोठरी में रहनिहार सबके जे खाली भेट जायन तय हुनकर। ओहि दिन आबय में साँझ पड़ि गेल छलै। सामान सब सेट करैत करैत राति भऽ गेलै, तें ककरो से परिचय पात नहि भेल। माँ ओहि दिन हमरे लग रहि गेल रहे। दुनू मायधी बैग से भोजन बहार कऽ भोजन कयलहुँ आ सुति रहलहुँ। भोर भेने पह फटते एकटा स्वर सुनाई पड़ल। हमर नींद टूटि गेल। हम उंघायले रही, तथापि ओछाउन पर बैस कऽ कान पाति सुनऽ लगलहुँ। एकटा बूढ़ गीत गाबि रहल छला। हम कोठरी सँ बाहर भऽ ओसार पर ठाढ़ भऽ गेलहुँ। गीत ततेक नीक छल जे हमर डेग गीतक स्वर दिस स्वतः बढ़ल चलि गेल। जाहि कोठरी सँ गीतक स्वर आबि रहल छल ओकर केबाड़ मे सटि कऽ ठाढ़ भऽ गेल।
2: केबाड़ कनी खुजि गेलै, पल्ला मात्र भिरकाओल छलै। हम पल्लाक फाँक सँ हुलकी देलहुँ तऽ देखलहुँ जे प्रायः एकटा 70-72 बरखक बूढ़ आँखि मुन्ने गीत टेर रहल छलाह। गोर दप दप, दुब्बर
1: पातर नमगर देह, दूध के फेन सन उज्जर उज्जर दाढ़ी आ केश, गंजी आ लुंगी पहिर कऽ बैसल गीत गाबैत ओ बूढ़ा हमरा आकर्षित कयलनि। हम चुपचाप केबाड़क फाँक सँ हुनका देखैत छलियनि ते ओ गमि गेला। ओ आँखि मुन्ने बजला, के छह, भीतर आबि जा। हम कनी संकोच करैत केबाड़क पल्ला खोललहुँ आ भीतर प्रवेश करैत हुनका पैर छुबि सोझा मे ठाढ़ भऽ गेलहुँ। ओ ओछाउन पर बैसबाक संकेत कयलनि आ पुछलनि, कोनटा वाला कोठरी तोही किराया पर लेलही है? हाँ, साँझ में एक रत्ती तोरा देखने छलियो, ते चीन गेलियो। हम ओछाउन पर बैसैत कोठरीक चारू कात तकलहुँ। देखलहुँ जे एकटा कोन में गैसक एक चूल्हिया आ 2-4 टा बर्तन बासन राखल छल। ओछाउन पर चारू कात पोथी आ पत्र पत्रिका सब पसरल छल। हमरा बुझा गेल जे ई कोनो विद्वान लोक छथि। ओ पुछलनि जे कोन क्लास में पढ़ैत छही? BA, विषय अंग्रेजी ऑनर्स। एहिठाम असगरे रहबी? हाँ, हम बाजलहुँ। अखन माँ आयल अछि, काल्हि चलि जायत, तकर बाद असगरे रहबै। ठीक, कोनो खगता हेतौ तो बाजिहे, संकोच नहि करिहे। हम बाजलहुँ, बेस। बाबा, अहाँ जे अखन गीत गबैत छलियै से हमरा नीक लागल। ई गीत के लिखने छलखिन? बूढ़ा बजला, जाहि काज मे पाई नहि लागैत छै से सब हम करैत रहै छियै। जेना जेना चित्र बनेनाय, कविता लिखनाय, गीत सुननाय या सुनेनाय आदि। बाइज ओ हंसा लागला। हुनकर ई सहजता हमरा नीक लागल। हम अपन प्रश्न एक बेर फेर दोहरेलहुँ, मुदा अखन जे गीत गबैत छलियै से ककर लिखल छै? ओ फेर हंसैत बाजला, हम अपने लिखल गीत गबैत रहै छियै। हम मने मन सोचऽ लागलहुँ, ओ ई कवि छथि। काल्हि भेने माँ चलि गेलै आ हम अपन पढ़ाई में लागि गेलहुँ। कॉलेज आ ट्यूशन के बाद एक बेर बाबाक हालचाल अवश्य पूछ लियनि। हुनका कोठरी में जखने कखनो जाए कि ओ बाजैत, आ बैस, अजुका कविता लिखल सुना दैत छियो। सुनबही? हम नहि नहि कहि पाबैत छलियै। आ बाबा प्रतिदिन कम से कम 5-7 टा कविता हमरा सुना दैत छला, मने प्रतिदिन एतेक लिख लैत छला। एहि तरहे बाबा हमरा अपन पकिया श्रोता मानि लेने छला। दोसर बात ई जे हमरो बाबाक कविता सुनबाक हिस्सक भऽ गेल छलै। एक दिन हम कहलियनि, बाबा अहाँ असगरे रहैत छी तऽ अपने खेनाई किएक बनबैत छियै? 4 टा सोहारी हमही बेसी बना लेब, अहाँक भोजन हम नेने आयब। बाबा साफ नकारि गेला, बजला, तो एतऽ पढ़े लेल आयल छही कि भानस भात करे लेल? तो अपन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान राख, कहबे तो तोरो हिस्सा 4 टा सोहारी हमही पका लेल करब। बाबा फेर अपन चिर परिचित अंदाज में हंसैत बजला, हम खेनाई बनेनाय जानैत छी। बाबा हमर ध्यान एही तरहे राखऽ लगला जे हमरा लागल बाबा हमर गार्जियन बनि गेला। बाबा के काजे की छलनि

एकटा प्राइवेट स्कूल में 2-3 घंटी पढ़ेनाई आ तकरे दरमाहा से खर्च बर्च चलैत छल। असगरे रहनाई, खेनाई बनेनाई, खेनाई गीत गजल लिखनाई आ मगन रहनाई, बस एतबे काज छलैन बाबा के। एकदम बतास जकां मुख। एक दिन भोरे भोर बाबा हमर केवाड़ खटखटौलन। हम केवाड़ खोलैत पुछलियन, की बात बाबा आय भोरे भोर? हमरा लागल रात किछ बेसी कविता लिख लेने हेता, ते सुनबै के लेल भोरे भोरे जिम गेला। मुदा ओ कहलन, आय सा तोहर परीक्षा छौ ने, तोहर खेनाय हम बना दे छियो, खा के जइहे। हम पुछलियन, अहाँ के हमर परीक्षा के तिथि मोन छल बाबा? अन्हारे म उठल होए वहाँ, एतेक भोरे भोरे एतेक कष्ट करबा के कोन काज छले? ओ बजला, हमरा दुनिया भर में एक ही टा श्रोता अछि जे तो छै, जखन ओ भड़क जात तो मुश्किल होत। कह बाबा हंसा लगला, हुनका संग हमहू हंसलों। तखन बुझायल जे बाबा के निश्चल प्रेमक हम ऋणी भ गेल छी। बाबा के कविता सुनेबाक हिस्सक सँ हमर किछ संगी डेरेबो करे। एक दिन भेले ई जे हमर संगी सुमन समय पर हमर नोट्सक कॉपी नहीं घुरेलक, तो ओकरा फोन के लिए, तखन ओ कहल के जे कॉपी लेक गेल रहियो, मुदा तोरा डेरा में जे बूढ़ा नहीं छथुन, तिनकर कोठरी के केवाड़ खुजल देखलिए तो घूर एलों, के सुनते हुनकर कवित? तखन हमरा मोन पड़ल जे हाँ, एक दिन हम सुमन के अपना डेरा पर आनने रहिए, ओही दिन ओकरा बाबा से परिचय करेलिए। बाबा ओकरा 20-22 टा कविता सुना देने रहथिन। कविता सुनेलाक बाद हमरा दिस तकैत बजला, आब नहीं सुनेबे एकरा कविता, मुँह सुखा गेले नुनू के। आ हंसैत ओ अपन डायरी मोड़ लेने छला। तें आय बाबा के केवाड़ खुजल देख घूर गेल सुमन। एहने मनमतंग लोग छला बाबा। बाबा के कविता सुनैत सुनैत हमरो किछ पद जोड़वा के हिस्सक लाग गेल। बहुत रास पत्र पत्रिका हुनका लग सहजे उपलब्ध भ जाए। ओ बड़ोबर कहे कॉलेजक विषय से फड़ाको पढ़ल कर, समय निकाल कर पत्र पत्रिका सब सेहो पढ़वाक चाही। हम प्रतिदिन बाबा से भेंट करी, नव नव पत्रिका पढ़ी। कहियो काल साहित्यक गप पसेर जाए हमरा दुनू गोटेक बीच, तर्क वितर्क सेहो होमय लागे, वैचारिक बहस शुरू भ जाए। कहियो काल कोनो कोनो बात पर हम बाबा के पछाड़ दियन, हरदा बजा दियन, तखन बाबा प्रसन्न भ जायत आ आशीष दैत, कहत तो साहित्य के क्षेत्र में खूब आगू बढ़बे। मुदा बाबा के ज्ञानक था हमरा नहीं छल, बड़ मुश्किल छले हुनकर ज्ञानक अटकर लगेनाय। बहस में बाबा हमरा सा कहियो काल हार जायत। ओ अही दुआरे हारैत कि हुनका हमर जीतब पसीन छलन। बाबा के एतेक दिन सानिध्य में हमरा एकटा बात बुझा गेल जे बाबी हिनकर संग बहुत पहिने छोड़ देने छलखिन। हम बाबा से पूछलियन, बाबा एकटा बात पूछी? हाँ पूछ न, अहाँ के धिया पुता सब कता छथि? बाबा के ठोर पर एकटा उदास मुस्की पसर गेलन। गहीर सांस लैत बजला, एकटा बेटी छे। कता छथि? अखन त हमरे आगू में बैसल छे। हम बुझ गेलौं जे ओ अपन परिवारक चर्च नहीं करय चाहै छथि, संगे अपना प्रति हुनकर भावनाक सोझा नतमस्तक सेहो भ गेलौं। एक दिन हमरा बाबा अपन कोठरी में बजौलन, बाजला एकटा चीज तोरा देबय चाहैत छियो। की? ओ हमरा हाथ में एकटा कुंजी थमा देलन आ कहलन, ओही पेटी के खोलही। हम पेटी के खोल के देखलौं तो चकविदोर लाग गेल, भैर पेटी सैतल डायरी। हम बाजलौं, एहि पेटी में तो खाली डायरी अछि? डायरी छैक मुदा खाली नहि, कविता गीत गजल सँ भरल, यह हमर संपूर्ण जीवन के कमाई अछि। बाजैत बाबा भावुक भ गेला। हमहू तखन बाजि उठलौं, चिंता नहि करू बाबा, ई सबटा डायरी सुरक्षित रहत। डायरी के संदेश हम सब लोग धरि पहुँचायब। हम ई कुंजी सहेज के राख लेत छी। पीजी के पढ़ाई के लेल हम पटना आबि गेलौं। ओही ठाम कोठरी में एकटा कांटी ठोकलौं आ ताहि में कुंजी टांग देलौं। ओ कुंजी हमरा बाबा के आभास दियाबैत छल। एक दिन फोन आयल जे बाबा नहि रहला। हम कांटी सँ कुंजी उतारि कऽ करेज में साटि लेने रही। ई सूचना हमरा एक दिन बाद भेटल छल। कचोट भेल जे बाबा के अंतिम दर्शनो नहि भ सकल, तैयो हम अपन कोठरी सँ बहरा गेलौं। हम ओही डेरा पर गेलौं जतौ हम रहैत रही आ बाबा सँ पहिल बेर भेंट भेल छल। ओ पेटी आ पेटी में सैतल डायरी पर मोन टांगल छल। बाबा के कोठरी में गेलौं, कोठरी खाली, भम्म पड़ैत, पड़ोसिया सब

0: पुछलियै त बाजल कहाँ किछो भेल छलैन बुढ़ा के, सब दिन भिनसरे भिनसर जहिना गीत गाबैत छलखिन तहिना गेलखिन। तकर बाद कोठरी सँ बड़ी काल धरि आवाज नहि अयलै तऽ देखलियै जे बूढ़ा अंगड़ायल छथिन। मकान मालिक के खबर देलियै, ता धरि तऽ उड़ि गेल रहथिन बूढ़ा। हम हिम्मत करैत पुछलियै आ ओही कोठरी के सर समान समाने की रहे, कनी बर्तन बासन आ पुरान कुर्ता पैजामा चद दे रह। एकटा चौकी रहे, से मकान मालिक एक रहे, ओ उठा के लऽ गेले। हाँ, एकटा पेटी छलै मुदा ओकर कुंजी कतौ नहि भेटले। बूढ़ा के बेटा पोता बड़ ताकलक, जखन नहीं भेटले तो ताला तोड़लक, कतौ किछ नहि, पाइयो कौड़ी आर नहि छलै, खाली लिखलाहा डायरी सब सैतल। हम पुछलियै तो ओ सब की भेले, ओ सब राखिए के की हेतै। पड़ोसिया बाजल बूढ़ा के कपड़ा लत्ता आ पेटी वाला डायरी आर गंडक में भसा देल गेले आ बर्तन बासन आर घर ले गेले बेटा सब। हम काठ भ गेल रही। बड़ी काल बाद लागल जना कियो देह डोलेलक अछि। साकांच भेलौ पर्स सँ कुंजी बाहर कऽ मुट्ठी में दाबने नहु नहु डेग पाछा कऽ लेलौ।
1: सुनि रहल छलहुँ कथा पाठ रूपम कुमारी सँ। कोनो रचनाक आरंभ खिस्सा पिहानी वा कविता सँ प्रायः होइत अछि आ धीरे धीरे संस्मरण धरि पहुँच जाइत अछि। संस्मरणक लोकप्रियता के जँ गप करी तऽ 1970 के दशक मे एहि विधा के विशेष लोकप्रियता भेटल आ एहि विधा पर बहुतो संस्मरणक प्रकाशन भेल, जाहिमे हरिमोहन झाक स्वर्गीय पंडित जनार्दन झा जनसीदन, पंडित कुलानंद झाक स्वर्गीय शशिनाथ चौधरी, सहदेव झाक बाबू भोलालाल दास, रामकांत मिश्रक मोन पड़ैत अछि बहुत रास बात, भीमनाथ झाक बाबू लक्ष्मीपति सिंह आ डॉक्टर उमारमन झाक महावैयाकरणिक खुदी झा। संस्मरण विधा पर स्वतंत्र पोथी सेहो लिखल गेल, जाहिमे पंडित गिरेन्द्र मोहन मिश्रक किछु देखल किछु सुनल विशेष रूपे उल्लेखनीय अछि। एहि ग्रंथसँ ब्रिटिश कालमे स्वतंत्रता आंदोलनमे मिथिलाक योगदान आ स्वतंत्रताक पश्चात मिथिलाक राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक ओ सामाजिक स्थितिक संग संग हुनक छात्र जीवनक कतेक पक्षक प्रामाणिक परिचय भेटैत अछि। विलक्षण प्रांजल प्रसादपूर्ण आ रोचक भाषा शैली में एहि ग्रंथक रचना भेल अछि। एहि विशेषताक कारणे भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा 1975 में गिरेन्द्र मोहन मिश्र के पुरस्कृत कयल गेल छल। एहने रचना में प्रोफेसर मंत्रनाथ झा हंसराज जीक बिसरल बिसरल संस्मरण प्रमुख अछि, जाहिमे लेखकक अनुभूतिक सघनता, संवेदनशीलता, सहज भाषा आ समर्थ शैलीक कारणे अत्यंत प्रसिद्धि भेटल अछि। स्वतंत्र पोथी के रूप में मंत्रेश्वर झाक कतेक डायरी पर लिखल गेल संस्मरण साहित्य प्रमुख अछि, जाहिमे मंत्रेश्वर झा अपन प्रशासनिक चिंतन आ ओहिसँ प्राप्त अपन प्रशासनिक कार्यकालक विभिन्न प्रकारक अनुभव असंग घटल घटनाक वर्णन सुस्पष्ट भाषा शैली में क्रमबद्ध रूपे केने छथि आ यह विशेषताक कारणे 2008 में मंत्रेश्वर झा के एहि संस्मरण पोथी लेल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। समकालीन रचना में शेफालिका वर्माक किस्त किस्त जीवन में सेहो संस्मरण बहुत रास भेटैत अछि, मुदा मूल रूप में ई शेफालिका वर्माक आत्मकथा थिक। एहि पोथी लेल 2012 में हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। 2013 में सुरेश्वर झा के संस्मरण संग्रह संघर्ष ओ सेहनता लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। अखन धरिक संस्मरण साहित्यक रचना कम रहितो रचनाक दृष्टिये अपन उच्चतम स्थान के प्राप्त केलक अछि आ मैथिली साहित्य के अत्यंत समृद्ध केलक अछि। जतय समृद्धि अछि ओतय आनंद अछि।

कार्यक्रम के अंत में सुने छी शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि मुँहजोर। काके के पुतो मुँहजोर छथि या सुनलियन, ठोर पर जवाब तैयारे रहे छनि। अखुनका संदर्भ में देखी तऽ मुँहजोर लोकक दबदबा बनल रहित अछि। एकटा शब्द अछि सूरसार। मोना पंचमी लगिचियाल अछि आ तैं नव विवाहिता बेटी धी लेल पाबनिक सूरसार घर में भ रहल छनि। सूरसार माने ओरियान, जेना हमहू आब जाय के सूरसार करी, किएक तऽ अपने लोकनि से आज्ञा लेबाक बेर हो जा रहल अछि। तदी आज्ञा

अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंहराहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: पर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
2: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
5: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है।

0: बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
4: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं

0: आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 10 जिलों में

0: जौनपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students.

लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज़ है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निज़ाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामलात

संदर्भ 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता। इयम आकाशवाणी दरभंगा प्रस्तुता वर्तते इयम संस्कृत वार्ता। विषय तु वर्तते संस्कृत भाषाया संरक्षणम एवं संवर्धनम। संप्रति वार्ताकारः

कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं खूबसूरत फिल्म का यह गीत संजय दत्त एवं श्रद्धा पंडित की आवाज में। बोल हैं संजय के और संगीत निर्देशन जतिन ललित का है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। ये

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम। आज के फनकार हैं संजय दत्त।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या क्या क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो?
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना, मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

अब सुनिए भूमि फिल्म का यह गीत संजय दत्त एवं अजय गोगी वाली के आवाज में, संगीत निर्देशन सचिन जिगर का है।

अब सुनिए डिपार्टमेंट फिल्म का यह गीत संजय दत्त एवं फरहाद भिवानी वाला की आवाज में, बोल हैं सबीर अहमद के और संगीत निर्देशन बप्पी लहरी।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म चल मेरे भाई का यह गीत सुनिए। संजय दत्त एवं सलमान खान की आवाज में, बोल हैं समीर के और संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का है।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या क्या क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: संजय दत्त एवं श्रद्धा पंडित के गाए इसी गीत के साथ आज के फनकार कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं जाल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिले नादान का यह गीत लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म इज्जत का यह गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्र

व्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने के विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।